0: RM2
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: Unke zulfe, un.

0: टाइम चेक सुबह के 5 बज रहे हैं।
1: वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती
1: नॉर्थ साउथ
2: 103.5
1: ईस्ट वेस्ट
2: 96.4
1: सेंटर
2: 99.4
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Feel the Musti.
3: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti. Musti. Musti. Musti.

0: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
0: Radio Musty. Musty.
1: Musty. Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2
0: Radio Musty.
2: गुड मॉर्निंग नमस्ते. 5:04 हो चुके हैं. बाहर ठंडी हवा है. सुबह धीरे धीरे करवट ले रही है. तो चलिए चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाइए, दिल को हल्का कीजिए और गीतों के साथ इस सुबह को यादगार बनाइए. मैं हूँ आपके साथ पूनम और आप सुन रहे हैं राइज एंड शाइन RM2 रेडियो मस्ती पर. यह है आपका दिन की शुरुआत. तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए शुरू करते हैं. ये गाना आप सबके लिए

0: पर प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में, जहां सरस्वती रामायण एसोसिएशन, प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन, ओलंपिक वुमेन्स एसोसिएशन, विश्वनाथ मंदिर महिला समाज, सीनियर सिटीजन प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन और प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर सीनियर सिटीजन एक साथ इस म्यूजिकल सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे ऑन दिस फ्राइडे 31st of July दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RN3 रेडियो मनोरंजन। साथ ही आप इसको टिकटॉक पर भी फॉलो कर पाएंगे। सो भूलिएगा नहीं, इस शुक्रवार 31 जुलाई को फ्रॉम नून टिल 2 PM प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास।
1: महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:14 हो चुके हैं और अगर अभी अभी आपने आंखें खोली हैं तो जल्दी मत कीजिए, पहले गहरी सांस लीजिए, खिड़की खोलिए, सुबह की ठंडी हवा को महसूस कीजिए और फिर हमारे गीतों के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए, क्योंकि हम तो आपके साथ 24 आवर्स हैं। पर आज सुबह मैं 5 से 7 हूँ आपके लिए, बस यहाँ पर कि सिर्फ आपका मूड अच्छा हो, हंसते नाचते मुस्कुराते हुए आप जो भी अपने काम की शुरुआत करें बस करते रहें, तो हम तो यही कहेंगे आपको

0: के मुस्कुराइए, चेहरे को देखिए, देखिए कितनी कई बार हमारे चेहरे पर इतनी खुशी और रौनक होती है, बिल्कुल ऐसे ग्लो कर रहा होता है, और कई बार हमारा चेहरा थोड़ा सा मुरझा जाता है क्योंकि ज़िंदगी हमें कई बार अप एंड डाउन्स दिखाती है। तो क्या हो गया, अगर अप एंड डाउन्स आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, इन्जॉय कीजिए गाने, और उसके साथ साथ आपके जो चेहरे की वो कहती है ना मुरझाहट होती है उसको ख़त्म कर देती है गाने, होते ही इस तरीके से हैं क्योंकि आपको मूड को बिल्कुल रिवाइव कर देते हैं। तो ये सबसे प्यारा सा मेकअप है जो अपने चेहरे पर अगर आपने सुबह सुबह लगा लिया तो 24 आवर्स के लिए आपका मेकअप बिल्कुल लॉक हो जाएगा और मुस्कुराहट एकदम फिट एंड फाइन एंड फ्रेशनेस आपको पूरे दिन देती रहेगी। इंजॉय कीजिए अपने गाने, अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5499-1294 पर।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musty.

सुबह पे जिस तरह शाम का

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:25 हो चुके हैं और फ्राइडे का प्यारा दिन आज तो भाई कहते हैं ना कि वीकेंड स्टार्ट होने की जो सुबह सुबह की खुशी होती है ये फ्राइडे की होती है। दिमाग में था अरे आज जाना है, 2 दिन की छुट्टी होगी, पर कोई बात नहीं, 2 दिन की छुट्टी बाद में देखेंगे। पर अभी बात करते हैं उन लोगों की जो सुबह सुबह खेतों में पहुँच चुके हैं, अपने हाथों की मेहनत से मिट्टी को सोना बनाने में जुट गए हैं। आप सभी को हमारा सलाम, आपकी मेहनत को समर्पित है ये प्यारा सा गीत। मैं तो कहती हूँ ये गाने बहुत ही प्यारे से होते हैं, पर जब जिसके लिए सेट बने होते हैं ना उस तक पहुंच जाते हैं तो हमें भी खुशी होती है। और आपके सभी के मैसेजेस मुझ तक पहुंच रहे हैं, अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप भेज दीजिए, क्योंकि इन 2 गानों के बाद हम आपके मैसेजेस पढ़ेंगे। दिल की बात कीजिएगा और ऐसी बात कीजिएगा जहां पर सबका मॉर्निंग खुश खुश हो जाए।
0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:34 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम

0: राइजन शाइन के साथ और मैं हूँ आपके साथ पूनम। और इतने सारे मैसेजेस आए, सबको पता था और एहसास भी था कि हम मैसेजेस पढ़ने जाएंगे थोड़ी देर में, तो इसीलिए उन्होंने फटाफट से सबने अपने मैसेजेस भेज दिए और इतने प्यारे प्यारे भेजे हैं कि क्या बताऊँ। चलो भाई उनके भी मैसेजेस पढ़ लेते हैं, किसने किसके लिए क्या क्या कहा है। तो जयशंद हरदयाल जी जुड़े हुए हैं साथ में और कह रहे हैं कि बस एज़ यूजुअल काम पे जा रहा हूं और साथ साथ आपके गानों को इंजॉय कर रहा हूं। थैंक यू सो मच, आराम से जाइए, इंजॉय कीजिए और साथ में मुस्कुराते रहिए। नसरीन जी, आप बहुत ही लकी हैं क्योंकि आपको बहुत ही प्यारे दो दोस्त मिले हैं, सायरा बानो अब्दुल जी, और उन दोनों की तरफ से आपको बेस्ट विशेस और जो भी फिलिंग स्टेशन में काम कर रहा है उनके लिए भी क्या बात है। सरोज राजन, उमेश अंशी का तो बोन से साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं मस्त हो रहा है प्रोग्राम। तो चलिए भाई आपका थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। माला सुमारो जी कात्रुबोन से हैं, टोनी जी साथ दे रहे हैं और बहुत ही प्यारा सा मैसेज किया है, बस सबको इतना कहा है कि सब हमेशा खुश रहें, इंजॉय कीजिए अपनी मॉर्निंग को। ललित जी साथ दे रहे हैं यूएसए से और कह रहे हैं कि राइज एंड शाइन के साथ में यूएसए में एहसास हो रहा है जैसे मॉर्निंग है, क्या बात है, थैंक यू। साधना जी, मुकेश जी लालमाटी से साथ दे रहे हैं, महीन जी साथ दे रहे हैं पालमा से, बेस्ट विशेज दे रहे हैं सभी जो भी लिसनर्स हैं उनके लिए। उसके साथ में दीपक जी हैं जो कि कह रहे हैं कि मैं वेदू के लिए बस इतना ही कहना चाहता हूं कि तुम जान हो मेरी, क्या बात है। नीमा जी साथ हैं और अपने हस्बैंड विशाल जी के लिए और अपने तीनों बेटों के लिए इतना कह रही हैं कि मैंने नहीं सोचा था तुम चारों के चक्कर में मेरी ज़िंदगी रह जाएगी और मैं तो बस तुम्हारे आगे पीछे ही डोलती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है कि तुम मेरे पास हो, क्या बात है, थैंक यू सो मच ऐसे ऐसे प्यारे से मैसेजेस के लिए। प्रिया जी साथ दे रही हैं और अपने हस्बैंड ईश्वर जी के लिए बस इतना कहती हैं कि एक आसमान में ईश्वर है और एक हो तुम और तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, सो स्वीट। डैरन, श्वेता, प्रिशा एंड रविश एंड लुबेशा साथ दे रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं, थोड़ी देर बाद फिर से पढ़ेंगे, तब तक इंजॉय कीजिए अपना ये गाना।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musty.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: 5:45 हो चुके हैं और अब जानते हैं सितारे आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले
2: एरीज मेष राशि।
1: आज अपने मन की बात कहने से बिल्कुल मत हिचकिचाइए। जिस काम को आप टाल रहे थे उसे शुरू करने का अच्छा समय है। आज आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। लकी कलर है ऑरेंज, लकी नंबर है 5।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: आज परिवार या किसी अपने के साथ समय बिताया हुआ मन को सुकून मिल सकता है। कोई अच्छी खबर आपका इंतजार कर रही है। छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेते रहिए। लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 8।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: आज आपकी बातें लोगों पर अच्छा प्रभाव छोड़ेंगी। अगर कोई नया मौका मिले तो उसे जरूर अपनाइए। दिन आपको कुछ नया और अच्छा अनुभव देने वाला है। लकी कलर है येलो, लकी नंबर है 3।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: आज दिल की बात सुनिए, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। घर का माहौल आपको खुशी और सुकून देगा। शाम तक कोई प्यारी सी बात आपका मन खुश कर सकती है। लकी कलर है व्हाइट, लकी नंबर है 2।
2: लियो सिंह राशि।
1: आज लोग आपके काम और आपकी सोच की सराहना करेंगे। अगर कोई नई जिम्मेदारी मिले तो मुस्कुराकर स्वीकार कीजिए। आपका जोश ही आज आपकी पहचान बनने वाला है। लकी कलर है रेड, लकी नंबर है 1।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: आज हर फैसला आराम से और सोच समझ कर लीजिए। नई योजना पर काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। आपकी समझदारी आपको आगे बढ़ा रही है। लकी कलर है स्काई ब्लू, लकी नंबर है 6।
2: लिब्रा तुला राशि।
1: आज रिश्तों में मिठास और अपनापन महसूस होगा। किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से बात हो सकती है। हंसते मुस्कुराते हुए दिन को आगे लेके जाइए। दिन पूरा अच्छा रहेगा। घर परिवार हमेशा आपके साथ जैसे खुश रहता है वैसे ही रहेगा। लकी कलर है पिंक, लकी नंबर है 7।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: आज रुके हुए कामों में फिर से गति आ सकती है। अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखिए। आपकी मेहनत धीरे धीरे अपना असर दिखाएगी। लकी कलर है मैरून, लकी नंबर है 9।
2: सजिटेरियस धनु राशि।
1: आज कुछ नया सीखने या जानने का मौका मिल सकता है। अगर कहीं जाने का प्लान बना है तो आनंद लीजिए। दिन आपको नई ऊर्जा से भर देगा। लकी कलर है पर्पल, लकी नंबर है 4।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
1: आज आपकी लगन लोगों को नजर आएगी। काम में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिल रहे हैं। खुद पर भरोसा रखिए, सब अच्छा होने वाला है। लकी कलर है ग्रे, लकी नंबर है 8।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: आज आपकी अलग सोच आपको पहचान दे रही है। दोस्तों और सहकर्मियों का साथ मिलने जा रहा है। नए अवसर आपका स्वागत कर रहे हैं तो आपको भी खुलकर उसका दिन की शुरुआत भी अच्छी करनी चाहिए और अवसर को भी छोड़ना नहीं चाहिए। लकी कलर है ब्लू, लकी नंबर है 11। तो ये था प्यारा सा आपका राशि और इसके बाद एक और है
2: पाइसेस मीन राशि।
1: आज मन शांत रहेगा और सकारात्मक सोच बनी रहेगी। अपनों के साथ समय बिताया आपको खुशी देगा। दिन का हर पल खुलकर जीने की कोशिश कीजिए। लकी कलर है पीच, लकी नंबर है 2। तो ये था आपका राशिफल और इसके साथ में आगे शुरू करते हैं आपके गाने।
0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti. Wake up with the sun and the sound of fun.
3: RM2
0: Radio Musti.

बहुत मुश्किल है अकेला लौट के घर को जाना, लौट के घर को जाना। मेरे दिल का कमरा खाली है, मेरे

0: Center 99.4.
1: RM2 Radio Musty.
2: Radio Musty.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
3: Time check. सुबह के 6 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार विधिमा से. विधिमा आपको नमस्कार.
4: नमस्कार पूनम. सभी सुनने वालों को नमस्कार. पेश है संक्षिप्त समाचार. स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में मॉरिशस के खेल जगत के लिए आज एक बेहद अहम दिन है. सबसे पहले मुक्केबाज मर्विन क्लेयर वो 70 किलोग्राम से कम वर्ग के फाइनल में जगह बनाने के लिए मुकाबला करेंगे. वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें सेमीफाइनल में वेल्स के ओलांडो होले सुतुमी को हराना होगा. एक और मॉरिशस की खिलाड़ी जिन पर सबकी नजर रहेगी वे हैं नोएमी अल्फोंस. व्हीलचेयर 1500 मीटर की फाइनल रेस आज होगी. बजट 2026-2027 एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है. आज 3 बजे फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसलेनियस प्रोविजंस बिल आज के एजेंडे में है. बजट में घोषित कदमों को कानूनी ढांचा देने के लिए ये विधेयक जरूरी है. मॉरिशस और ग्रेट ब्रिटेन अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत कर रहे हैं. कल दोनों पक्षों ने एनहेंस स्ट्रेटेजिक ट्रेड पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते का मकसद मॉरिशस की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का समर्थन करना है, खासतौर पर डिजिटल परिवर्तन, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी तथा शिक्षा और स्वास्थ्य के संदर्भ में. चूंकि गणेशन एयरलाइन को सऊदी अरब में मौत की सजा का खतरा है, उनके वकील रमा वालादेन कई प्रयास कर रहे हैं और अधिकारियों से अपील कर रहे हैं. लातुकेनिक में एक डिजिटल प्रिंटिंग प्रेस के इस निदेशक को पिछले 19 जून को उनके एक सूट केस में 3 किलो कोकीन मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया था. मामी खावातोमांग की जमानत की अर्जी पर बहस 17 और 18 अगस्त को तय की गई है. मलागासी व्यवसायी मामी खावातोमांग कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बेल एंड रिमांड कोर्ट के समक्ष पेश हुए. और विदेश में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बोर्ड ऑफ पीस गाजा में हमास और अन्य सशस्त्र समूहों के पूर्ण शस्त्रीकरण समाप्ति के लिए एक समझौते पर पहुंच गया है. और आखिर में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल. पूर्व से पाए जा रहे बादल आज सुबह स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा है. अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह बादल घिरे रहेंगे और देश के पूर्व तथा सेंट्रल प्लेटों पर बारिश होगी. कभी कभार सामान्य से जोरदार बारिश हो सकती है. ऊंचाइयों पर कोहरे भी छाए रहेंगे. दोपहर बाद को मौसम सुहाना रहेगा. अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 23 से 25, अन्य इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. हवा पूर्व की ओर से बहेगी जिसके झोंके 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंचेगी और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं. पूर्व और ऊंचाइयों पर रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे और कुछ वर्षा होगी. प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की ऊंची लहरें उठेंगी. दूर समुद्र में आज सुबह नहीं निकलने की सलाह दी जाती है. सूर्योदय 6:40 पर और आज शाम 5:52 पर सूरज ढल जाएगा. तो मौसम के हाल के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. आपके ध्यान के लिए धन्यवाद. नमस्कार.
5: सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ. एन एवरग्रीन आफ्टरनून सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ. इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास. 2 घंटों का सुहाना सफर. प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में जहां सरस्वती रामायण एसोसिएशन, प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन, ओलंपिक वुमेन्स एसोसिएशन, विश्वनाथ मंदिर महिला समाज, सीनियर सिटीजन प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन और प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर सीनियर सिटीजन एक साथ इस म्यूजिकल सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे. ऑन दिस फ्राइडे 31 जुलाई दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RM3.

0: रंजन। साथ ही आप इसको टिकटॉक पर भी फॉलो कर पाएंगे। सो भूलिएगा नहीं, इस शुक्रवार 31 जुलाई को फ्रॉम नून टिल 2 PM प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास। जेठा तुलसीदास।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 6:20 हो चुके हैं दोस्तों और इतने सारे बर्थडे विशेस आए हैं. टाइम नहीं होता है पर फिर भी हम चाहेंगे कि जिनके भी बर्थडे हैं उनके लिए ज़रूर सेलिब्रेट भी करें और साथ में विश भी करें रेडियो की तरफ से, क्योंकि हम तो नहीं करते, ये तो आपके अपने दिल की आवाज़ होती है. तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं. सीता जीवन जी, जिनका आज 60th बर्थडे है, विशेज़ कर रही हैं करुणा, आयशा, तुलसी, प्रिया लक्ष्मी, आशना एंड रेखा, और कह रही हैं ममा यू आर बेस्ट. क्या बात है, सच बात है, जैसी प्यारी प्यारी बेटियाँ होंगी तो ममा क्यों ना खुश हो. करिश्मा केद्रू जी का भी बर्थडे है, ममा बबीता पापा ब्रदर्स होल केद्रू फैमिली उन्हें विश कर रही हैं और कह रहे हैं जितनी प्यारी तुम हो हमेशा ऐसे ही रहो, कभी हमें छोड़ के मत जाना. क्या बात है. रेशमा जी भी साथ हैं और अपने हस्बैंड के लिए बर्थडे विशेज दे रही हैं और कह रही हैं बर्थडे तुम्हारा है बट एक्साइटेड मैं हूँ और मैं चाहती हूँ आज कुछ स्पेशल बनाऊंगी, मुझे बता के जाना क्या खाना चाहते हो. क्या बात है, ये तो अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए. किशन जी अपनी वाइफ यानी कि कह रहे हैं कि बेस्ट वाइफ इन द वर्ल्ड अमृता जी के लिए पूरा परिवार विश कर रहे हैं. अंशिका, गिरीश, सिमी, शिका, केशना, आयशना कह रहे हैं कि भाई तुम जैसी बीवी मिले तो और क्या चाहिए, सो स्वीट, इतना प्यार अगर मिले ऐसे हस्बैंड से तो बहुत ही बढ़िया. थैंक यू सो मच, आपने जिस तरीके से खुशी से ये मैसेज भेजा है और मैं तो सबको ये कहूँगी सबके बर्थडे बहुत ही अच्छे जाएं. अवनीश जी का भी आज बर्थडे है और मम्मी की तरफ से उनको प्यार और बहुत सारा प्यार, और कह रहे हैं कि बर्थडे क्या जो केक है मैं लेकर आऊँगी, तुम चिंता मत करना. बर्थडे दयानंद जी, बर्थडे देनंद वाइफ सीता, अश्विनी, अविनाश, अवीश, बहु सिद्धि, निशा, ऋधिशिका, दिदिशा, अवनी, येष्टा एंड अवी, शिवाय एंड कनव की तरफ से. क्या बात है, प्यारे प्यारे से नाम होते हैं और कभी कभी हमको गड़बड़ा जाता है पर हमारे दिल की आवाज़ बस इतना ही कहती है ये आप सब के लिए जिनका भी आज बर्थडे है, जिन्होंने मैसेज किया नहीं किया पर आपके बर्थडे के लिए हमारी पूरी होल टीम की तरफ से आप सब के लिए

सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं। नमस्कार, शुक्रवार 31 जुलाई 2026 के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आज की सुर्खियां। स्कॉटलैंड के ग्लासगो

0: में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में आज मॉरिशस के लिए अहम दिन। मुक्केबाज मर्विन क्लेयर 70 किलोग्राम से कम वर्ग के सेमीफाइनल में वेल्स के ओलंडो होलिसोटोमी से भिड़ेंगे। जीत उन्हें फाइनल में पहुंचाएगी। वहीं नोएमी अल्फोंस आज व्हीलचेयर 1500 मीटर फाइनल में उतरेंगी। फ्लाक में एमएसएम के जुटाव के दौरान एफसीसी के महानिदेशक संजय दाऊदारी की योग्यता पर उठाए गए सवालों का उन्होंने जवाब देते हुए खुद को पूरी तरह योग्य बताया और कानून का हवाला दिया। दूसरी ओर ऊर्जा मंत्री पैट्रिक आसियावादेन ने पोर्टलुई में मॉरिशस और चीन के बीच ऊर्जा भंडारण प्रणाली समझौते के बाद पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ और एमएसएम की आलोचनाओं का करारा जवाब दिया। पुरानी सरकार पर सवाल उठाए और पत्रकारों के प्रति पार्टी समर्थकों के दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा की। बजट 2026-2027 के कदमों को पारित करने के लिए फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसलेनियस प्रोविजंस बिल आज दोपहर 3 बजे एजेंडे में है। प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री ने स्टैंडिंग ऑर्डर 65 का हवाला देते हुए एक ही बैठक में इनके सभी चरणों की समीक्षा की अनुमति दी है और कार्यसूची समाप्त होने तक सदन की कार्यवाही जारी रहेगी। मालागासी व्यवसायी मामी रावातुमांग की जमानत अर्जी पर 17 और 18 अगस्त को सुनवाई तय हुई है क्योंकि एफसीसी ने अपनी शुरुआती आपत्ति वापस ले ली है। साथ ही बचाव पक्ष डीपीपी और एफसीसी के बीच समझौते के बाद प्रिवी काउंसिल में रिमांड बढ़ाने को दी गई चुनौती को वापस ले लिया जाएगा। और विदेश में हमास का कहना है कि ट्रंप द्वारा बोर्ड ऑफ पीस योजना की घोषणा के बाद वो गाजा में हथियार छोड़ने के लिए सहमत हो गया है। पेश अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत खेल की एक खबर के साथ। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में मॉरिशस के खेल जगत के लिए आज एक बेहद अहम दिन है। सबसे पहले मुक्केबाज मर्विन क्लेयर वो 70 किलोग्राम से कम वर्ग के फाइनल में जगह बनाने के लिए मुकाबला करेंगे। वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें सेमीफाइनल में वेल्स के ओलंडो होलिसोटोमी को हराना होगा। सबकी राय में ये एक ऐसा पड़ाव है जिसे पार करना कठिन होगा, लेकिन मॉरिशस के इस मुक्केबाज जो पहले ही एक पदक अपने नाम कर चुके हैं अपने मुकाबले में मजबूत दाव पेंच और पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे। दिलचस्प बात यह है कि मर्विन क्लेयर के कोच कोई और नहीं बल्कि रिशो सुनी है जो 1998 में क्वालालंपुर में कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले मॉरिशस के पहले खिलाड़ी बने थे। ये एक ऐसा पल है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक और मॉरिशस के खिलाड़ी जिन पर सबकी नज़र रहेगी वे हैं नोएमी अल्फोंस। व्हीलचेयर 1500 मीटर की फाइनल रेस आज होगी। एक कनाडाई एथलीट की वजह से हुए रेस के एक हादसे के बाद मॉरिशस और ऑस्ट्रेलिया दोनों प्रतिनिधि मंडलों ने शिकायत दर्ज कराई थी। इस हादसे में नोएमी अल्फोंस सहित दोनों देशों की प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी गिर गई थी। फ्लक के जुटाव में प्रवीण जगनाथ के हमलों का निशाना बने और कुछ मीडिया द्वारा फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के एक अधिकारी के साथ व्हाट्सएप पर चैट करने का आरोप झेलने वाले प्रधानमंत्री कार्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ राकेश भकोरी ने कल मोर्चा संभाल लिया। कथित स्क्रीनशॉट के प्रकाशन से आहत जिसे उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया गया एक एडिटिंग करार दिया है। राकेश बकोरी ने इस बात पर विशेष रूप से नाराजगी जताई कि प्रवीण जगनाथ जैसे पूर्व प्रधानमंत्री इस स्तर के मानहानि अभियान में कैसे शामिल हो सकते हैं। उन्होंने अद्रियन वाले से बात की, उनको सुनते हैं।
1: Après qui Pravin Jagnet in prend mon nom dans Meeting Flak mercredi, mon démenti catégoriquement tout ce bon mensonge et ben screenshot fabriqué à travers AI. Moi-même, mon démontré avec force et l'exemple devant toute la population comment capable servir ChatGPT et change ban numéro ou un screenshot. Il est très facile pour faire sa bonne qualité fabrication là, mais pour moi, il est très très dommage qu'il y ait un ancien premier ministre comme Pravin Jagnat, il rentre dans un piège pareil, qu'il y ait un coup raté par ce bon stratège. Moi, il montrer à toute la population et tout ce qui Pravin Jagnat dit, c'est une façon pour divertir l'attention de toute une population dans ce cas.
0: फ्लाक में एमएसएम के जुटाव के दौरान फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के महानिदेशक संजय दाऊदारी के प्रति की गई निंदाओं का उन्होंने जवाब दिया। कुछ वक्ताओं ने कहा था कि इस पद के लिए उनके पास योग्यता नहीं है, लेकिन उन्होंने पुष्टि की कि मापदंडों के आधार पर वे योग्य हैं और वित्तीय अपराधों के खिलाफ संघर्ष में उनका अनुभव 20 सालों से ज्यादा का है। संजय दाऊदारी ने याद दिलाया कि कानून की

0: धारा 10(2) के तहत ये बात स्पष्ट है कि कम से कम 5 सालों तक एक एंटी करप्शन संस्था में उच्च पद संभाले बिना और वित्तीय अपराधों के खिलाफ संघर्ष में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के बगैर कोई महानिदेशक के लिए योग्य नहीं बन सकता है।
1: एफसीसी एक्ट की धारा 10 के सब सेक्शन 2(e) में कहा गया है कि महानिदेशक को एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने एक भ्रष्टाचार विरोधी संस्था में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में काम किया है और वो भी कम से कम 5 वर्षों के लिए और जिसके पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फाइनेंशियल क्राइम्स के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। मेरे पास 20 से ज्यादा वर्षों का अनुभव है।
0: एफसीसी की जांच के कुछ तरीकों के संदर्भ में कुछ निंदाएं की गई हैं। इस मुद्दे पर पुलिस प्रेस ऑफिस की प्रतिक्रिया ली गई। दफ्तर ने पुष्टि की कि कुछ राजनीतिक बयानों का जवाब नहीं दिया जा सकता और राजनीति में ऐसे वक्तव्य सामान्य है। युद्ध अच्छा है। फ्लक में बुधवार को आयोजित एमएसएम की सभा पर बोलते हुए मंत्री पत्रिका सेवादैन ने ये बात कही। पोटली में कल गुरुवार को दोपहर बाद बैटरी से ऊर्जा को स्टोर करने की प्रणाली के दान के सिलसिले में मॉरिशस और चीन के बीच तय समझौते के बाद ऊर्जा मंत्री एमएसएम की आलोचनाओं का जवाब दे रहे थे। प्रवीण जगनाथ के पहले जुटाव पर बोलते हुए पत्रिका सेवादैन ने कहा कि पुरानी सरकार के संचालन को लेकर अभी तक कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला है। पत्रिका सेवादैन ने बीते सोमवार को एफसीसी के कार्यालय के सामने कुछ पत्रकारों के प्रति एमएसएम के समर्थकों के व्यवहार का कड़ा खंडन किया है। उनको सुनते हैं।
2: Dans l'île de Omi pendant 10 ans, l'île de Omi bien, d'une rêve d'une premier ministre. Ceci dit, mais MSM, me comprend bien qu'il vous a fait un petit peu, même chose comme ça, pour être capable, un petit peu vivant, hein, pour y exister. Mais c'est de bonne guerre, encore une fois. Moi, je me prends en lit avec un sourire, moi. C'est normal, ok? Organise-les, fait tout pour qu'il. Les restes vivants et y aspirer demain pour faire ce qu'il y en a pour faire. Nous, nous avons la responsabilité, c'est notre travail, délivrer ce qu'il y a pour travail. Mais seulement, en même temps, il ne faut pas oublier le passé, il ne faut pas oublier ce qu'il y a à faire. Moi, je dis ça dans certaines places. Qui est un monde pour manifester, devant FCC. C'est un mince. Moi, je dis ça, Premier ministre. C'est une façon de faire pression le FCC. Parce qu'il y a question qui gagne, de haut du monde peut crier, peut dialoguer. C'est une manière de. Est-ce qu'il comme ça nous peut diriger? Est-ce qu'il comme ça pays là pour aller? Ménage journaliste. Du monde là, il est correct, mais pas possible.
0: बजट 2026-2027 एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। आज 3 बजे फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसेलेनियस प्रोविजंस बिल आज के एजेंडे में है। बजट में घोषित कदमों को कानूनी ढांचा देने के लिए ये विधेयक जरूरी है। याद रहे कि प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री ने इन टेक्स्ट के विभिन्न चरणों की एक ही बैठक में समीक्षा की अनुमति देने के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर 65 का हवाला दिया था। एक प्रस्ताव ये भी प्रावधान करता है कि कार्यसूची के समाप्त होने तक कार्यवाही जारी रह सकती है। शैलिनियाबन, गीता सुनारन।
1: एक ही बैठक, 2 विधेयक और बजट कदमों को लागू होने से पहले का एक अहम चरण। फाइनेंस बिल का उद्देश्य बजट में घोषित कर उपायों को कानून का रूप देना है, जबकि इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसेलेनियस प्रोविजंस बिल के तहत कई मौजूदा कानूनों में संशोधन किए जाएंगे ताकि अन्य आर्थिक और सामाजिक कदमों को लागू किया जा सके। इन कदमों में नई आयकर दरें, कुछ बीमा प्रीमियम पर कर तथा आप्रवासन और वर्क परमिट से जुड़े सुधार शामिल हैं। हालांकि बजट पेश किए जाने के बाद कुछ प्रावधानों में बदलाव किया गया है। इनमें मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव की अवधि बढ़ाने से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं। इसे 1 जुलाई 2026 के बजाय 1 जनवरी 2027 से लागू करने का प्रावधान है। इसके लिए कमेटी स्टेज में एक संशोधन पेश किया जाएगा ताकि मानव संसाधनों की बेहतर योजना बनाई जा सके। यदि संसद सदस्य इन दोनों विधेयकों को मंजूरी देते हैं तो इसके बाद इन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलेगी, फिर इन्हें गवर्नमेंट गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा और इसके बाद ये कानून लागू हो जाएंगे।
0: मॉरिशस और ग्रेट ब्रिटेन अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। कल दोनों पक्षों ने एनहेंस स्ट्रेटेजिक ट्रेड पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का मकसद मॉरिशस की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का समर्थन करना है, खासतौर पर डिजिटल परिवर्तन, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी तथा शिक्षा और स्वास्थ्य के संदर्भ में। क्लोदेट्रियो फाकादेवादू, करुणा लालू।
3: इस समझौता

0: और श्रेष्ठ यूके के बीच आर्थिक और व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक अधिक व्यापक ढांचा प्रदान करेगा। इसके तहत दोनों सरकारों के बीच ही नहीं बल्कि निजी सेक्टर और अन्य पक्षों के साथ भी नियमित बातचीत का प्रावधान होगा। चार प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की गई है, ब्लू और ग्रीन इकोनॉमी, स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्तीय सेवाएं। सरकार के हालिया बजट में ये प्राथमिकताएं शामिल हैं। मंत्री धनंजय रामफल ने कहा, हस्ताक्षर किए गए समझौते में दोनों देशों के बीच एक बिजनेस फोरम कायम किया जाएगा, जहां बरतानी निवेशक और निजी मॉरिशन निवेशक भाग लेंगे और उन प्रोजेक्टों पर विचार करेंगे जो आपसी देशों के लिए फायदेमंद होंगे। यूके मॉरिशस का एक प्रमुख आर्थिक साझेदार बना रहता है। 2025 में यूके की ओर 130 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग से अधिक का माल निर्यात किया गया। वहीं दोनों देशों के बीच सेवाओं का व्यापार लगभग 1.8 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग का रहा, जबकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 380 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग दर्ज किया गया। ये मजबूत आर्थिक आधार इस नए एमओयू के साथ और मजबूत होगा। मॉरिशस में बरतानी उच्चायुक्त पॉल ब्रमल ने कहा, हम एक साझा इतिहास से साझा समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। यूके और मॉरिशस घनिष्ठ साझेदार हैं। पिछले वर्ष हमारी द्विपक्षीय व्यापार लगभग 2 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग का रहा, जो लगभग 15% की वृद्धि है। ये संबंध लगातार मजबूत हो रहा है। एक सुदृढ़ रणनीतिक व्यापार साझेदारी स्थापित करके हमारा मकसद ऐसा तंत्र विकसित करना है जिसके माध्यम से हमारे दोनों देशों के व्यवसाय और सरकारें मिलकर प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। इससे व्यापार से जुड़े मुद्दों का सक्रिय रूप से समाधान किया जा सकेगा, हमारे संबंध और मजबूत होंगे तथा मॉरिशस के विजन 2050 के लक्ष्यों को हासिल करने में सहयोग मिलेगा। इस साझेदारी को ठोस निवेश में बदलने के मकसद से मॉरिशस यूके बिजनेस फोरम की स्थापना की जाएगी, ताकि दोनों देशों के हित में सतत और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके।
1: स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन एसटीसी और उसके ईंधन आपूर्तिकर्ता ओक्यू ट्रेडिंग के बीच का अनुबंध इस शुक्रवार को समाप्त हो रहा है। ऐसे में सरकार ने इसे अस्थायी रूप से बढ़ाने का फैसला किया है। इस अनुबंध के कारण मॉरिशस ने एक साल में लगभग 1 बिलियन रुपए की बचत की है। व्यापार मंत्री मैके सिक्वेन के अनुसार अनुबंध की यह अवधि बढ़ाने का उद्देश्य देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था भारत के साथ होने वाले आगामी समझौते पर हस्ताक्षर होने तक लागू रहेगी। इस समझौते से मॉरिशस का पेट्रोलियम आयात बिल और कम होगा, जिसका लाभ देश की जनता को होगा।
0: स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन रोमान की कंपनी ओक्यू ट्रेडिंग के बीच गत वर्ष मॉरिशस को पेट्रोलियम उत्पाद की आपूर्ति के लिए तय किया गया कॉन्ट्रैक्ट 31 जुलाई को समाप्त हो रहा है। 1 अगस्त 2025 से एक वर्ष के लिए तय इस समझौते को असाधारण रूप से 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। यह अतिरिक्त समय मॉरिशस और भारत के बीच प्रस्तावित नए पेट्रोलियम समझौते को अंतिम रूप देने के लिए दिया गया है।
2: qui nous fait étendre ce contrat-là. Et un an de cela, c'est dans la guerre. Et ils ont dit tout prix qu'ils peuvent gagner, ben prix, la guerre. Ça veut dire war price. Ça veut dire pendant deux mois encore, nous pour soulager. Il est bon aussi qu'ils vont dire, le premium price qu'ils nous font signer avec OQ Trading, quand nous comparons avec l'ancien contrat, c'est-à-dire de l'ancien gouvernement, il coûte nous 1 milliard roupies en moins selon un an.
0: इस बीच इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ सरकार से सरकार समझौते पर बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रस्तावित समझौते के प्रमुख लाभों में से एक मॉरिशस के लिए भारत द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुकूल भुगतान व्यवस्था है।
2: Entre temps, nous peut finaliser le contrat avec le gouvernement indien. Un point très positif qui est capable déjà de dire où nous pouvons payer en roupies, c'est-à-dire un produit pétrolier qui nous passe avec Indian Oil à travers le gouvernement indien. Donc, nous pouvons payer en roupies. Donc, ça, c'est déjà un gros avantage.
0: भारत के साथ नए समझौते के अंतिम रूप लेने तक अधिकारियों का कहना है कि ईंधन की कीमतों को स्थिर बनाए

0: रखने के लिए हर आवश्यक प्रयास जारी रहेगा।
1: En janvier, l'UPP va produire pétrolier sur tous les sens autour de 600 dollars métrique tonne. L'année finie reprend, il tourne autour de 1000 dollars métrique tonne. Au niveau de Maurice, le prix de l'essence finit d'augmenter une seule fois. La Mopédiaou, 10 avant l'année, il est 50% plus cher que janvier, nous augmenter une seule fois à la hauteur de 10%. Nous pouvons faire tout pour Tinili, pour absorber le choc, parce que du moment où nous montons le prix l'essence et diesel, il fait l'effet domino sur les produits alimentaires et aussi sur les produits non alimentaires.
0: अब सभी की निगाहें भारत के साथ होने वाले इस समझौते पर टिकी हैं। इसके क्रियान्वयन से जुड़े अंतिम विवरणों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस समझौते का उद्देश्य मॉरिशस के पेट्रोलियम आयात पर होने वाले खर्च को कम करना, साथ ही देश के ईंधन आपूर्ति को और अधिक सुरक्षित बनाना है।
2: अन्य खबरों में, चूंकि गनेशन एलन को सऊदी अरब में मौत की सजा का खतरा है, उनके वकील रमा वलायदेन कई प्रयास कर रहे हैं और अधिकारियों से अपील कर रहे हैं। लातोकेनिक में एक डिजिटल प्रिंटिंग प्रेस केस निदेशक को पिछले 19 जून को उनके एक सूट केस में 3 किलो कोकीन मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया था। एक रिपोर्ट में वकील रमा वलायदेन का दावा है कि उनके मुवक्किल को एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क द्वारा 2 साल से अधिक समय तक मैनिपुलेट किया गया था। उनका तर्क है कि $10.5 million की कथित विरासत के वादे के जरिए उन्हें फंसाया गया था। वकील के अनुसार ये धोखाधड़ी COVID-19 महामारी के दौरान शुरू हुई थी, जब उन्होंने वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों के लिए इंटरनेट पर एक विज्ञापन का जवाब दिया था। वकील रामा वलायदेन का मानना है कि कार्रवाई करना और मित्र देशों से मदद मांगना जरूरी है। उनको सुनते हैं, जिनसे बात की लुविना सूफी ने।
3: मॉरिशस के कई मित्र देश हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, यूरोपीय संघ, जिसका मृत्युदंड पर स्थिति बहुत ही सैद्धांतिक है और वो मृत्युदंड के खिलाफ हैं। अगर किसी व्यक्ति पर मृत्युदंड का खतरा मंडरा रहा है तो यूरोपीय संघ हस्तक्षेप करेगा। अगर मॉरिशस ने कुछ नहीं किया, विदेश मंत्रालय अपने संपर्कों का इस्तेमाल नहीं करेगा तो कठिन हो जाएगा। इसलिए मैंने एक रिपोर्ट लिखी है ताकि गनेशन एलन को न्याय दिलाया जा सके और सभी मॉरिशनों, सभी लोगों को इस मामले को समझने का मौका मिले।
4: Dans le sens pour donner à tout Mauritien, Mauritienne, à tout du monde, pour qu'ils aient compris qui était qui ça était.
2: मामी रवातोमांग की जमानत की अर्जी पर बहस 17 और 18 अगस्त को तय की गई है। मलागासी व्यवसायी मामी रवातोमांग कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बेल एंड रिमांड कोर्ट के समक्ष पेश हुए। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने बचाव पक्ष द्वारा दायर की गई जमानत की नई अर्जी पर अपनी शुरुआती आपत्ति वापस ले ली है, इसलिए अदालत 17 और 18 अगस्त को इस अर्जी के मेरिट पर विचार कर सकेगी। हालांकि FCC ने जमानत के विरोध को बरकरार रखा है। इसके अलावा बचाव पक्ष DPP और FCC के बीच हुए एक समझौते के बाद अपनी रिमांड हिरासत की अवधि बढ़ाने को चुनौती देने के लिए मामी रवातोमांग द्वारा प्रिवी काउंसिल में शुरू की गई प्रक्रिया को वापस ले लिया जाएगा। और विदेश में, अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बोर्ड ऑफ पीस गाजा में हमास और अन्य सशस्त्र समूहों के पूर्ण निःशस्त्रीकरण समाप्ति के लिए एक समझौते पर पहुंच गया है। ट्रंप ने कहा कि निःशस्त्रीकरण पूरा होने पर इसराइल गाजा से पीछे हट जाएगा और इस समझौते को गाजा में अंततः एक नई फलिस्तीनी सरकार द्वारा शासन किए जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। और आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। पूर्व से पाए जा रहे बादल आज सुबह स्थानीय मौसम को प्रभावित करेगा। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह बादल घिरे रहेंगे और देश के पूर्व तथा सेंट्रल प्रांतों पर बारिश होगी। कभी कभार सामान्य से जोरदार बारिश हो सकती है। ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। दोपहर बाद को धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्रांतों पर 23 से 25, अन्य इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व और ऊंचाइयों पर रात के दौरान बारिश होगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 16 से 18, अन्य इलाकों पर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:40 पर और सूर्यास्त शाम 5:52 मिनट पर।

0: तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम कादेर को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: लीजिए शोक समाचार सुनिए। फॉरेस्ट पार्क इंग्लैंड में 63 साल की 63 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रूपा मंगरू जो गोविंद मंगरू की बेटी थी की मृत्यु हो गई है। वे पहले बालांसू के नाम रहती थी। उनकी अर्थी कल शनिवार को 1 अगस्त को मौसम समय अनुसार दोपहर 3:30 फॉरेस्ट पार्क इंग्लैंड से उठाकर इंग्लैंड की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 3:30। एवेन्यू लाफोज रोते बासिन का ट्रबोन में 90 साल की 90 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती तेवंती सितल पैदायशी नाम नवरतन और जो तेवंती सितल नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1:00 उनके बेटे नीतीश सितल के घर एवेन्यू लाफोज रोते बासिन का ट्रबोन से उठाकर गांधी पालमा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 1:00 PM। रारोड मोसेल मॉ सेंट ऑन्द्रे में 82 साल के 82 ईयर्स ओल्ड के श्री चित बहल रामसोहक जो हरिदत्त नाम से भी जाने जाते थे और जो पहले एजुकेशन अफसर थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 10:00 उनकी पत्नी श्रीमती माया देवी रामसोहक के घर रारोड मुसलमान सेंट ऑन्द्रे से उठाकर त्रियोले की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। मुसलमान VIS लालमाटी में 59 साल की 59 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पूर्णिमा बुलक पैदायशी नाम नक्चेदी और जो माया नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 9:30 उनके पति श्री बुजदेव बुलक के घर मोसेलमा VIS लालमाटी से उठाकर लावांचुया की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 9:30। राजा रोड लेस्पेरांस त्रेबुशे में 84 साल के 84 ईयर्स ओल्ड के श्री धर्मानंद ओगातू जो धर्म नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 11:00 उनके बेटे संजय ओगातू के घर राजा रोड लेस्पेरांस त्रेबुशे से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। लापी जेरो बैक्स स्ट्रीट पिटों में 81 साल के 81 ईयर्स ओल्ड के श्री व्यास दत्त रामदोस जो सुरेश नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 10:00 उनकी पत्नी श्रीमती रमावती रामदोस के घर लापेशे गांव बाक्स स्ट्रीट पीतों से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। महात्मा गांधी गली फूंचिसाक में 55 साल की 55 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती विश्वानी रामखलावन पैदायशी नाम तिमल और जो विश्वानी नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 10:00 उनके बेटे अमित रामखलावन के घर महात्मा गांधी गली फूंचिसाक से उठाकर फूंचिसाक की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। माधुलेन पृथ्वीवेजे सैंपिया में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के श्री कृष्ण कुमार बंसरोपन जो क्रेश नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 10:00 उनके घर माधुलेन पृथ्वीवेजे सैंपिया से उठाकर सेकोंस्टांस सैंपिया की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। मेजुनेट रोड रिविया डिजोंगी में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड के श्री ठाकुरदेव कुराया जो गौसों साधु नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दोपहर 3:00 उनके घर मेजुनेट रोड रिविया डिजोंगी से उठाकर कांस्टेबल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। गांधी रोड एनिस फ्लोरों में 56 साल के 56 ईयर्स ओल्ड के श्री जयराज रघुनोत जो गौसों नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 12:00 उनकी पत्नी श्रीमती निर्मला रघुनोद के घर गांधी रोड एनिस फ्लोरों से उठाकर बुशों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 9:00। कोसमाली रोड तेरूज में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड के श्री लेकराम किस्तो जो राम किस्तो नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दोपहर 3:30 उनके घर कोसमाली रोड तेरूज से उठाकर तेमिनिस त्रियोले की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3:30। मुसलमान बासें कटरबोन में 66

0: साठ साल के 66 years old के श्री आनंद कुमार सिरतन, जो आनंद कुमार नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर मुसलमान बासें काटोबोन से उठाकर गांधी पालमा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। कारो आकाशिया थ्रा बुटीक लिस्कालिये में 86 साल की 86 years old की श्रीमती बिंदामती खीरू पैदाशी नाम जीवन और जो मैडम बिंदु नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थ ही आज दिन के 12:30 बजे उनके घर कागुआ कासिया थ्वाबुची क्लिस्काली से उठाकर मारिजानी रोज बेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 12:30 PM। मुस्के रोज सेबास्तोपोल में 61 साल के 61 years old के श्री अनिल चकवा की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थ ही आज दिन के 1 बजे उनके घर मुस्के रोज सेबास्तोपोल से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: तो चलते चलते जिनका आज जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, अपने बिजनेस की नई शुरुआत कर रहे हैं, तो हम उनको सभी को विश करेंगे पूरे आरएमडी रेडियो मस्ती की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं थी आपके साथ पूनम, मेरे बाद आपको साथ मिलेगा मनीष माँ का मॉर्निंग बिट में। तो मेरी तरफ से बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।
1: वेलकम टू आरएमटी
2: रेडियो मस्ती,
1: नॉर्थ साउथ
2: 103.5,
1: ईस्ट वेस्ट
2: 96.4,
1: सेंटर
2: 99.4।
1: आरएमटी रेडियो मस्ती,
2: रेडियो मस्ती,
1: द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक, फील द मस्ती।
0: टाइम चेक, सुबह के 7 बजे है।
3: Morning beat, a good beat for your morning show. James,
1: RM2 Radio Musty in the mix.

0: इश्क मंजूर है जी, मंजूर है, प्यार है तो सब कुछ होता है।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: जी हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, दिन में अगर आप पॉजिटिविटी और प्यार लेकर चलेंगे ना, तो लाइफ विल थ्रो ओनली द बेस्ट एट यू। यस, कभी कभी यू हैव टू उम्मीद रखना कि सब कुछ ठीक हो जाता है टाइम के साथ साथ। वेलकम, यहाँ पर आपके मॉर्निंग को भी ठीक बना देते हैं, आपके मॉर्निंग को भी मस्ती बना देते हैं। 7:04 अभी 4 मिनट हुए हैं। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, वेलकम टू योर मॉर्निंग बीट। लेते हैं अभी एक छोटा सा ब्रेक एंड बीट तैयार फॉर द फार्मलैंड गेम, लेडीज एंड जेंटलमैन, जहाँ पर आपके लिए सुनाया देगा एक साउंड जहाँ पर आपको ठीक से सुनना होगा और हमको अभी झट से फोन करना पड़ेगा। अभी के लिए देते एक छोटा सा ब्रेक, गाने के बाद हम फार्मलैंड का गेम शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग अगेन, हैव अ वंडरफुल स्टार्ट ऑफ द डे।
1: RM2
2: रेडियो मस्ती
3: लाफोर बिलबिल काजी रिटर्ने कॉट विनर
4: बिलबिल काजी दे रिटर्न कॉट विनर्स। Du vendredi 31 juillet au samedi 1er août, le fromage Kraft Cheddar de 250 grammes à 78,50 € et le grille pain de la marque Tissam de 650 watts à 399,95 €. Découvrez notre brochure sur notre page Facebook et sur winners.mu.
3: Nous ramène, nous la
5: On est tous winners.
1: RM2
2: Radio Mustique.

अच्छा जी, थोड़ी देर में शुरुआत करेंगे द फार्मलैंड गेम, जहां पर आपको तीन टैगलाइन बोलना पड़ेगा और आसान और तैयारी और स्वादिष्ट. जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, वैसे अभी के लिए आप शुरुआत भी कर सकते हैं टू रजिस्टर राइट नाउ फॉर द गेम 4028035 पर फोन कीजिएगा. हम यहां पर इस एंड पर आप से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे. ओके पर फोन करिएगा जरूर. हैव अ वंडरफुल स्टार्ट ऑफ द डे. वैसे फार्मलैन के लिए आई गॉट हियर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर यू. इट्स अ गिफ्ट हैम्पर कंसिस्टिंग ऑफ हाउ फार्मल फार्मलैन फैमिली सीरियल, फार्मलैन मिल्क पाउडर 1 kg, मिल्क पाउडर 500 kg, 1 exclusive मग, 1 bag. Enjoy your delicious treats with your family. अभी के लिए आई गॉट सम रियली नाइस ट्रैक जस्ट टू हैव अ वंडरफुल स्टार्ट ऑफ द मॉर्निंग विद यू. सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास. 2 घंटों का सुहाना सफर प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में, जहां सरस्वती रामायण एसोसिएशन, प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन, ओलंपिक वुमेन्स एसोसिएशन, विश्वनाथ मंदिर महिला समाज, सीनियर सिटीजन प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन और प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर सीनियर सिटीजन एक साथ इस म्यूजिकल सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे. ऑन दिस फ्राइडे 31st of July दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RN3 रेडियो मनोरंजन. साथ ही आप इसको टिकटॉक पर भी फॉलो कर पाएंगे. सो भूलिएगा नहीं, इस शुक्रवार 31 जुलाई को फ्रॉम नून टिल 2 PM प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास. जेठा तुलसीदास.

0: beat for your morning show. James.
1: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: A good beat for your morning show. James.
1: RM2, Radio Musty in the mix.
2: सावरिया तेरा फिर तारे से एक फ्रॉम द मूवी भूल चूक माँ. वैसे थोड़ी देर में हम कॉलर्स को लेंगे ऑन एयर. आई होप यू हैव द राइट आंसर अबाउट द फार्मलैंड गेम लेडीज एंड जेंटलमैन. वैसे और आसानी हो जाएगी अगर आप हमारी टैगलाइन को सुन पाएंगे.

0: पास अगर लकी विनर हो जाए तो बात ही बन जाएगी।
1: कमजी वाला मशीरा एक फॉर्मलेन नुगेयों को बुकु प्लीज।
2: A good beat for your morning show. RM2
3: Radio Musti.
0: साथ इस मॉर्निंग शो में जुड़ गई है शगुफ्ता जी, उनसे बात हम करते हैं। हेलो जी।
4: हेलो,
0: गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
4: ठीक
0: हो शगुफ्ता जी? आप रहती कहाँ पर हो?
4: तेहूज।
0: तेहूज, तेहूज, आज

0: मौसम कैसा है यहाँ पे?
1: मौसम बहुत सुहाना है।
0: अरे वाह, आप काम पर जा रही है आज?
1: हाँ,
0: ऊपर से मौसम सुहाना होता है, कभी कभी बारिश हो जाता है तो जाने का मन नहीं करता ना। तो कितने बजे आप निकलेंगी घर से?
1: 8 बजे।
0: वेरी गुड, तभी तो आपके पास तो टाइम ही टाइम है अभी की कल तैयारी करने के लिए। ओके जी, सो शगुफ्ता जी, मैं क्या करने वाली हूँ, एक साउंड में प्ले करने वाली हूँ, ओके, अबाउट फार्मलैंड। आप ठीक से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और तीनों के तीनों टैगलाइन आपको बताना पड़ेगा ऑन एयर। ओके जी, आप ध्यान से सुनिए, मैं चला रही हूँ।
2: L'habitude qui jamais pousse en zé, ou tea time avec Farmland.
3: Ah, ben oui, madame Sheila, ou toujours bien smart.
2: Et comme au son du travail, une appli réconfortant qui retrouve la famille autour d'une bonne préparation avec Farmland.
3: Où fais-moi faire?
2: Astérix Farmland Hot Chocolate, la vie en complet.

0: फार्मलैंड समय न्यू स्मार्ट चॉइस।
1: और तो और ये आपकी बारी है, आपको बताना है कि तीनों के तीनों टैगलाइन क्या हैं। जी हम सुनते हैं। और ज्यादा
2: ओके
1: सो कैसे कैसे आप कहेंगी? तो और ज्यादा को क्रियोल में या फिर फ्रेंच में ट्रांसलेट करके क्या हो जाता है? और आसान और तैयारी आई थिंक यू गॉट इट द राइट वे इन द फर्स्ट प्लेस। लेकिन आपको ओको याद करना पड़ता था। जी हाँ, ओको प्लीसेप ओको प्लीपरासियो। सो दिस इज इट। वैसे मॉर्निंग मॉर्निंग में आपको दे ही देते हैं कंग्रेचुलेशंस। Congratulations, जी, thank you so much for participating in this morning time. जी हाँ, आपको मिल रहे हैं, आप सुनिएगा, ये Farmland का gift hamper consisting of Farmland family cereal, Farmland milk powder 1 kg, Farmland milk powder 500 kg, one exclusive mug, एक chaser bag. So enjoy your delicious treats with your family. Thank you so much. Farmland milk के साथ, Farmland family cereal के साथ, Farmland hot chocolate के साथ, you enjoy your day and your life also. Thank you so much. Bye bye.
2: Bye bye.
1: Bye bye.

0: A good beat for your morning show.
1: बहुत सारे लोगों ने फोन किया है और लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम वापस फोन करते हैं तो वो लोग फोन नहीं उठाते. कोई बात नहीं, यहाँ पर आई गट हियर समबडी हु हैज रजिस्टर्ड फॉर द बर्थडे. तो आज चाचा दास बंधु का स्पेशल हैप्पी बर्थडे है. तो वो रहते हैं गुडलैंड्स, विशेस फ्रॉम मनीषा. मनीषा जी ने फोन किया है और कहा है कि ये स्पेशल सरप्राइज हो जाए मेरे चाचा के लिए. तो रोशन, तीशा एंड तक्षवी है. तो आपको कंग्रेचुलेशंस दास जी. वैसे फोन तो ना उठाने पाए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप रेडियो को सुन रहे हैं, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. और मनीषा जी उनको इन्फॉर्म कीजिएगा, वो बने हैं लकी विनर फॉर अ वाउचर फॉर टू यू बाय लोलो हाइपरमार्केट. थैंक यू सो मच. हैप्पी बर्थडे.

0: a good beat for your morning show.
1: Radio Musti.
2: 7:36 हुए हैं, थोड़ी देर में स्पोर्ट्स अपडेट्स, लेकिन उससे पहले वैसे थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं विद ऑफ कोर्स आरएम टू रेडियो मस्ती. यू कैन प्ले एंड विन अ वाउचर वर्थ 500 रुपीज ऑफर टू यू बाय आर योर योग इंटरनेशनल. जी हाँ, अगर हम बात करें अबाउट क्रिकेट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा सीजन 4 ऑर्गेनाइज बाय मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन इज बैक विद एक्साइटमेंट फॉर इट्स व्यूअर्स इन पार्टनरशिप विद इंडियन ऑयल सर्वो and co-sponsored by Myop, starting us from the 1st of August at SSR National Cricket Ground Mapum, जहाँ पर 6 teams participate करने वाले हैं. Continental Cheetahs, AMG Panthers, Campus Broad Lions, APP Leopards, One Health Jaguars and Thomas Cook Tigers. Visit at ground to support your team. Matches will be played on Saturday afternoon and Sunday morning and afternoon also. तो सवाल ये रहा, for you to be able to win one gift voucher offered to you by Ayurveda International, क्या आप बता सकते हैं कि कपिल देव का जो किरदार है इन द मूवी 83 किसने निभाया था? जी हाँ, बताइएगा which Bollywood actor played Kapil Dev in the movie 83 on 549-91294 for all the best.

0: बड़न सुंदरी मूवी से लिया गया डेंजर फॉर यू.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musty.
0: Got our winner for the question for the Ireland cricket game, ladies and gentlemen.

0: And वैसे यहाँ पर थोड़ी देर पहले हमने पूछा था सवाल कि which Bollywood actor played Kapil Dev in the movie 83? So the right answer is Ranveer Singh, of course. In this morning show में हमारे साथ हैं हमारे lucky winner, उनका नाम है Rajiv Ramphur, जो रहते हैं Val de Prete, Port Louis. Congratulations! जी हाँ, सुबह सुबह आपको मिल रहा है ये gift voucher worth 500 rupees offered to you by Aryo Yoga International in the context of Island Cricket Extravaganza. Have a wonderful day. Enjoy your relaxation moment here. Thank you so much for playing with RM2 Radio Masti. और आप कलेक्ट करने आ सकते हैं अपने gift voucher को 9 से लेकर 4 बजे के बीच, you know, office hour time at the MBC itself. Have a wonderful day. Have a really, really nice time tuning to RM2 Radio Masti. जैसे कि हमने कहा कि थोड़ी देर में sports updates.
1: Morning beat. A good beat for your morning show. James.
2: RM2 Radio Musty in the mix.
3: Sports magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
4: Sports news.
5: जारी है और आज के प्रोग्राम में मॉरिशस के काफी एथलीट होंगे. आज है मेडल का रंग बदलने का दिन या फिर नए मेडल जीतने का दिन. सो आज का प्रोग्राम नोएमी अल्फोंस 1500 मीटर T54 के फाइनल में होगी, ये 1:20 पर. फिर 3 बजे 400 मीटर T54 सेमीफाइनल में नोएमी अल्फोंस और बांदी पेरिन. रात्रि के 11 बजे हाई जंप T37 में अनाइस एंजेलिन. जूडो में विंस्ले गंगाया तातामी में उतरेगा 2 बजे बेस्ट ऑफ 16 राउंड में. फिर 2:20 पर मारी सारा सिल्वा रियू की बारी. 2:50 पर लुई राशेल फ्लोरा. 3:10 पर लियाना टोमा और 4 बजे ओनोरिन बेगे उतरेगी. बॉक्सिंग में मेवे क्लेयर का सेमीफाइनल 7 बजे, ये होगा ओलांडो ओलन. बॉक्सिंग में मेवे क्लेयर का सेमीफाइनल 7 बजे, ये होगा ओलांडा ओले स्टोटोमी के खिलाफ. ब्रॉन्ज मेडल तो जीत चुका है मेवे क्लेयर, अब रंग बदलने का मैच होगा. अगर जीत गया तो सिल्वर मेडल पक्का और फाइनल में कदम रखेगा. एथलेटिक्स में 800 मीटर का फाइनल जिसमें होगी राशेल प्रोफेनस्टाइन. कल ट्रिपल जंप में आदेल क्यूपिडो क्वालिफिकेशन तक रह पाया, वो 14वें स्थान पे आया, 14th प्लेस, जो फाइनल में जाने के लिए काफी नहीं था. और शॉर्ट पुट में फाइनल में था डॉक्टर बेर्नार्ड बाटिस, वो 14th प्लेस 14वें स्थान पे आया, ओपोजिशन काफी तगड़ा था. यूएफए और फीफा के बीच अनबन. फीफा के प्रेसिडेंट यानी इन्फांटिनो को चेतावनी दी गई कि अगर फीफा फुटबॉल कॉम्पिटिशंस के लिए प्राइवेट इन्वेस्टर्स से हाथ मिलाएगा तो यूरोप के 55 देश आने वाले वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करेंगे, उसमें भाग नहीं लेंगे. एक इमरजेंसी मीटिंग आपातकालीन बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया. कोकाकाफ जिसमें 41 मेंबर हैं, वहां भी इन्फांटिनो को नो कहा गया. ऐसे में इन्फांटिनो पर दबाव है. वर्ल्ड कप को एक निवेश का पुतला नहीं बनाया जा सकता. वर्ल्ड कप कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, ऐसा यूएफए वालों ने कहा. इन्फांटिनो का प्लान स्वीकार नहीं है. प्रीमियर लीग सीजन शुरू नहीं हुआ है पर झाड़ू मार अभियान शुरू हो गया. न्यूकासल यूनाइटेड से एडी हाउ जा रहा है, उसके स्थान पर आ रहा है माचियास येजल. वो आरबी लेप्ज़िग का कोच रह चुका है, अभी वो सऊदी प्रो लीग अल अली में है. और अलन शीरर ने बताया कि न्यूकासल यूनाइटेड के बुरे दिन आ रहे हैं, उसको संभलना होगा. यूईएफए यूरोपा लीग के सेकंड क्वालिफाइंग राउंड में कल मकाबी तेल अवीव ने 1-0 से शेरिफ को हराया. अन्य नतीजे, राडेक कराउवे 3 ट्रोम्सो 1. मिडजिलांड की हार, बेसिकतास ने उसे 2-0 से हराया. पाफोस 4 हाजडुक स्प्लिट 0. पीएओके 2 जिनामो केव 0. CSK Sofia 0, Karabakh 0, पेनाल्टी पर CS

0: Turkey is Sofia qualify. Anderlecht in Hammarby 8. Ferencváros 2, 22. Ferencváros qualify. Benfica 5, St. Gallen 0. Conference League Mekkel Kafimestre, Vaduz, Oda, Ives, Intertuku, Jablonek, Noah, Kalju, Göteborg, FC Brand, Nifty, Motherwell, Nordjylland, DEC 1904, Zalgiris, Larnaca, Rijeka, New Saints, Rako, Ajax, Skedija, Sion, Partizan, Austria, Vienna, Cluj, Katowice, HJK, NSI, Dynamo City, Hibernian, Braga, Vitex, Jesabilog, Jitpae, Baki match, draw. Scottish Premier League शुरू हो रहा है पहला मैच Dundee United versus Rangers और club friendlies में आज Juventus, Nice, Birmingham, Barcelona, Leeds ने Sunderland को 1-0 से हराया friendlies में और Sydney Cup में कल Chelsea का मुकाबला Tottenham Hotspur से होगा कल ही Manchester United versus Atletico Madrid, Manchester City versus Inter Milan और Real Madrid Florentina वापस आते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल टेबल में ऑस्ट्रेलिया लीडिंग 51 गोल्ड मेडल टोटल 110 इंग्लैंड के पास है 15 गोल्ड मेडल कनाडा 15 स्कॉटलैंड के पास है 9 गोल्ड मेडल इंडिया अभी 10वें स्थान पे उतर आया है उसके पास है 3 गोल्ड मेडल टोटल 17 मॉरिशस के पास एक मेडल तो आ गया है उसका रंग आज बदल सकता है मैं वेक्लेयर सेमीफाइनल में होगा और पैरा एथलेटिक से भी उम्मीद है मेडल जीतने के लिए जूडो से भी कुछ हो सकता है आले मोरिस खेलेंगे जी जान से और हम देखेंगे गर्व के साथ मेडल लेकर आएंगे ये तो पक्का होगा जरूर लेट्स होप एंड से आले मोरिस
1: Bye-bye. Thank you so much, Arvind ji, for the latest updates. वैसे साढ़े आठ बजे फिर से सुन पाएंगे ये स्पोर्ट्स अपडेट्स जिन्होंने मिस किया है, यू नो, साढ़े आठ बजे तो आप कैचअप कर पाएंगे ही.
2: This magazine was brought to you by Quality Deco, the floor expert.
3: Morning Beat. A good beat for your morning show. James.
4: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: बजे रहना तेरे को जुबी नोटिया और ज़ारा की आवाज में फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन हियर वी गो फॉर द गेम
1: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो RM2
2: रेडियो मस्ती
0: से दिस गेम इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय बार्जेलो योर फ्रेग्रेंस स्पेशलिस्ट बार्जेलो इज एट विक्टोरिया अर्बन टर्मिनल पॉपुलर बार्जेलो द सेंट ऑफ क्वालिटी फॉर इंक्वायरीज यू कैन कॉल ऑन 214

0: क्या बात है यार, इतने सारे पार्टिसिपेशन के लिए थैंक यू सो मच. हैव अ वंडरफुल डे गाइस. वैसे थोड़ी देर पहले हमने पूछा था सवाल कि बार्जिलो इज अ ब्रांड ओरिजिनली फ्रॉम व्हिच कंट्री. इज इट ए टर्की, बी इटली और फ्रांस? एंड द राइट आंसर इज टर्की. ऑफ कोर्स हमारे साथ हमारे लकी विनर है, उनका नाम है गिरीश जान. कंग्रेचुलेशंस गिरीश जी, क्या बात है. इस मॉर्निंग में आपको मिल गया है वाउचर वो 500 रुपीस ऑफ 50 ऑफ कोर्स बाय बार्जिलो. दिस ग्रेमिंग इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय बार्जिलो, योर फ्रेग्रेंस स्पेशलिस्ट. बार्जिलो एट विक्टोरिया अर्बन टर्मिनल पोर्ट लुइस, सेंट ऑफ क्वालिटी. ऑल इंक्वायरीज प्लीज कॉल ऑन 2146811 और 5251 1805.
1: RM2 Radio Musti.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty. Feel the Musty.
5: Time check. सुबह के 8 बजे हैं.
6: नमस्ते. अब जब भोजपुरी में समाचार सुने जाए, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल राष्ट्रमंडल खेल में आज मोशस खातिर अहम दिन है. मुक्केबाज मेवन क्लेयर 70 किलोग्राम से कमती वर्ग के सेमीफाइनल में वेल्स के ओलंदो होली सुतोमी से भिड़ी जीत ओकरा फाइनल में पहुंचाए. वहीं नोएमी अल्फोंस आज वेल्स 1500 मीटर फाइनल में उतरी. फ्लाक में एमएसएम के जुटाव के दौरान एफसीसी के महानिदेशक संजय दाऊदारी की योग्यता पर ही उठावल गल सवाल के ऊ जवाब देते हुए खुद के पूरी तरह योग्य बतैलन और कानून के हवाला देलन. दूसर का और ऊर्जा मंत्री पत्रकार से वादन पोटली में मौसस और चीन के बीच ऊर्जा भंडारण प्रणाली समझौते के बाद पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण

0: जगनाथ और ओएमएसएम के आलोचना के करारा जवाब देलन, पुराना सरकार पर ही सवाल उठैलन और पत्रकार के प्रति पार्टी समर्थक के दुर्व्यवहार के कड़ा निंदा करलन। बजट 2026-2027 के कदम के पारित करे खातिर फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसलेनियस प्रोविजंस बिल आज 3 बजे एजेंडा में रही। प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री स्टैंडिंग ऑर्डर 65 के हवाला देते हुए एक ही बैठक में एंकर सभी चरण की समीक्षा की अनुमति दीयन और कार्यसूची समाप्त हो लाले सदन की कार्यवाही जारी रही। मलागासी व्यवसायी मामी खावा तुमांग के जमानत अर्जी पर 17 और 18 अगस्त की सुनवाई तय होल बाटे। कहे कि FCC अपन शुरुआती आपत्ति वापस ले ले बाटे। साथ ही बचाव पक्ष DPP और FCC के बीच समझौता के बाद प्रिवी काउंसिल में रिमांड बढ़ाए के देवल गल चुनौती के वापस ले लेवल जाए। और दूसरे देश की खबर में हमास बोलेलन कि ट्रंप द्वारा बोर्ड ऑफ पीस योजना की घोषणा के बाद गाजा में हथियार छोड़े खातिर सहमत हो गलबा, जे पर इसराइल देने से अभी ले कोनो प्रतिक्रिया ने आलबाटी। तो देश विदेश की खबर संगे भोजपुरी में समाचार समाप्त भल। अपन ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

0: जाए दे क्या बात है भोजपुरी बाजा बाजी बॉयज पैक पैक को कहिए गाना। वैसे हमने शुरुआत की है तो सेकंड आवर कितना मस्ती कर रहे हैं यार, जस्ट टॉकिंग टू पूना एंड सेइंग यार बहुत सारे लोग अभी तो बस एक दूसरे को टीज भी कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं गाड़ी में चलाते चलाते, यू नो गाड़ी को चलाते चलाते बस यूं ही गाड़ी में मजे ले रहे हैं। वेरी गुड। ऊपर से इतने सारे प्लान्स, गीत गवाई, शादी का माहौल, लाइट्स 31st of July। एक्चुअली शादी का माहौल तो बनता ही रहता है, रिसेशन हो या इन्फ्लेशन, वैसे खुशियाँ की ये जो बातें हैं बांटने के लिए होता है। एंड ऑफकोर्स आई गट हियर सो मेनी पीपल ट्यूनिंग टू आर इनटू रेडियो मस्ती, अभी के लिए आप सभी को कहना चाहते हैं 8:08 होने को है, हैव अ वंडरफुल स्टार्ट ऑफ द मॉर्निंग। फ्राइडे 31st of July है एंड वी कैन से वीकेंड भी शुरू हो ही चुका है, वी कैन से दैट, क्योंकि फ्राइडे का जो माहौल होता है ना मॉर्निंग शो में ही सेट हो जाते हैं। अभी के लिए मौसम का हाल, हियर वी गो।
1: Morning beat, a good beat for your morning show. James,
2: RM2, Radio Musti in the mix.
1: It's the weather broadcast with winners.
3: On est tous winners.
4: पूर्व से पाए जा रहे बादल आज सुबह स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह बादल घिरे रहेंगे और देश के पूर्व तथा सेंट्रल प्रांतों पर बारिश होगी, कभी कभार सामान्य से जोरदार बारिश हो सकती है, ऊंचाइयों पर कोहरे भी छाए रहेंगे। दोपहर बाद को मौसम सुहाना रहेगा। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 23 से 25, अन्य इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व की ओर से बहेगी जिसके झोंके 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंचेगी और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। पूर्व और ऊंचाइयों पर रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे और कुछ वर्षा होगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में आज सुबह नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:40 पर और आज शाम 5:52 पर सूरज ढल जाएगा।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
5: La foire Belbel Kadi retourne Cote Winners.
6: Belbel Kadi de retour Cote Winners. Du vendredi 31 juillet au dimanche 2 août, le riz basmati superstar de 5 kilos à 329,95 avec l'offre 2 achetés 1 offert, et uniquement le vendredi 31 juillet, la gamme de jus concentré Sunquick de 700 ml à 221,95. Découvrez notre brochure sur notre page Facebook et sur winners.mu.
7: On est tous winners.
8: सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास, 2 घंटों का सुहाना सफर प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में, जहां सरस्वती रामायण एसोसिएशन, प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन, ओलंपिक वुमेन्स एसोसिएशन, विश्वनाथ मंदिर महिला समाज, सीनियर सिटीजन प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन और प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर सीनियर सिटीजन एक साथ इस म्यूजिकल सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे। ऑन दिस फ्राइडे 31st of July दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RN3 रेडियो मनोरंजन, साथ ही आप इसको टिकटॉक पर भी फॉलो कर पाएंगे। सो भूलिएगा नहीं, इस शुक्रवार 31 जुलाई को फ्रॉम नून टिल 2 PM प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास।
9: हम महफिल महफिल।

0: ठुमके शरीर फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन, आप जुड़े रहिए हमारे साथ और खेलिएगा भरपूर हमारे साथ और जीतने का मौका भी दिया जा रहा है आप सभी को। जी हाँ, प्ले विद आरएन टू रेडियो मस्ती व्हेन आई गिव वाउचर ओवर 500 rupees ऑफ टू यू बाय विनर्स। तो आपको सिर्फ सवाल का जवाब देना होगा 54991294 पर कि अंटिल द 1st of August व्हाट इज द नॉर्मल प्राइस एंड द प्रमोशन प्राइस ऑफ क्राफ्ट चेडर चीज 250 grams। अंटिल द 1st of August, what is the normal price and the promotion price of Kraft cheddar cheese 250 grams? All the best with your full name and address.
1: RM2
2: Radio Musti. What if one decision could change your life forever? Your future begins at the University of Technology Mauritius, where dreams become careers and ambitions become achievements. Whether you're an HSE holder ready for your next chapter or a working professional looking to advance your career, UTM offers internationally recognized industry-focused programs designed for your success. The October intake is now open. Don't just earn a degree, earn your future. Apply today at the University of Technology Mauritius. UTM, shaping minds, transforming futures.
1: RM2
2: Radio Musti.

0: खुशी जी कहना फ्रॉम द मूवी थग्स ऑफ हिंदुस्तान. सुरैया जान लेगी क्या, अब शादत लानी है श्रेया घोषाल बनाते इस गाने को. वैसे अभी के लिए सवाल ये रहा आपके लिए, फॉर यू टू बी एबल टू विन चार एंट्री टिकट्स एंड अ फूड कूपन फॉर द जेंट्स लिटिल इंडिया शाही थाली फॉर द उत्सव इंडिया मर्चेंट शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC एज फ्रॉम द 12th of August till the 16th of August SBICC Pi में लगने वाला है. So here we go ladies and gentlemen, तैयार हो जाइए for the सवाल.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: वैसे इस 5 दिनों में होने वाला है shopping, entertainment और family fun featuring international shopping, home shopping के लिए entertainment shows होंगे, magic shows होंगे, fashion shows होंगे. Of course, जब entertainment की बात करते हैं तो Canma show, blood donation camp and food festival के साथ साथ special appearance by Bollywood choreographer Dharmesh sir तो आएंगे ही. लेकिन साथ में क्या आप बता सकते हैं हाँ या ना में जवाब दीजिएगा. ओके, क्या वहाँ पर टुगेदर विद द बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर देयर विल बी द लाइव परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन. जी हाँ, हाँ या ना में जवाब दीजिए, ट्रू और फॉल्स, इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन वहां पर उपस्थित होंगे आपके एंटरटेनमेंट के लिए एट द उत्सव इंडिया मर्चेंट शॉपिंग कार्निवल. जी हाँ, बताइएगा ट्रू ऑफ फॉल्स, हाँ या ना में जवाब दीजिए ऑन दिस नंबर 5991294 पर. ऑसम डे टू ऑल.

0: साढ़े आठ बज रहे हैं. वैसे तो आप तो जानते ही है कि साढ़े आठ बजे तो शाम आपके लिए रिकैप. अब द स्पोर्ट्स वर्ल्ड, हियर वी गो. अरविंद जी आपके लिए गुड मॉर्निंग.
1: स्पोर्ट्स न्यूज,
2: रेडियो मस्ती इन द मिक्स.
3: गुड मॉर्निंग आपको. गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स. द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. कॉमनवेल्थ गेम्स जारी है और आज के प्रोग्राम में मॉरिशस के काफी एथलीट होंगे. आज है मेडल का रंग बदलने का दिन या फिर नए मेडल जीतने का दिन. सो आज का प्रोग्राम नोएमी अल्फोंस 1500 मीटर T54 के फाइनल में होगी, ये 1:20 पर. फिर 3 बजे 400 मीटर T54 सेमीफाइनल में नोएमी अल्फोंस और वांडी पेरिन. रात्रि के 11 बजे हाई जंप T37 में अनाइस एंजेलिन. जूडो में विंस्ले गंगाया तातामी में उतरेगा 2 बजे बेस्ट ऑफ 16 राउंड में. फिर 2:20 पर मारी सारा सिल्वा रियू की बारी.

0: 2:50 पर लुई राशेल फ्लोरा, 3:10 पर लियाना टोमा और 4:00 ओनोरिन बेगे उतरेगी। बॉक्सिंग में मेवे क्लेयर का सेमीफाइनल 7:00 ये होगा ओलांदा ओले स्टोटोमी के खिलाफ। ब्रॉन्ज मेडल तो जीत चुका है मेवे क्लेयर, अब रंग बदलने का मैच होगा। अगर जीत गया तो सिल्वर मेडल पक्का और फाइनल में कदम रखेगा। एथलेटिक्स में 800 मीटर का फाइनल जिसमें होगी राशेल प्रोफेंस्टाइन। कल ट्रिपल जंप में आदेल क्यूपिडो क्वालिफिकेशन तक रह पाया, वो 14वें स्थान पे आया 14th प्लेस, जो फाइनल में जाने के लिए काफी नहीं था। और शॉर्ट पुट में फाइनल में था डॉक्टर बेर्नार्ड बाटिस, वो 14th प्लेस 14वें स्थान पे आया, ओपोजिशन काफी तगड़ा था। यूएफए और फीफा के बीच अनबन, फीफा के प्रेसिडेंट यानी इन्फांटिनो को चेतावनी दी गई कि अगर फीफा फुटबॉल कॉम्पिटिशंस के लिए प्राइवेट इन्वेस्टर्स से हाथ मिलाएगा तो यूरोप के 55 देश आने वाले वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करेंगे, उसमें भाग नहीं लेंगे। एक इमरजेंसी मीटिंग आपातकालीन बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया। कोंकाकाफ जिसमें 41 मेंबर हैं वहां भी इन्फांटिनो को नो कहा गया। ऐसे में इन्फांटिनो पर दबाव है, वर्ल्ड कप को एक निवेश का पुतला नहीं बनाया जा सकता, वर्ल्ड कप कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, ऐसा यूएफए वालों ने कहा। इन्फांटिनो का प्लान स्वीकार नहीं है। प्रीमियर लीग सीजन शुरू नहीं हुआ है पर झाड़ू मार अभियान शुरू हो गया। न्यूकासल यूनाइटेड से एडी हाउ जा रहा है, उसके स्थान पर आ रहा है मैथियास जेसल, वो आरबी लेप्ज़िग का कोच रह चुका है, अभी वो सऊदी प्रो लीग अल अली में है। और अलन शीरर ने बताया कि न्यूकासल यूनाइटेड के बुरे दिन आ रहे हैं, उसको संभलना होगा। यूईएफए यूरोपा लीग के सेकंड क्वालिफाइंग राउंड में कल मकाबी तेल अवीव ने 1-0 से शेरिफ को हराया। अन्य नतीजे, राडेक कराउवे 3 ट्रोम्सो 1, मिडजिलांड की हार, बेसिकतास ने उसे 2-0 से हराया। पाफोस 4 हाजडुक स्प्लिट 0, पीएओके 2 दिनामो कीव 0, सीएसके सोफिया 0 काराबाग 0, पेनाल्टी पर सीएसके सोफिया क्वालिफाई। अंडेलेक 3 हमाबी 1, फेरेनवारोस 2 ट्वेंटी 2 फेरेनवारोस क्वालिफाई, बेनफिका 5 सेंगालेन 0। स्कॉटिश प्रीमियर लीग शुरू हो रहा है, पहला मैच डंडी यूनाइटेड वर्सेस रेंजर्स, और क्लब फ्रेंडलीज में आज यूवेंटुस निस बर्मिंगम बार्सिलोना, लीड्स ने संडरलैंड को 1-0 से हराया फ्रेंडलीज में, और सिडनी कप में कल चेल्सी का मुकाबला टोटनहम हॉटस्पर से होगा। कल ही मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस इंटर मिलान और रियल मैड्रिड फ्लोरेंटिना। वापस आते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल टेबल में, ऑस्ट्रेलिया लीडिंग 51 गोल्ड मेडल टोटल 110, इंग्लैंड के पास है 15 गोल्ड मेडल, कनाडा 15, स्कॉटलैंड के पास है 9 गोल्ड मेडल, इंडिया अभी 10वें स्थान पे उतर आया है, उसके पास है 3 गोल्ड मेडल टोटल 17, मॉरिशस के पास 1 मेडल तो आ गया है, उसका रंग आज बदल सकता है। मेवे क्लेयर सेमीफाइनल में होगा और पैरा एथलेटिक्स से भी उम्मीद है मेडल जीतने के लिए, जूडो से भी कुछ हो सकता है। आले मोरिस खेलेंगे जी जान से और हम देखेंगे गर्व के साथ, मेडल लेकर आएंगे ये तो पक्का होगा जरूर। लेट्स होप एंड से आले मोरिस, बाय बाय।
1: Bye bye. Thank you so much. Have a wonderful day, Arvind ji. Thank you for the updates.
2: Morning beat. A good beat for your morning show. James.
3: RM2 Radio Musty in the mix.

देखा जाए तो बुद्ध समन मन तो सब बुद्ध ही होता है, छोटी छोटी बात पर अपसेट हो जाते हैं, इसको समझाना पड़ता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे यहाँ पर थोड़ी देर पहले हमने पूछा था सवाल कि यार यू गेट चांस टू प्ले विद अस एंड विन 4 एंट्री टिकट्स एंड अ फूड कूपन फॉर द जेन्स लिटिल इंडिया शाही थालिया दी उत्सव इंडिया मर्चेंट शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC एज फ्रॉम द 12th ऑफ ऑगस्ट 2026 till the 16th of August 2026 at SBICC Pi, starting at from 10 a.m. till 9 p.m. जहाँ वहाँ पर आप experience कर पाएंगे shopping, entertainment, family fun, जहाँ पर international home shopping है, entertainment shows है, magic shows, fashion shows, karma show, blood donation camp, food festival. और भूलिए का मत, वहाँ पर आने वाले हैं स्पेशल अपीयरेंस बाय बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर। और पूछा था सवाल कि लाइव परफॉर्मेंस बाय इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन होगा, हाँ या ना, में जवाब देना था। एंड द राइट आंसर इज ऑफ कोर्स इट्स ट्रू, कंग्रेचुलेशंस, हमारे लकी विनर है गंगादिन शशि जी। हाय गंगादिन जी, शशि जी आपको मिल रहे हैं 4 एंट्री टिकट्स एंड अ फूड कूपन फॉर द James Little India Shahi Thalia the Utsav India Marshall Shopping Carnival. This game is powered by Rajasthan Works Limited, organized by Event Works Limited.

0: लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ हॉलीडेज एंड वेकेशन शुरू फॉर यू गाइस. एंजॉय कीजिएगा थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद. हैव अ हॉट हॉट कॉफी एंड देन जस्ट ओपन योर आईज एंड सी यार कितना कुछ देखना बाकी है. Enjoy. Back home. Very, very nice.
1: RM2 Radio Musti.
0: चलिए जी जाने का समय हो चला है. यू टेक केयर. हमारे बाद लेकर आ रहे हैं इतने सारे खूबसूरत गाने और गुड वाइब्स. नलमनी. चले रहिए 24 hours a day for your entertainment. It's RM2 Radio Musti.

0: मिलाते चलिए सुबह के 9 बजे हैं। सभी को विदिता की ओर से नमस्कार। समाचारों का समय हो गया है, चलिए मिलते हैं विदिमा से, सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। नमस्कार विदिमा।
1: नमस्कार विदिता, सभी सुनने वालों को नमस्कार। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में मॉरिशस में की में लिए आज दिन बेहद अहम है, जहां मुक्केबाज मेवन क्लेयर 70 किलोग्राम से कम वर्ग के सेमीफाइनल में वेल्स के ओलंडो होली सुटोमी से भिड़ेंगे, जबकि व्हीलचेयर 1500 मीटर की फाइनल रेस में नोएमी अल्फोंस पर भी सबकी विशेष नजर रहेगी। फ्लक में प्रवीण जगनाथ के हमलों का शिकार बने प्रधानमंत्री कार्यालय की चीफ ऑफ स्टाफ राकेश बकोरी ने व्हाट्सएप चैट के वायरल स्क्रीनशॉट को एआई आधारित संपादन बताकर खारिज किया है और संजय दाऊदारी की योग्यता का बचाव किया है, जबकि मंत्री पत्रिका सेवादन ने फ्लक में हुई एमएसएम के जुटाव और एफसीसी कार्यालय के बाहर पत्रकारों के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर पूर्व सरकार की तीखी आलोचना की है। बजट 2026-2027 के तहत घोषित कदमों की को कानूनी रूप देने के लिए आज दोपहर 3 बजे के एजेंडे में शामिल

0: बिल, फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स बिल पर चर्चा होगी, जिसके लिए प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री ने स्टैंडिंग ऑर्डर 65 का हवाला देते हुए कार्यवाही की कार्यसूची समाप्त होने तक जारी रहने का प्रस्ताव रखा है। सऊदी अरब में मौत की सजा के खतरे का सामना कर रहे मॉरिशस के नागरिक गनेसन एलन को बचाने के लिए उनके वकील रामा वालादेन ने अधिकारियों से अपील की है, क्योंकि उनका दावा है कि 3 किलो कोकीन के मामले में गिरफ्तार उनके मुवक्किल को एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क ने $10.5 मिलियन की कथित विरासत का लालच देकर फंसाया है। बनागासी व्यवसायी मामी हवातोमांग की जमानत अर्जी के गुण दोष पर विचार करने के लिए बेल एंड रिमांड कोर्ट में 17 और 18 अगस्त को बहस तय की गई है, क्योंकि FCC ने अपनी शुरुआती आपत्ति वापस ले ली है। हालांकि जमानत का विरोध अभी भी बरकरार है। और विदेश में गुरुवार को मोरक्को से हजारों प्रवासियों के तैरकर स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी एनक्लेव स्वेटा में प्रवेश करने के बाद स्पेन अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वहां सैनिक भेज रहा है। श्वेता पहुंचने की कोशिश के दौरान कम से कम 15 लोगों की डूबकर मौत हो गई। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio...

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Good morning. Finally, it's Friday और मौसम भी है दीवाना. बस एक अच्छी सी चाय मिल जाए, थोड़ी सी म्यूजिक और आपका साथ तो दिन बन जाए. कैसे हो दोस्तों? हाउ आर यू डूइंग? वीकेंड के लिए एक्साइटेड हो चुके हो या फिर अभी भी फ्राइडे को फुल एनर्जी के साथ जी रहे हो? वैसे कुछ लोग तो फ्राइडे को ही मिनी सेलिब्रेशन मान लेते हैं और कुछ के लिए फ्राइडे का मतलब होता है बस आज काम खत्म हो जाए, फिर तो फुल ऑन रिलैक्स. आप किस टीम में हो, फ्राइडे फीलिंग या स्टिल वर्किंग हार्ड? हमें जरूर बताइएगा 5499124 पर मैसेज करके. अभी के लिए इट्स योर मस्टी मॉर्निंग विद Nilmani 12 बजे तक.
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास। दो घंटों का सुहाना सफर प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में, जहां सरस्वती रामायण एसोसिएशन, प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन, ओलंपिक वुमेन्स एसोसिएशन, विश्वनाथ मंदिर महिला समाज, सीनियर सिटीजन प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन और प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर सीनियर सिटीजन एक साथ इस म्यूजिकल सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे। ऑन दिस फ्राइडे 31st ऑफ जुलाई दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RN3 रेडियो मनोरंजन। साथ ही आप इसको टिकटॉक पर भी फॉलो कर पाएंगे। सो भूलिएगा नहीं, इस शुक्रवार 31 जुलाई को फ्रॉम नून टिल 2 PM प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास। जेठा तुलसीदास।
1: महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: वैसे लम्हों में अगर हमने वाइब नहीं किया तो फिर क्या ही किया। फ्राइडे बॉस, मूड भी सेट है तो स्ट्रेस को थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए, वॉल्यूम को अप करते हैं और म्यूजिक के साथ इस फ्राइडे को और भी खूबसूरत बनाते हैं साथ में। चाहे आप अभी ऑफिस जा रहे हो, ड्राइव कर रहे हो या फिर घर पर अपनी सुबह की चाय को इंजॉय कर रहे हो, हम हैं ना आपके साथ हर पल को थोड़ा और म्यूजिकल एंड थोड़ा खुशनुमा बनाने के लिए। एंड उसको कुछ ही देर में और उसको रीडिंग भी लेकर आएंगे। स्टे ट्यून्ड रहिए ही पर ही, इट्स योर आरएमजू रेडियो मस्ती। You can find me in the
1: club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: अभी के लिए इट्स योर होरोस्कोप टाइम है, तो चलिए जानते हैं कि आज के सितारे आपके लिए कौन सा मैसेज लेकर आए हैं और आज के जो लकी नंबर्स और कलर्स आपकी क्या है। तो शुरुआत करते हैं विद
2: एरीज मेष राशि।
1: आज आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रहेगा, रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं, बस आपको गुस्से पर नियंत्रण रखना है। लकी कलर आज आपका है क्रिम्सन रेड और लकी नंबर है 9।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: धैर्य और समझदारी से लिया गया फैसला लाभ होगा, आर्थिक मामलों में सुधार के योग है। लकी कलर आज आपका है एमराल्ड ग्रीन और नंबर है 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: बातचीत और नए विचार आपको सफलता दिला सकते हैं, छोटी बातों को लेकर उलझन से बचें। लकी कलर आपका है स्काई ब्लू और नंबर है 5।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: परिवार और काम के बीच अच्छा संतुलन बनाए रखें, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। लुक आफ्टर योरसेल्फ वेल। लकी कलर आज आपका है व्हाइट और नंबर है 2।
2: लियो सिंह राशि।
1: आज आपका आत्मविश्वास लोगों को प्रभावित करने वाला है, नए अवसर भी मिल सकते हैं, आप बस ओपन रहना। लकी कलर आपका है गोल्डन येलो और नंबर है 1।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: यदि आप योजना बनाकर काम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, मेहनत का फल मिलने के योग है और आपका लकी डे है आज। कलर आपका है ऑलिव ग्रीन और नंबर है 4।
2: लिब्रा तुला राशि।
1: रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी, खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें। लकी कलर आपका है पीच और नंबर है 8।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: सोच समझ कर लिया गया फैसला लाभदायक रहेगा, तनाव से दूर रहने की कोशिश करें। लकी कलर आपका है ब्राउन और नंबर है 7।
2: सजिटेरियस धनु राशि।
1: नए अवसर मिल सकते हैं, सीखने और आगे बढ़ने का दिन है। लकी कलर आपका है रॉयल पर्पल और नंबर है 3।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
1: मेहनत और अनुशासन के काम से कामयाबी मिलेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। लकी कलर आज आपका है नेवी ब्लू और नंबर है 10।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: क्रिएटिव आइडियाज आज आपकी पहचान बन सकते हैं, जल्दबाजी में फैसले ना लें। लकी कलर आपका है ट्यूक्वाज और नंबर है 11।
2: पाइसेस मीन राशि।
1: अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनिए, परिवार और अपनों के साथ सुखद समय बिताइए। लकी कलर आपका है समुद्री हरा और नंबर है 12।
0: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो।

सर गुड वाइब्स ऑन गोइंग है इस ब्यूटीफुल फ्राइडे पर आपके ही आरएमजू रेडियो मस्ती पर 5499124 पर आपके अगर आपके पास कोई मैसेजेस है या डेडिकेशंस है हिचकिचाइएगा मत डू सेंड अस योर मैसेजेस

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: सुबह के 10 बजे है। चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे विधिमान नमस्कार।
6: नमस्कार निर्मनी, सभी सुनने वालों को नमस्कार। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में मॉरिशस के लिए आज का दिन बेहद अहम है, जहां मुक्केबाज मेवन क्लेयर 70 किलोग्राम से कम वर्ग के सेमीफाइनल में वेल्स के ओलांडो होली सुतोमी से भिड़ेंगे, जबकि विल्चेयर 1500 मीटर की फाइनल रेस में नोएमी अल्फोंस पर भी सबकी विशेष नजर रहेगी। बजट 2026-2027 के तहत घोषित कदमों को कानूनी रूप देने के लिए आज 3 बजे के एजेंडे में शामिल फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स बिल पर चर्चा होगी। सऊदी अरब में मौत की सजा के खतरे का सामना कर रहे मॉरिशस के नागरिक गनीसन एलन को बचाने के लिए उनके वकील गामा वालाइदेन ने अधिकारियों से अपील की है, क्योंकि उनका दावा है कि 3 किलो कोकीन के मामले में गिरफ्तार उनके मुवक्किल को एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क ने $10.5 मिलियन की कथित विरासत का लालच देकर फंसाया है। मलागासी व्यवसायी मामी गावातुमांग की जमानत अर्जी के गुण दोष पर विचार करने के लिए बेल एंड रिमांड कोर्ट में 17 और 18 अगस्त को बहस तय की गई है, क्योंकि एफसीसी ने अपनी शुरुआती आपत्ति वापस ले ली है, हालांकि जमानत का विरोध अभी भी बरकरार है। और विदेश में गाजा बोर्ड ऑफ पीस ने कहा है कि हमास एक ऐसे रोड मैप पर सहमत हो गया है जिसके तहत वो चरणबद्ध तरीके से अपने हथियार छोड़ेगा, इसके बदले इसराइल भी गाजा से चरणबद्ध ढंग से अपनी सेना वापस बुलाएगा। हमास के प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने कहा कि इस समझौते का क्रियान्वयन तभी होगा जब इसराइल भी समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह लागू करेगा। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। एवेन्यू दे पेट्रिक्स मेडिन कॉन दे मास्क में 72 साल की 72 इयर्स ओल्ड की श्रीमती देबिका झारी, पैदाइशी नाम समा और जो देबिका नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दोपहर 3 बजे उनके घर एवेन्यू दे पेट्रिक्स में जिन कॉन्डोमास से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। गुप्ता लेन बुसोंज में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लीलावती बायरू सिंह, पैदाइशी नाम गंगाराम और जो लीलावती नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 12:15 बजे उनके बेटे विजय बायनू सिंह के घर गुप्ता लेन बुसोंश से उठाकर मोताई सैंप या बॉम्बू की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:15। सीबी रोड गुडलैंड्स में 61 साल की 61 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती शारदा मंगल, पैदाइशी नाम धनु और जो शारदा नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके पति श्री संजय मंगल के घर सीबी रोड गुडलैंड से उठाकर बेलमो गुडलैंड की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
4: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musti Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: वैसे बनी ने मूवी ये जवानी है दीवानी में कहा था कि बदतमीजी एक ऐसी बीमारी है जो वक्त के साथ साथ बढ़ती ही जाती है, लेकिन दोस्तों ऐसे जिंदगी में थोड़ी सी बदतमीजी कम और मुस्कुराहट ज्यादा हो तो हर रिश्ता और हर दिन और भी खूबसूरत बन जाता है। ऊपर से आज है फ्राइडे, तो एटीट्यूड को नहीं गुड वाइब्स को बढ़ाते हैं और दिल खोल कर एंजॉय करते हैं साथ में, क्योंकि आपके लिए ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ऑन द वे लाते रहेंगे एंड टिप्स भी आ रहे हैं आपके नाम। एंड अगर आपके पास कोई मैसेजेस है, डेडिकेशंस है, 5499124 पर डोंट हेजिटेट टू सेंड अस योर मैसेजेस।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: 92 रेडियो मस्ती।
1: चाची साग फॉर्म ओवन को तू गए बों पर फैन जुरी बिरयानी पुलाव की सा बों जुरी ला सा।
2: अरे बेटी मो पे सेवी जुरी इंडिया गेट एक्सेल बासमती राइस सेट एन जुरी 11-21 एक्स्ट्रा लॉन्ग की पा कासे सुरनमेंट एक्स्ट्रा बों ली एन नेचुरली एज्ड राइस पा बिजा दिया तो सो पर फेला डेपी दान बूट चमें जी मन विन देमन मोआ की जुरी सा बेटी वो ला पेन टोल रोड ली सा इंडिया गेट एक्सेल बासमती राइस।
1: Merci Chachi. Moi aussi m'a poussé à vie. J'aurai India Gate XL Basmati Rice.
0: RM2 Radio Musti.

0: सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास, दो घंटों का सुहाना सफर प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में, जहां सरस्वती रामायण एसोसिएशन, प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन, ओलंपिक वुमेन्स एसोसिएशन, विश्वनाथ मंदिर महिला समाज, सीनियर सिटीजन प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन और प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर सीनियर सिटीजन एक साथ इस म्यूजिकल सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे ऑन दिस फ्राइडे 31st ऑफ जुलाई दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RN3 रेडियो मनोरंजन। साथ ही आप इसको टिकटॉक पर भी फॉलो कर पाएंगे। सो भूलिएगा नहीं, इस शुक्रवार 31 जुलाई को फ्रॉम नून टिल 2 PM प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास। जेठा तुलसीदास।
1: आओ महफिल ऐ शमा, फिरती हो कहां?
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: गुलाबी का तो पता नहीं, लेकिन आज भी मस्ती जारी है और कल भी आपके लिए है कुछ स्पेशल। ज्वाइन कीजिए आरएम2 टीम को कल लाइव फॉर द फैमिली स्पोर्ट्स एंड लेजर डे एट द ब्लू बे बीच। ये ऑर्गेनाइज्ड किया गया है बाय द टूरिज्म एम्प्लॉइज वेलफेयर फंड विद द मॉरिशस रिक्रिएशनल काउंसिल। 10 से लेकर 12 बजे तक कल, डोंट मिस इट। बच्चों के लिए भी स्पेशल चिल्ड्रंस कॉर्नर होगा विद लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स फॉर द पार्टिसिपेंट्स, प्लस एक्साइटिंग प्राइजेस आप जीत सकते हो एक्टिविटीज करके। है ना अमेजिंग न्यूज? कल ब्लू बे बीच 10 बजे से लेकर 12 बजे तक फॉर यू। आरएम2 रेडियो मस्ती विल बी लाइव।
0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स।
2: फैशन सिर्फ नए कपड़े पहनने का नाम नहीं है, उन्हें सही तरीके से स्टाइल करने का नाम है। एंड आज का टिप आपके लिए है कि अगर आप सिंपल आउटफिट पहन रहे हैं तो स्टेटमेंट एक्सेसरी जरूर ऐड कीजिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम योर स्टाइलिश वॉच, एलिगेंट ईयरिंग्स, आप क्लासी बेल्ट और सनग्लासेस भी ऐड कर सकते हो। इससे फैशन सेंस और भी एक्सेंचुएटेड करता है। एंड याद रखिए कि कॉन्फिडेंस होता है बेस्ट आउटफिट। जो भी पहनिएगा उसे मुस्कुराहट और कॉन्फिडेंस के साथ कैरी कीजिएगा।
0: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.
3: RM2 Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: दिल से आपके लिए चला रहे हैं हर गाना ताकि आपके दिल के तार और रेडियो मस्ती के तार मिल जाए। वाह, मुझे तो पोएट्री लिखना शुरू कर देनी चाहिए। एंड वैसे मैसेजेस आपके हमें मिल रहे हैं। आज है आपके ब्रदर नलीन का जन्मदिन और आप उन्हें डेडिकेट करना चाहते हैं एक स्पेशल गाना। वो 14 साल के हुए हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू नलीन जी, एंड पूरे RM2 टीम की तरफ से वी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे।

0: रेडियो मस्ती।
1: एंड यस, कल था विकास जी का भी जन्मदिन। रेशमी जी लालमाची से उन्होंने मैसेज भेजा है आपको स्पेशल लव वाला गाना डेडिकेट करने के लिए। हैप्पी बिलेटेड बर्थडे टू यू।

0: शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रही है? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, साड़ीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी। Join the RM2 team this Saturday 1st of August at the Blue Bay Beach Arena for the Family Sports and Leisure Day organized by the Tourism Employees Welfare Fund in collaboration with the Mauritius Recreation Council. RM2 will be live from 10 a.m. to noon, so don't miss out.
1: Alala ki zoli zoli, ou pa konnen ki zoli zoli. Alala ki zoli zoli, pou King Savers ki zoli zoli.
2: Uniquement chez King Savers, du 24 juillet au 24 août, les 500 grammes lune dorée tranchée sont à 119,80 €. Les 500 grammes filet capitaine Mr. Fish sont à 216,80 €.
1: Alala ki zoli zoli, pou King Savers ki zoli zoli. Gado King Savers ki zoli zoli.
3: RM2 Radio Mus

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: And as usual, आपको पैम्पर करने के लिए वापस आ गई हूँ इस बार एक गेम के साथ. And आपके लिए नमनी हमेशा सिंपल क्वेश्चंस ही लेकर आती है, तो आप अभी के लिए जीत सकते हो एक नहीं बल्कि चार टिकट्स और एक फूड कूपन शाही थाली का फॉर द उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल, जो कि पावर्ड है बाय SBI एंड LIC. एज फ्रॉम 12 अगस्त तक SBICC पाई पर 10 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके लिए होंगे 5 days ऑफ शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड फैमिली फन. होगा आपके लिए इंटरनेशनल होम शॉपिंग, एंटरटेनमेंट शोज, मैजिक शोज, फैशन शोज, लाइव परफॉर्मेंस बाय इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन, स्पेशल अपीयरेंस भी होगा बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर का, कैनमा शो, ब्लड डोनेशन कैंप, फूड फेस्टिवल भी. तो आप किसका इंतज़ार कर रहे हो? आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि जो गाने हमने चलाया अभी वो किस मूवी से है. जो गाना मेक सम नॉइज चलाया आपके लिए वो किस मूवी से है, आपको बताना है 5499-1294 पर. एंड आपको बता दें कि दिस गेम इज पावर्ड बाय राजस्थान वर्क्स लिमिटेड.
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: And yes, a game ongoing है ना, आपको बताना था कि Make Some Noise गाना जो हमने चलाया वो किस मूवी से था. And most of you guys know the song. अच्छी बात है, Friday groove के हिसाब से हमने भी vibe कर लिया तो winner हमारे बन चुके हैं. And yes, आप हैं मनीषा जी मेबक की रहने वाली हैं. Congratulations to you, आपको मिला है 4 entry tickets and a food coupon for the Utsav India Mauritius Shopping Carnival Festival powered by SBI and LIC. And वो होने वाला है 12 से लेकर 16th August तक, from 10 a.m. to 9 p.m. आपको experienced होने वाला है 5 days of shopping, entertainment and family fun. Congratulations to you. And जिनकी जीत नहीं हो पाई है, don't you worry, और भी games आने वाले हैं आपके लिए. आप बस tune in रहना RM2 Radio Musty के साथ ही.
0: RM2
1: Radio Musty.
3: Jumbo, quality deco, fin lo so extravaganza sales and for Paul Anisa, good.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: सुबह के 11 बजे है। चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे विधिमा नमस्कार।
4: नमस्कार निर्मणी, सभी सुनने वालों को नमस्कार। बजट 2026-2027 के तहत घोषित कदमों को कानूनी रूप देने के लिए आज 3 बजे के एजेंडे में शामिल फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स बिल पर चर्चा होगी, जिसके लिए प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री ने स्टैंडिंग ऑर्डर 65 का हवाला देते हुए कार्यवाही की कार्यसूची समाप्त होने तक जारी रहने का प्रस्ताव रखा है। सऊदी अरब में मौत की सजा के खतरे का सामना कर रही मॉरिशस के नागरिक गनिसन एलन को बचाने के लिए उनके वकील रामा वालाइडेन ने अधिकारियों से अपील की है, क्योंकि उनका दावा है कि 3 किलो कोकीन के मामले में गिरफ्तार उनके मुवक्किल को एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क ने $10.5 मिलियन की कथित विरासत का लालच देकर फंसाया है। मालागासी व्यवसायी मामी हवातोमांग की जमानत अर्जी के गुण दोष पर विचार करने के लिए बेल एंड रिमांड कोर्ट में 17 और 18 अगस्त को बहस तय की गई है, क्योंकि एफसीसी ने अपनी शुरुआती आपत्ति वापस ले ली है, हालांकि जमानत का विरोध अभी भी बरकरार है। विदेश में इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में बोफोर कासल के पास हमला किया। सेना का कहना है कि उसने हिजबुल्ला की सुरंगों के नेटवर्क के हिस्सों को नष्ट करने के लिए 700 टन विस्फोटकों का इस्तेमाल किया। और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। नए आंकड़ों के अनुसार इस बीमारी से 1500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि वायरस का प्रसार नियंत्रण प्रयासों से तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार द्वारा गुरुवार को जारी अपडेट के अनुसार देश में अब तक इबोला के 3,442 मामले दर्ज किए गए हैं और 1,521 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। गुप्तलीन बुसोंज में 73 साल की 73 years old की श्रीमती लीलावती बायरू सिंह पैदाइशी नाम गंगाराम और जो लीलावती नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 12:15 उनके बेटे विजय बायरू सिंह के घर गुप्तलीन बुसोंज से उठाकर मोहताज सैंप या बॉम्बू की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रमिशन टुडे एट 9:15। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio, Musty.
0: Well, आ गई मैं फिर से वापस मस्ती मॉर्निंग के आखिरी आओ में. गुड मॉर्निंग, हाल कैसा है आपका? मूड कैसा है? किस टाइप के गाने सुनने का मन है और कौन से टिप्स आपको चाहिए? 5499-1294 पर हमें मैसेज करके जरूर बताना. अभी के लिए अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग आपके लिए लाने वाले हैं इस बार श्रेया घोषाल और सुनिधि चौहान की आवाज में.
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास, 2 घंटों का सुहाना सफर। ब्लाइंड माइंड

0: प्लान मान्यो वुमेन्स एसोसिएशन और प्लान मान्यो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर सीनियर सिटीजन एक साथ इस म्यूजिकल सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे ऑन दिस फ्राइडे 31st of July दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RN3 रेडियो मनोरंजन। साथ ही आप इसको टिकटॉक पर भी फॉलो कर पाएंगे। सो भूलिएगा नहीं इस शुक्रवार 31 जुलाई को फ्रॉम नून टिल 2 PM प्लान मान्यो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास।
1: आओ महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां।
2: RM2
3: रेडियो मस्ती
4: आला की जोली जोली ऊपर को ने की जोली जोली आला की जोली जोली King Sever's की जोली।
2: Uniquement chez King Sever's du 24 juillet au 24 août, les 500 grammes lune dorée tranchée sont à 119,80 €. Les 500 grammes filet capitaine Mr. Fish sont à 216,80 €.
4: Alala ki zoli zoli, we King Sever's ki zoli zoli, Kado King Sever's ki zoli zoli.
5: Grand solde d'hiver Calido Côte Ganga Textile Limited Carolanian Vakwa. Depuis les 30 juillet jusqu'à les 2 août, profite sa grande promotion 50% là dans tout ce bon magasin. Calido, un mot qui tout dit monde content.
2: RM2
3: Radio Musty.

0: रेडियो मस्ती।
1: चाची साकवा मुबिन को तू गए बों पफन जुरी बिरयानी पुलाव की सा बों जुरी ला सा।
2: अरे बेटी मोपे सेवी जुरी इंडिया गेट एक्सेल बासमती राइस सेट एन जुरी 11-21 एक्स्ट्रा लॉन्ग की पा कासे सुरनमा एक्स्ट्रा बों ली एन नेचुरली एज्ड राइस पा बिजा जे तो सो पफन ला डेपी दान बूट चमे जिमन विन देमन मोआ की जुरी सा बेटी वो ला पेन टोल रोड ली सा इंडिया गेट एक्सेल बासमती राइस।
1: Merci Chachi. Moi aussi m'a poussé à vie. J'aurai India Gate Excel Basmati Rice.
0: RM2 Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: Yes, आप कनेक्टेड हो चुके हो अपने RM2 रेडियो मस्ती के साथ। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, आपको बताया आज है एवोकाडो एंड लंच टाइम भी थोड़ी देर में आने वाला है। अगर आपको हेल्दी ट्विस्ट की तलाश थी तो लंच टिप है आपके लिए। आप अपनी लंच प्लेट में, अगर आप वेजिटेरियन हो, आप ग्रिल्ड पनीर डालो। अगर नॉन वेज हो तो ग्रिल्ड चिकन, फिर ऐड कीजिए ब्राउन राइस या फिर एक रोटी, फ्रेश सलाद, और उसमें ऐड कीजिए एवोकाडो के कुछ स्लाइसेस। उनमें अगर आप शामिल करोगे तो मस्त, आपने इंटरनेशनल एवोकाडो डे भी मना लिया और आप एवोकाडो को भी आराम से एंजॉय कर पाओगे। इससे आपको प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स का अच्छा बैलेंस मिलेगा। और जो दोपहर के बाद भी आप टायर्ड फील करते हो तो उसके बाद भी आप एनर्जेटिक, उसको आप वो आपको एनर्जेटिक रहेगा। तो आप डिसाइड करो कि अगर आपके पास एवोकाडो है, फ्रिज में पड़ी हुई है, तो आप लो उसे और मनाओ एवोकाडो मस्त आपके आरम टू रेडियो मस्ती के साथ में।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Rappelez-vous qu'après chaque repas, vos dents sont exposées à des bactéries. Pour les neutraliser, prenez un chewing-gum sans sucre Freedom. Toujours à portée de main et agréable à mâcher, les chewing-gum Freedom vous aident à garder des dents propres, en pleine santé et une haleine toujours fraîche. Freedom, à vous de briller.
1: शादी की खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तब भूल जा एकर जरूरत नहीं पड़ी काहे की हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली डिजाइनर लहंगा लच्छा साड़ी जोधपुरी क्रॉप टॉप शेरवानी सूट ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में हलकोड़ी फैशन रॉयल रोड पॉम्पली मिसेस गार्डन के सामने फोन नंबर 5799-3782 हलकोड़ी फैशन परंपरा एलिगेंस और क्वालिटी
2: आलाला की जोली जोली ऊपर को ने की जोली जोली आलाला की जोली जोली King Savers की जोली
3: uniquement chez King Savers du 24 juillet au 24 août les 500 grammes lune dorée tranchée sont à 119,80 roupies les 500 grammes filet capitaine Mr Fish sont à 216,80
2: roupies Alala qui joli joli oui King Savers qui joli joli Gado King Savers qui joli joli
4: RM2
5: Radio Musty.

0: दोस्तों, अगर बिना खर्च किए आपने अपने घर को फ्रेश लुक देना चाहते हैं तो टिप है कि कशन कवर्स या फिर टेबल रनर को कलर सीजन के हिसाब से बदल दीजिए। बस इतना सा चेंज आपके लिविंग रूम को एक नया रिफ्रेशिंग लुक दे सकता है। एंड बोनस टिप आपके लिए ये है कि एक फ्रेश फ्लावर वेज या फिर छोटा सा इंडो प्लांट कॉफी टेबल या एंट्रेंस पर रख दीजिए। घर सिर्फ सुंदर ही नहीं लगेगा बल्कि ज्यादा वेलकमिंग भी महसूस होगा।
1: Household and decoration tips brought to you by Lolo Hypermarket.
2: RM2
3: Radio Musti.

सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास। दो घंटों का सुहाना सफर प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में, जहां सरस्वती रामायण एसोसिएशन, प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन, ओलंपिक वुमेन्स एसोसिएशन, विश्वनाथ मंदिर महिला समाज, सीनियर सिटीजन प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन और प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर सीनियर सिटीजन एक साथ इस म्यूजिकल सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे। ऑन दिस फ्राइडे 31st of July दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RN3 रेडियो मनोरंजन। साथ ही आप इसको टिकटॉक पर भी फॉलो कर पाएंगे। सो भूलिएगा नहीं, इस शुक्रवार 31 जुलाई को फ्रॉम नून टिल 2 PM प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: ऐसे ब्यूटीफुल गाने के साथ मैं नलमनी आपसे इजाजत लेती हूँ. याद रखिए कि फ्राइडे सिर्फ वीकेंड की शुरुआत नहीं बल्कि खुद को थोड़ा सेलिब्रेट करने का भी दिन है. अगर इस हफ्ते आपने पूरी मेहनत की है तो आज खुद को एक छोटी सी ट्रीट जरूर दीजिएगा. खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और मुस्कुराते रहिए. एंड अपनों के साथ खूबसूरत लम्हे बिताते रहिए. एंड अपने RM2 के साथ भी स्टे कनेक्टेड. हैव अ ग्रेट फ्राइडे.
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik, gel air freshener. Freshness, anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South.
0: 103.5.
3: East, West.
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check. दोपहर के 12 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. विधिमा, विधिमा आपको नमस्कार.
6: नमस्कार पूनम. सभी सुनने वालों को नमस्कार. बजट 2026-2027 के तहत घोषित कदमों को कानूनी रूप देने के लिए आज दोपहर 3 बजे के एजेंडे में शामिल फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स बिल पर चर्चा होगी, जिसके लिए प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री ने स्टैंडिंग ऑर्डर 65 का हवाला देते हुए कार्यवाही की कार्यसूची समाप्त होने तक जारी रहने का प्रस्ताव रखा है. ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में मॉरिशस के लिए आज का दिन बेहद अहम है, जहां मुक्केबाज मेवन क्लेयर 70 किलोग्राम से कम वर्ग के सेमीफाइनल में वेल्स के ओलांडो होली सोतोमी से भिड़ेंगी. मलागासी व्यवसायी मामी हवा तुमांग की जमानत अर्जी के गुण दोष पर विचार करने के लिए बेल एंड रिमांड कोर्ट में 17 और 18 अगस्त को बहस तय की गई है, क्योंकि FCC ने अपनी शुरुआती आपत्ति वापस ले ली है. हालांकि जमानत का विरोध अभी भी बरकरार है. और विदेश में दक्षिण पश्चिमी जापान में आए शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है, जो पहले 25 थी. कुमामोतो प्रांत की सरकार ने आज इस आंकड़े की पुष्टि करते हुए बताया कि 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. तो इन्हीं खबरों के साथ ही 12 बजे के संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. थोड़ी देर में शोक समाचार. अवेन्यू डे पेड्रिक्स मेडिन कॉन्डोमास्क में 72 साल की 72 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती देबिका झरी पैदाइशी नाम समा और जो देबिका नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनके घर अवेन्यू डे पेड्रिक्स मेडिन कॉन्डोमास्क से उठाकर वहीं की शमशान भूमि ली जाएगी. क्रिमिशन टूडे 8:30 PM. सीबी रोड गुडलैंड्स में 61 साल की 61 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती शारदा मंगल पैदाइशी नाम धनु और जो शारदा नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके पति श्री संजय मंगल के घर सीबी रोड गुडलैंड से उठाकर बेलमो गुडलैंड की शमशान भूमि ली जाएगी. क्रिमिशन टुडे 1 PM. अर्जुन लेन नोवेल फ्रांस में 94 साल के 94 ईयर्स ओल्ड के श्री धनीलाल रामफल जो धनीलाल नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर अर्जुन लेन नोवेल फ्रांस से उठाकर मेबर्ग की शमशान भूमि दी जाएगी. क्रिमिशन टुडे 2 PM. शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है.
7: La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales.

0: सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास। दो घंटों का सुहाना सफर प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में, जहां सरस्वती रामायण एसोसिएशन, प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन, ओलंपिक वुमेन्स एसोसिएशन, विश्वनाथ मंदिर महिला समाज, सीनियर सिटीजन प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन और प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर सीनियर सिटीजन एक साथ इस म्यूजिकल सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे। ऑन दिस फ्राइडे 31 जुलाई दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RN3 रेडियो मनोरंजन। साथ ही आप इसको टिकटॉक पर भी फॉलो कर पाएंगे। सो भूलिएगा नहीं, इस शुक्रवार 31 जुलाई को फ्रॉम नून टिल 2 PM प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास। जेठा तुलसीदास।
1: ओ महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां।
2: रेट्रो रिदम
3: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम। 12:10 हो चुके हैं और आप जुड़ चुके हैं अपने ही प्रोग्राम यानी कि रेट्रो रिदम के साथ। दोपहर हो चुकी है, काम चल रहा होगा, कहीं पर लंच चल रहा होगा, लेकिन अगले 2 घंटे हम आपको ले जाएंगे उस दौर में जहां स्टाइल भी था, सिंप्लिसिटी भी थी और गाने ऐसे कि आज भी पहली धुन सुनते ही होंठ गुनगुनाने लगते हैं। मैं हूं आपके साथ पूनम और शुरू हो रहा है रेट्रो रिदम, जहां हर गीत के साथ होगी एक मज़ेदार याद, एक मज़ेदार किस्सा और प्यार और मुस्कान के साथ इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। और ये बहुत ही प्यारा सा गाना है जो कि आशा भोसले जी की आवाज़ में था और मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। इंजॉय कीजिए अपने गाने और अपने मैसेजेस। अगर आपके दिल में कोई बात है या आपको कोई गाना ऐसा सुनना है जो आपने बहुत समय से नहीं सुना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 5499-1294 पर। इंजॉय कीजिए ये गाना
1: Retro Rhythm. RM2 Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम। 12:25 हो चुके हैं दोस्तों। आप सोच रहे होंगे क्यों मैं आज मोहम्मद रफ़ी साहब के ही गाने लगा रही हूँ। तो दोस्तों 24 दिसंबर 1924 को जन्म हुआ था पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह गांव में एक ऐसी आवाज़ ने जन्म लिया था जो आगे चलकर पूरी दुनिया में मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम से पहचान जाने लगे। 31 जुलाई 1980 को रफ़ी साहब इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनकी गायकी आज भी हर पीढ़ी के दिलों में जिंदा है। यही वजह है कि उनके गीत कभी पुराने नहीं लगते। तो आइए सुनते हैं रफ़ी साहब के ऊपर सदाबहार ये सारे गाने, क्योंकि आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है और हम चाहते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब के ऊपर ही ये प्रोग्राम चले, क्योंकि रेट्रो रिदम में हम सबसे ज़्यादा सारों के गाने चलाते हैं, पर कहते हैं ना रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब रहे। और उनको हम ये कह ही नहीं सकते कि वो हम सबकी ज़िंदगी में शामिल नहीं है। हर दिन हर रोज़ हम उनके गाने सुनते आ रहे हैं। बहुत सारे गायक आए और गए, पर रफ़ी साहब ने जो अपनी जगह एक बार किसी के दिल में बना ली तो बस बना ली। तो इसलिए हम चाहेंगे कि उनकी पसंद के गाने, उनकी आवाज़ की जो सफ़र है साथ चलते हैं, उनके जो बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो उनके साथ गाते थे, उनके साथ रहे, उनकी भी आवाज़ सुन पाएंगे। पर कहते हैं मन्ना डे को वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा सुनते थे, उनके गाने चलाएंगे और मोहम्मद रफ़ी साहब के। कहते हैं दो भगवानों की आवाज़ एक साथ सुनने को मिले तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए। इंजॉय कीजिए ये गाना।
1: Retro Rhythm RM2 Radio Musti

0: रेट्रो रिदम 12:35 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ। तो दोस्तों आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब को। दोस्तों मोहम्मद रफ़ी साहब के एक फिल्मी सफ़र की एक शुरुआत की किसी जो किस्सा है वो एक कहानी से कम नहीं था। कहा जाता है कि लाहौर में एक कार्यक्रम के दौरान गायक जो थे KL सहगल जी को गाना था, लेकिन वहाँ पर बिजली चली गई और कार्यक्रम रुक गया। उसी समय छोटे से रफ़ी साहब, जिनको गाने का बहुत शौक़ था और सबने कहा भाई थोड़ा सा तो टाइम पास करना है तो एक काम कर, उस सिंगर के आने से पहले थोड़ा सा तू ही गा दे, उनकी आवाज़ सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग एकदम निशब्द हो गए। उन्होंने कहा कि कितना सुंदर गाना गाता है। और KL सहगल साहब ने जब मोहम्मद रफ़ी साहब को सुना तो उन्होंने कहा कि तुम तो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर गाते हो। और श्याम सुंदर जी ने उन्हें देखा और बहुत प्रभावित हुए और पंजाबी फिल्म में उन्हें गाने का मौका दिया। यहीं से शुरू हुआ सफ़र मोहम्मद रफ़ी साहब का हिंदी सिनेमा की तरफ। वो आए मुंबई और उन्होंने कहा कि चलो मैं भी ये सफ़र देखता हूँ कैसा रहेगा। और जो सफ़र उन्होंने शुरू किया अंत तक बस वो हमेशा गानों के साथ ही जुड़े रहे। और कहते हैं कि जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की और जहाँ पे उन्होंने अपने आवाज़ का चमत्कार दिखाया तो कहते हैं कि उससे ऊपर आज तक कोई नहीं जा पाया।
1: रेट्रो रिदम RM2 रेडियो मस्ती।

0: 12:45 मिनट हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम यानी कि रेट्रो रिदम के साथ, और मैं हूं आपके साथ पूनम। और आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब की। क्या आवाज़, क्या चीज़, क्या खासियत थी उनमें, क्या शख्सियत थे। कहते हैं कि हर हीरो पर बिल्कुल उनकी आवाज़ फिट बैठती थी। उन्होंने दिलीप कुमार साहब के लिए गाया, देवानंद, शमी कपूर, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, जितेंद्र, राजेश खन्ना, भारत भूषण, जॉनी वॉकर, राज कपूर और शशि कपूर जैसे कई बड़े कलाकारों के लिए अपनी आवाज़ दी। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि पर्दे पर हीरो दिखता है लेकिन दिल तक पहुँचती है रफ़ी साहब की आवाज़। आइए सुनते हैं उनका एक यादगार नगमा जो कि बहुत ही प्यारा है मोहम्मद रफ़ी साहब पे। तो उन्होंने तो गाया पर जो फिट हुआ वो कहते हैं शमी कपूर साहब पे।
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम। दोस्तों, मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ सिर्फ हिंदी फिल्म तक ही सीमित नहीं रही। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, उर्दू, मराठी, गुजराती, बंगाली, भोजपुरी, असमिया, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, कोंकणी, सिंधी और अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में गीत दिए। यही वजह है कि उनकी आवाज़ पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के दिलों तक पहुंची। आइए सुनते हैं उनका एक प्यारा सा ऐसा गाना जो कि उन्होंने पंजाबी मूवी में गाया था। उनको तो सब लोग इतना सराहना करते रहे और इतना प्यार देते रहे और आज भी पूरा वर्ल्ड उन्हें सुनता है। कहते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब ना आते इंडस्ट्री में तो शायद ये इंडस्ट्री बहुत सूखी सूखी सी रहती, पर उन्होंने ऐसा एक पानी की बौछार की कि सब कुछ हरा भरा हो गया। तो ये मोहम्मद रफ़ी साहब के जाने के बाद भी इतना कुछ हमारे पास उनके लिए कहने के लिए है तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने बहुत ही प्यारा गाया। और जो भी संगीत प्रेमी हैं, जिनको संगीत पसंद है, वो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ के बिना तो कहीं रह ही नहीं सकते। और रेडियो तो चलता ही उनकी आवाज़ से है, तो कहते हैं जब रेडियो चलता है और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ हो तो उन्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बांध देता है। तो इन्जॉय कीजिए ये गाना उनकी आवाज़ में।
1: Retro Rhythm RM2 Radio Musti.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: टाइम चेक दोपहर के 1 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अदिति से। अदिति, आपको नमस्कार।
4: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। एचआईवी से जुड़ी गैर सरकारी संस्था पिल्स ने अपनी स्थापना के 30 साल पूरे होने पर नई पहचान पेश की है। संस्था ने नई जागरूकता मुहिम, नया लोगो और जल्द शुरू होने वाले डिजिटल माध्यमों की घोषणा की है। पोर्ट लुई के नूविला सामुदायिक केंद्र में आयोजित समारोह में कई साझेदार संगठनों की मौजूदगी में इस नई पहचान का अनावरण किया गया। पारंपरिक वाद्य यंत्र गावान की विरासत से युवाओं को जोड़ने के उद्देश्य से सैंत कॉम में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें करीब 30 युवाओं ने भाग लिया। कार्यशाला का समापन 30 जुलाई को सैंत कॉम के लेकोन्यू में आयोजित प्रमाण पत्र वितरण समारोह के साथ हुआ। कॉमनवेल्थ खेलों की एथलेटिक्स स्पर्धा में मॉरिशस के बेन और बाचिस ने पुरुषों की थ्रो स्पर्धा के फाइनल में 16.27 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ 11वां स्थान हासिल किया है। स्वर्ण पदक नाइजीरिया को गया, जबकि न्यूजीलैंड के टॉम वॉश ने 21.30 मीटर के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, स्पेन ने उत्तर अफ्रीकी क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सैन्य ताकत तैनात की है। ये कदम मोरक्को से हजारों प्रवासियों के क्वेटा में प्रवेश करने के बाद उठाया गया है। इस दौरान कम से कम 18 लोगों की के डूबने के कारण मौत हुई है। स्पेन के गृह मंत्रालय ने मानव तस्करी गिरोहों पर बिना वैध दस्तावेज वाले प्रवासियों की आवाजाही को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। एवेन्यू दे पेड्री मेडिन कॉन्डमास में 72 साल की 72 इयर्स ओल्ड श्रीमती देविका भट्टारी पैदाशी नाम सामा, जो देविका नाम से ज्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे इनके मकान अवेन्यू दे पेड्री मेडिन कॉन्डमास से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेडिन कॉन्डमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3 PM। अर्जुन लेन नोवेल फॉन्स में 94 साल के 94 ईयर्स ओल्ड श्री धनीलाल रामफल, जो धनीलाल नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के दो बजे इनके मकान अर्जुन लेन नोवेल फॉन्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेबर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv.
5: Retro Rhythm.
0: RM2 Radio Musti.
6: सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास, 2 घंटों का सुहाना सफर प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में, जहां सरस्वती रामायण एसोसिएशन, प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन और

0: Catholic Women's Association, Vishwanath Mandir Mahila Samaj, Senior Citizen Plan Manyo Women's Association और Plan Manyo Social Welfare Community Center Senior Citizen एक साथ इस म्यूजिकल सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे ऑन दिस फ्राइडे 31st ऑफ जुलाई दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RN3 रेडियो मनोरंजन। साथ ही आप इसको टिकटॉक पर भी फॉलो कर पाएंगे। सो भूलिएगा नहीं, इस शुक्रवार 31 जुलाई को फ्रॉम नून टिल 2 PM Plan Manyo सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास।
1: महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां।

0: रेट्रो रिदम।
1: 1:09 हो चुके हैं दोस्तों। मोहम्मद रफ़ी साहब की हम बात कर रहे हैं तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने ऐसा कोई एहसास नहीं छोड़ा जिसे अपनी आवाज़ ना दी हो। और जब बात हो बच्चों की तो बच्चों के लिए तो उन्होंने इतने सारे गाने गाए, बट कहते हैं ना कि एक गाना उन्होंने बहुत ही दिल से और प्यार से गाया, जैसा प्यारा गीत कौन भूल सकता है। एक समय था जब हर जन्मदिन की खुशियों में यह गीत बजते थे, खूब सुनाई देते थे। कितने बच्चों ने इस गीत के साथ अपना बचपन मनाया होगा। आप सब बड़े हो गए होंगे पर यह गाना अभी तक उसी तरीके से नौजवान बना हुआ, ऐसे ही छोटे बच्चे को जैसे चुलबुलाहट जैसी होती है, उसमें वही शरारतें वही मासूमियत आज भी दिखती है। आइए सुनते हैं रफ़ी साहब का ये प्यारा सा नगमा जो कि उन्होंने छोड़ा तो हम सब के लिए, उन लोगों के लिए है जो ये इन्हें पसंद करते हैं, बट शायद ना जाने कितने कितने जन्मों तक ये गाना सुना जाएगा। जिनको भी बहुत याद आती है यही गाना चलता है। सुनिए इस प्यारे से गीत को।
2: RM2 Radio Musti, Radio Musti.
3: हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता।

0: बच्चे होते हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता गबलू बबलू खाने को मिलते लड्डू
1: और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू
0: कोई लाता गुड़िया मोटर रेस तो कोई लाता फिरकी लट्टू कोई चाबी का टट्टू।

0: होते नाम हमारा होता बबलू बबलू खाने को मिलते लड्डू
1: और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू
0: कोई लाता गुड़िया मोटर रेस तो कोई लाता फिरकी लट्टू कोई चाबी का कट्टू।

0: रेट्रो रिदम।
1: सही बात है, इतने सारे खत लिखने के बाद कई बार आंसर नहीं आता, पर हमें जब आप मैसेज भेजते हैं हम आपके सारे जवाब देते हैं। इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उषा, सीता जी साथ दे रही हैं, जीना जी साथ दे रही हैं पेरिस से, फिया जी साथ दे रही हैं, वीना गंगाधर साथ दे रही हैं, और परिवार के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं रोशनी, प्रेमा, विश्वानी, धुमन जी, प्रकाशवंती जो अपनी बिटिया रानी सूर्या के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं, माधुरी जी साथ दे रही हैं, ललित जी साथ दे रहे हैं यूएसए से, राजन जी भी साथ दे रहे हैं, और सिर्फ उन्होंने ही यही बात कही कि आज तो मोहम्मद रफ़ी साहब का डेथ एनिवर्सरी है, सिर्फ उन्होंने ही पहचाना, और उन्हें कैसे पता चल गया मुझे नहीं पता, पर आप बहुत ही स्मार्ट हैं, थैंक यू सो मच, आपने हमें हमें तो पता ही था पर आपने हमें फिर भी याद दिलाया, थैंक यू सो मच। अभिजीत जी जो कि मिस नील से साथ दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की है, हम चलाएंगे कमला, गंगा बिसुन जी जो कि काथरबोन से हैं, थैंक यू सो मच आपका भी जुड़ने का, आयशा, तेजल, तनवीर, रायना, रायन, वनीशा, वनीशा, वर्षा, आशिता एंड तरश सभी साथ दे रहे हैं, वीना, शंभू जी अपनी बिटिया रानी के लिए, बेटे खुशहाल के लिए और फैमिली के लिए गाना सुनाना चाहते हैं, बिल्कुल हम चलाएंगे, अब्दुल सायरा बानो जी साथ दे रहे हैं और बहुत ही प्यारे गाने की फरमाइश करी है, और फिया जी साथ दे रही हैं, देव जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ जो कि पेरिस से हैं, ललिता जीतन जी साथ दे रही हैं, और उसके साथ में उषा जी हैं जो ब्रह्मस्थान से जुड़े हुए हैं और इस प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही हैं, बिल्कुल हम एक एक करके सबकी फरमाइशों के गाने तो चलाएंगे, पर मोहम्मद रफ़ी साहब के ऊपर अगर ये प्रोग्राम हो रहा है तो उन्होंने तो ना जाने कितने हज़ारों गाने चलाए हैं, कई बार तो मैं ही कन्फ्यूज़ हो गई हूँ कि किसके लिए कौन सा वाला गाना बजाऊँ ना बजाऊँ, पर जो भी है आप उनको याद कीजिए और उनकी जो कहते हैं ना मासूमियत उसका एहसास कीजिए, यह है एक गाना आप सबके लिए उनकी आवाज़ में।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम। 1:34 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ और मैं हूं आपके साथ पूनम। दोस्तों मोहम्मद रफ़ी साहब ने सिर्फ अकेले ही नहीं बल्कि लता मंगेशकर, आशा भोंसले, सुमन कल्याणपुर, गीता दत्त, किशोर कुमार, मन्ना डे, मुकेश और महेंद्र कपूर जैसे महान कलाकारों के साथ कई सदाबहार गीत दिए। उनकी एक जोड़ी ने ऐसे संगीत प्रेमियों को अनमोल नगमे दिए। कहते हैं कि जब जब वो गाते थे और एक दूसरे को सुनने के लिए वो लोग बेताब रहते थे। जब भी लता जी को मोहम्मद रफ़ी साहब को गाना सुनना होता था वो कहते थे कि मुझे और किसी की आवाज़ नहीं सुननी। मोहम्मद रफ़ी साहब यही बात मन्ना डे के लिए कहते थे मुझे किसी और की आवाज़ नहीं सुननी, मुझे सिर्फ और सिर्फ मन्ना डे की सुननी है। आशा भोंसले जी भी यही कहती थी कि मुझे अपनी आवाज़ अच्छी नहीं लगती, मुझे तो बस मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ अच्छी लगती है। किशोर दा ये कहते थे कि मुझे मोहम्मद रफ़ी साहब की अच्छी लगती है। कोई इसके लिए कहता था तो कोई उसके लिए कहता था। शायद यही बात है कि उनका प्यार, उनकी बॉन्डिंग आपस में इतनी अच्छी और इतनी स्ट्रांग थी कि जब जब उन्होंने जो जो गाना बनाया बहुत ही मस्ती भरा बनाया। ये गाना उसी की आवाज़ में है कि उन्होंने एक जैसे, जैसे कहते हैं ना कि एक फैमिली के जैसे उन्होंने गाना बनाया। अगर आपको ये सुनेंगे तो आपको एहसास होगा ये गाने भी बहुत ही प्यारे हैं।
1: रेट्रो रिदम RM2 रेडियो मस्ती।

0: ना मर तो अपनी ही फिक्र कर, बुरा हर काम मेरा कयामत नाम मेरा, मैं चुटकी से मसल दूं, मैं जूते से कुचल दूं, जुल्म से मेरा रिश्ता मौत का मैं फरिश्ता, मौत का मैं फरिश्ता, नहीं कोई मेरा सानी तू मांगे गाना पानी, हो काला नाग हूँ मैं तो जलती आग हूँ मैं, मिटा कर खाक कर दूं, जला कर राख कर दूं, गुनाह और पाप हूँ मैं तेरा भी बाप हूँ मैं, तेरा भी बाप हूँ मैं, तेरा भी बाप हूँ मैं।
1: RM2
2: Radio Musti.
3: Allons chez Lolo.
4: Pour Lolo, ce 17e anniversaire. Du lait liquide, Formalat, Ever Fresh 1 litre à 57 roupies 75. Rosanna, Greenpeace 400 grammes, de l'Italie à 19 roupies 60. Elseve, shampoing et après shampoing, 10, 189 roupies 50.

0: रेट्रो रिदम।
1: 1:46 हो चुके हैं दोस्तों। मोहम्मद रफ़ी साहब की पहचान सिर्फ उनकी आवाज़ नहीं, उन्होंने बहुत सारे गाने गाए, बट उनकी जो सादगी थी, उन्होंने प्यार, इंसानियत और देशभक्ति के लिए कई गीत गाकर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। और कहा जाता है कि उनका ज़्यादातर समय परिवार और सिर्फ संगीत को समर्पित था, और हमेशा वो यही कहते थे कि किसी ने मुझसे सीखना है ना तो मैं इतना अच्छा नहीं गाता, पर बाकी बहुत गाते अच्छा हैं तो उनसे सीखो। पर सब लोग जानते थे कि वो कितने महान कलाकार थे। ऐसे ही हमको एक बार बहुत एक ऐसे सिंगर मिले सिर्फ उन्हीं की वजह से, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा गाया, इतना अच्छा गाया, और हमेशा कहते थे कि महेंद्र कपूर जो है ना मेरे से ज़्यादा अच्छा गाता है। शायद उनके शागिर्द थे, शायद उनसे ज़्यादा प्यार था, या महेंद्र कपूर साहब खुद ही चले गए थे उनसे बात करने और कहा कि प्लीज़ मुझे अपना शागिर्द बना लो, मुझे अपना शिष्य बना लो, जो आप कहेंगे वैसा ही मैं करूँगा, वैसे ही गाऊँगा। और सच बात यही है कि उन्होंने इतना अच्छे से गाया, इतना उम्दा गाया कि जब तक वो भी गाते रहे तो हमेशा सब ने उनको सर आँखों पर रखा। उनकी दोनों की आवाज़ में भी बहुत सारे गाने हैं, पर ये गाना बहुत ही प्यारा है जो कि देश से रिलेटेड है। ये सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी आवाज़ की जी की आवाज़ में।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 Radio Musti।
3: नफरत

0: रेट्रो रिदम।
1: 1:53 हुए हैं और मैं हूं आपके साथ पूनम। तो दोस्तों, रफ़ी साहब की आवाज़ का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि उनके गीत हर दौर में सुनने वालों के दिलों में ज़िंदा रहते हैं। आज के रेट्रो रिदम में बस इतना ही। मैं थी आपके साथ पूनम, आपका साथ देने के लिए दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे कुछ ज़्यादा बाहर गीतों के साथ, नगमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सबका ख्याल रखिएगा और आरएमटू रेडियो मस्ती के साथ जुड़े रहिएगा। मेरे बाद आपको साथ मिलेगा परी का बॉम्बे टॉकीज़ में। इंजॉय कीजिए आखिरी गाना मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में और अमिताभ बच्चन की और ऋषि कपूर की आवाज में।
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: RM2 Radio Mystique.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, दोपहर के 2 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अदिति से. अदिति, आपको नमस्कार.
6: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार. पोर्ट लुई में गुइसोजी पुस पर स्थित ईआर कंपनी का पार्किंग स्थल तोड़ने के काम का अंतिम चरण कल सुबह पूरा किया गया. पूर्व न्यायाधीश भूषण दोमा द्वारा 2008 में नहरों के ऊपर निर्मित संरचनाओं को हटाने की सिफारिशों के बाद इस पार्किंग स्थल को तोड़ने का काम 2023 में शुरू किया गया था. ये सिफारिशें पोर्ट लुई में बाढ़ की स्थिति को लेकर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन के बाद जारी की गई थी. बजट में घोषित प्रेसिजन फार्मिंग स्कीम की धारणा आकार ले रही है. इस सहायता योजना का मकसद है आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर स्मार्ट खेती प्रोत्साहित करना ताकि पैदावार बढ़ाई जा सके और देश में खाद्य सुरक्षा मजबूत हो. इस योजना के अंतर्गत आधुनिक कृषि उपकरणों की खरीद के लिए डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉरिशस के जरिए रियायती दरों पर लोन और फागे की तरफ से जरूरी तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा. राज्यसभा के कार्य आज दिन के 3 बजे से जारी रखे जाएंगे. सदन में फाइनेंस बिल और फाइनेंशियल मेजर्स मिसलेनियस प्रोविजंस बिल पर आगे चर्चा होगी. इन विधेयकों के जरिए बजट में घोषित प्रमुख प्रावधानों को कानूनी आधार दिया जाएगा. प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने इन विधेयकों पर एक ही बैठक में सभी चरणों की कार्यवाही पूरी करने के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर्स 65 का सहारा लिया. सदन की कार्यवाही कार्यसूची पूरी होने तक जारी रह सकती है. अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि गजा में हमास और अन्य सशस्त्र संगठनों के पूर्ण निरस्त्रीकरण पर समझौता हो गया है. उनके अनुसार ये प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से लागू की गई जिसके तहत निरस्त्रीकरण पूरा होने पर इसराइली सेना गजा से हटेगी. ट्रंप ने इसे शांति और सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है और कहा कि भविष्य में गजा का प्रशासन नई फिलिस्तीनी सरकार संभालेगी. इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुआ. आज्ञा दीजिए. नमस्कार.
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: More music in the mix.
0: आज आजादी है.
7: Bombay Talkies.
0: Radio Musti.
4: Radio Musti.

0: Oldies.
1: Radio Musty.
2: Radio Musty.
3: And well, 2:07 as always, आपका वेल वेलकम करने हम हैं यहाँ ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. और आज है फ्राइडे एंड द लास्ट डे ऑफ द मंथ जुलाई, सो लेट्स मेक इट स्पेशल. फ्राइडे तो होता ही खास और स्पेशल है, एंड आई एम श्योर दैट आप भी हमारे साथ इस म्यूजिकल कारवा को एंजॉय करते हैं. मॉर्निंग से लेकर नाइट तक आपको आते हैं एंटरटेन करने विद सम ब्यूटिफुल सॉन्ग्स. फॉर नाउ अभी वक्त है कुछ नए सॉन्ग्स एंड बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचाने का. मैं हूँ परी आपके साथ टिल 4 PM राइट हियर ऑन RM2 रेडियो मस्ती.
4: More music in the mix.
5: Aaj Azadi hai.
1: Bombay Talkies.
0: Radio Musti.
2: Radio Musti.

0: और एम टू
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रही है? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: Radio Musti. Well,

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो चलिए दोस्तों यहां पर बी टाउन की खबरें आप तक पहुंचाते हैं और बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा अडवाणी टॉक्सिक को लेकर चर्चाओं में है, यानी कि उनकी ये जो अपकमिंग फिल्म है उनको लेकर चर्चाओं में है। सेलिब्रेटिंग हर 35th बर्थडे और एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर पहले से ही फैंस बधाई दे रहे हैं। इसी बीच टॉक्सिक के मेकर्स ने खास अंदाज में एक्ट्रेस को जन्मदिन की बधाई दी। इसे मेकर्स की तरफ से उनका तोहफा माना जा रहा है और टॉक्सिक के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर नदिया के रूप में कियारा अडवाणी का एक नया पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में एक्ट्रेस लाल रंग के आउटफिट में बेहद खूबसूरत लग रही है और उनकी गहरी नजर से लेकर उनके जो आउटफिट है ये पोस्टर में उनका भरपूर जो ग्लैमरस रूप है वो दर्शा रही है। टॉक्सिक की टीम ने एक्ट्रेस को फोटो वाला

पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि हमारी नदिया को जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां. सो वेल दैट वाज अ स्पेशल बर्थडे विश और ये था टॉक्सिक के मेकर्स की ओर से. एंड फाइनली द फिल्म इज रिलीजिंग ऑन 26th of August, यानी कि इस फिल्म का जो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे फाइनली अब ये फिल्म रिलीज होने जा रही है और इंतजार हुआ खत्म. 26th of August इज द डेट जब टॉक्सिक रिलीज हो रही है बड़े पर्दे पर. बीटाउन की खबरों के साथ लेकर आए हैं आपके लिए कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स. सो दैट्स एक ब्यूटीफुल गाना आपके नाम एंड दैट्स टेकन हमारे सभी जो लिसनर्स हैं उनके लिए टेकन फ्रॉम द फिल्म गिनी विद सनी 2. और ऐसे ही कुछ गानों को अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं लेटेस्ट गानों को आप पसंद करते हैं सो दैट्स द राइट प्लेस. आप आए हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती जहां पर लेकर आए हैं बॉम्बे टॉकीज. अभी से लेकर दिन के 4 बजे तक होगा आपका और मेरा साथ.

0: टू रेडियो मस्ती।
1: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे की हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड, पॉपुलर बुसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: And well, friends, time आपके messages, आपके dedications का in this hour यहाँ पर रोशनी हमारा साथ दे रहे हैं. रामायण से काफी inspired है लग रहा है. चलिए अभी के लिए तो trailer release हो गया है कल और मिल रहे हैं अच्छे response. सुरपंखा हो या फिर सीता का किरदार, हर कोई बात कर रहा है characters के बारे में. सभी के लिए तो देखना है कि ये फिल्म लोगों को कितनी पसंद आती है. अभी के लिए आप हमारा साथ दे रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपके लिए कुछ ऐसे गाने चलाएंगे कि आपका मूड सेट रहे. सो थैंक यू साथ देने के लिए. रोशनी, गाना होगा आपके नाम. ऋषि यहाँ पर साथ दे रहे हैं, डेडिकेटिंग गाना फॉर ऑल आर एम टू लिसनर्स एंड दोज हु लाइक टू एंड अपना फ्राइडे एकदम मस्ती के साथ. साथ ही अपनी मूडी गर्लफ्रेंड को आप नहीं भूले हैं, उनके लिए भी बहुत सारा प्यार एंड स्पेशल विशेज. साथ ही स्कूल, गुड फ्रेंड्स, टीचर्स, हॉलीडेज जो भी एंजॉय कर रहे हैं सभी को आपने याद किया है. थैंक यू सो मच ऋषि जी. गाना होगा सभी के नाम और आपके लिए भी. दविसन लाल माटी से आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, सो साथ देने के लिए शुक्रिया. एंड बस हमारे साथ जुड़े रहे, गुड सॉन्ग्स, गुड म्यूजिक आपके लिए चलता रहेगा ऑन आरएफ टू रेडियो मस्ती. आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशन यू कैन ऑलवेज सेंड मी ऑन 5499 1294. सो चलिए इसी गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर, उसके बाद लौट कर आएंगे. दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज. मैं हूं परी आपके साथ टिल 4 PM.

0: to Radio Misty.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अदिति, आपको नमस्कार।
6: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। मॉरिशस के लिए एक अच्छी खबर, कॉमनवेल्थ खेलों में नोएमी अल्फोंस की बदौलत मॉरिशस को एक दूसरा मेडल हासिल हुआ है। 1500 T54 की दौड़ में मॉरिशन पारा एथलीट ने बेहतरीन प्रदर्शन देकर सिल्वर मेडल जीता है। उसने 3:32 में दौड़ पूरी की और ये इस सीजन का उसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। दौड़ की शुरुआत से ही नोएमी अल्फोंस ने दूसरा स्थान बनाए रखा। गोल्ड मेडल स्कॉटलैंड की मेलानी वुड्स को गया। क्यूपिप के लायंस क्लब के सहयोग से 10 मॉरिशन मरीजों का कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हुआ है। ये ऑपरेशन पाकिस्तान से आए स्पेशलिस्ट डॉक्टर वाजिद अली खान द्वारा सुब्रमण्यम भारती आई हॉस्पिटल में किए गए। उनके इस दौरे के तहत लगभग 20 ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। पोर्ट लुइस में रुइसो डुपोस पर स्थित ईआर कंपनी का पार्किंग स्थल तोड़ने के काम का अंतिम चरण कल सुबह पूरा किया गया। पूर्व न्यायाधीश भूषण दोमा द्वारा 2008 में नहरों के ऊपर निर्मित संरचनाओं को हटाने की सिफारिशों के बाद इस पार्किंग स्थल को तोड़ने का काम 2023 में शुरू किया गया था। ये सिफारिशें पोर्ट लुइस में बाढ़ की स्थिति को लेकर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन के बाद जारी की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि गजा में हमास और अन्य सशस्त्र संगठनों के पूर्ण निरस्त्रीकरण पर समझौता तय हो गया है। उनके अनुसार ये प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी, जिसके तहत डिसआर्ममेंट पूरा होने पर इसराइली सेना गजा से हटेगी। ट्रंप ने इसे शांति और सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि भविष्य में गजा का प्रशासन नई फिलिस्तीनी सरकार संभालेगी। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। अपर महात्मा गांधी रोड त्वा बुचिक त्रियोले में उनहत्तर साल के 69 years old श्री प्रदीप सिंह दीना सिंह, जो प्रदीप नाम से ज़रा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थिया शाम पाँच बजे इनकी पत्नी श्रीमती समांथा दीना सिंह के मकान अपर महात्मा गांधी रोड थ्वाबुचिक थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यमिनी थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 5 PM। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: More music in the mix.
7: Aaj Azadi hai.
0: Bombay Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.

तो चलिए दोस्तों यहां पर 3:09 हो गए हैं एंड इट्स टाइम टू प्ले अ गेम आपके साथ यानी कि ओपनिंग के साथ ही आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार इनाम जहां पर आप जीत सकते हैं कुछ खास। सो खेले आप एमबीसी और राजस्थान वर्क्स के साथ और जीत सकते हैं आप एक्साइटिंग प्राइजेस, स्टैंड चांस टू विन 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फॉर जेंट्स लिटिल इंडिया शाही थाली एट उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक एट SBICC पाए सुबह 10 से लेकर रात के 9 बजे तक। सभी के लिए जो गाना आपने सुना पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, वेल ये गाना फ्रॉम द फिल्म कयामत से कयामत तक इस गाने

0: देखो ओरिजिनली हमने तब सुना था, फर्स्ट टाइम हमने तब सुना था, और हाल ही में यानी कि कुछ टाइम पहले ये गाना हमने सुना एक और बॉलीवुड फिल्म में, जहां पर राजकुमार राव नजर आए थे, और आपको हमें उस फिल्म का नाम बताना है। सो वेल फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं गाना पापा कहते हैं, और ये गाना हमने सुना था 1989 की फिल्म कयामत से कयामत तक इन फर्स्ट टाइम, और उसके बाद इस गाने को हमने कुछ टाइम पहले सुना एक बार फिर राजकुमार राव की एक फिल्म में। उस फिल्म का नाम आपको हमें बताना है। सही जवाब वही नंबर 5499 1294 पर इंतजार रहेगा आपके सही जवाबों का, आपके पूरे नाम और पते के साथ। ऑल द बेस्ट वेटिंग फॉर राइट आंसर्स। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, हाल ही में हमने सुना एक फिल्म में जिसमें नजर आए थे राजकुमार राव, उस फिल्म का नाम हमें बताएं। सेंड अस योर राइट आंसर्स। ऑल द वेरी बेस्ट।
1: जब दिल कहे प्ले,

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: पर हमें मिले आपके सही जवाब और बहुत सारे लोगों ने दिया राइट आंसर ऑलमोस्ट सभी ने दिया राइट आंसर एंड यस फिल्म का नाम है श्रीकांत उसी फिल्म में हमने सुना इस गाने को एक बार फिर जिस फिल्म में नजर आए थे राजकुमार राव सो यहां पर हमें मिले बहुत सारे सही जवाब लकी ड्रॉ के बाद लकी विनर संगीता जीतू आप है अपावे रोड कोंदेमा से सो कांग्रेचुलेशंस तो चलिए संगीता जी दिया है आपने हमें बिल्कुल सही जवाब नाम में ही संगीत है और संगीत आप तक पहुंचाते हैं ऑन आरएम टू रेडियो मस्ती वेल सो कांग्रेचुलेशंस कहेंगे आपको खेला आपने एमबीसी और राजस्थान वर्क्स के साथ और जीती है 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फ्रॉम जेंस लिटिल इंडिया

ये होने वाला है बहुत कुछ खास. इंटरनेशनल होम शॉपिंग, एंटरटेनमेंट शोज होंगे, मैजिक शोज, फैशन शो, लाइव परफॉर्मेंस होने वाला है बाय इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन, स्पेशल अपीयरेंस बाय बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर, साथ में होगा कैनमा का शो, ब्लड डोनेशन कैंप एंड फूड फेस्टिवल एज वेल. ऑर्गेनाइज किया गया है बाय इवेंट वर्क्स लिमिटेड. एंड वंस अगेन हमारी जो विनर है संगीता जीतू जी, आपको कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है. द राइट आंसर वॉज श्रीकांत. एंड जीतने के मौके और भी मिलेंगे, बस स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ.

0: North, South, East, or West. Tune into the very best. Radio Masti, your number one Balalut station.
1: Bombay Talkies.
2: Radio Masti.
3: Radio Masti.
4: सो वेल फ्रेंड्स, 3:29, इट्स 3:29 फ्राइडे की आफ्टरनून और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं. सो वेल दोस्तों, अब हम बात करेंगे बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की. धुरंधर के बाद वो भी चर्चाओं में आ गई है. वैसे फिल्म तो बनाई है उनके हस्बैंड आदित्य धार ने, और जो सेकेंड पार्ट आया था उसमें छोटे से रोल में वो नज़र आई थी, एक कैमियो में वो नज़र आई थी. और उसके बाद काफ़ी चर्चाएँ थी कि कैसे बॉलीवुड ने यामी गौतम और उनके पति को काफ़ी सारे मौके नहीं दिए. और इसी पर यामी गौतम ने खुलकर बात की है और कह रही है कि जब एक टाइम था वो बॉलीवुड छोड़ने वाली थी. यामी ने माना कि 2019 में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और बाला फिल्मों ने उनके करियर की दिशा बदल दी. विकी डोना 2012 से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस ने बताया कि बेहतर मौक़ों के इंतज़ार में ऐसे रोल भी स्वीकार करने पड़ते थे जो उन्हें पसंद नहीं थे. और ये पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने कभी बॉलीवुड छोड़ने के बारे में सोचा था, इस पर यामी ने एक इंटरव्यू में बताया कि हाँ, उरी और बाला से ठीक पहले मैंने इंडस्ट्री को पूरी तरह छोड़ने का मन बना लिया था. मैंने सोचा था कि हिमाचल लौट जाऊंगी और ये हमारी वहां पर जो उनकी खेती है और उनकी जो जमीन है उसे वो संभालेगी. और उन्होंने बिल्कुल अलग जिंदगी शुरू करने के बारे में सोचा था. उनके माता पिता ने भी उनका बहुत साथ दिया और उन्हें बस इतना कहा.

कि घर आ जाओ बाकी सब हम देख लेंगे. सो दैट वॉज द सपोर्ट शी गॉट फ्रॉम हर फैमिली. और 37 वर्ष की ये एक्ट्रेस, उन्होंने कहा कि काफ़ी सारे ऐसे अनुभव, ऐसे एक्सपीरियंस हुए उन्हें बॉलीवुड में, जहाँ पर उनका मन नहीं था कि अब वो कंटिन्यू करे. अब खुलकर तो उन्होंने बात नहीं की कि क्या एक्सपीरियंसेस हुए उनके साथ, लेकिन ये तो है दैट इंडस्ट्री ने उनको और उनके हस्बैंड को काफ़ी टाइम तक बॉयकॉट किया था, जहाँ पर अच्छे मौके मिलने के बाद भी उन्हें इग्नोर किया जाता था. और कुछ फिल्मों में जहाँ पर वो फिल्मों को प्रमोट करने जाती थी, वहाँ पर भी हमने कभी कभार देखा था कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज थे वो उन्हें काफ़ी इग्नोर करते थे. लेकिन आफ्टर धुरंधर द टेबल्स हैव चेंज्ड, और कहते हैं ना कि एकदम पलट चुका है, अब जो भी कहानी थी वो बिल्कुल पलट चुकी है, जहाँ पर आदित्य धार बन गए हैं बॉलीवुड के नंबर वन डायरेक्टर. और वहीं यामी गौतम, उन्हें भी दिया जा रहा है काफ़ी मान सम्मान, और हाल ही में उन्होंने जीता है एक नेशनल अवार्ड उनकी फिल्म के लिए. सो यहाँ पर यामी गौतम की तो अब चारों तरफ से तारीफ हो रही है, लेकिन जैसे हम कहते हैं नेवर गिव अप, ये एटीट्यूड तो हम सब में होना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि आगे चलकर जिंदगी आपके लिए क्या कुछ खास लाने वाली है. उन्होंने भी नहीं सोचा था कि एक टाइम पर जब वो इंडस्ट्री छोड़ने के बारे में सोच रही थी, बाद में कुछ ऐसा होगा जहाँ पर बस उन्हीं के नाम के चर्चे होंगे, और हर जगह अगर तारीफ होगी तो यामी गौतम की होगी. सो अभी के लिए तो शी इज एंजॉइंग द बेस्ट टाइम ऑफ अ लाइफ, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल. पर्सनल लाइफ में भी उन्होंने वेलकम किया है अपनी बेबी बॉय को, और ये मदरहुड वाला फेज वो एंजॉय कर रही हैं, और इंडस्ट्री में अभी उन्हें मिल रहे हैं काफ़ी अच्छे मौके. सो वेल, देखना ये होगा कि यामी गौतम उनकी जो वंडरफुल एक्टिंग है और उनका जो ब्यूटीफुल फेस है, हम कब देख पाएंगे इन नेक्स्ट मूवी. तब तक के लिए करेंगे थोड़ा सा इंतजार दोस्तों, आप भी साथ दे रहे हैं तो कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स एंड बॉलीवुड अपडेट्स आप तक पहुँचा रहे हैं.

0: रेडियो मस्ते
1: बॉम्बे टॉकीज
2: रेडियो मस्ते
3: रेडियो मस्ते
0: वेल फ्रेंड्स 3:52 इट्स 3:52 और इसी के साथ इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय आपके लिए एक और प्यारा सा गाना फॉर ऑल द फैंस ऑफ अरिजीत सिंह और इसी गाने के साथ मैं आपसे लूंगी इजाजत मेरे बाद आ रही है हंसनी लेकर योर फ्राइडे मैशअप सो उनका साथ दीजिए मुलाकात होगी आपसे जल्द राइट हियर ऑन द वेव्स ऑफ आरएम टू रेडियो मस्ती तब तक के लिए हैप्पी फ्राइडे एंड गुड विशेस

0: रेडियो मस्ती।
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, din ke 4 baje hain. Desh videsh ki khabron ke saath studio mein aa gayi hai Aditi, aapko namaskar.
6: Namaskar Pari, shrotaon ko bhi namaskar. मॉरिशस के लिए एक अच्छी खबर, कॉमनवेल्थ खेलों में नोएमी अल्फोंस की बदौलत मॉरिशस को एक दूसरा मेडल हासिल हुआ है। 1500 T54 की दौड़ में मॉरिशन पारा एथलीट ने बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर सिल्वर मेडल जीता है। उसने 3:32 में दौड़ पूरी की और ये इस सीजन का उसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। दौड़ की शुरुआत से ही नोएमी अल्फोंस ने दूसरा स्थान बनाए रखा। गोल्ड मेडल स्कॉटलैंड की मेलानी वुड्स को गया। क्यूबिक के लायंस क्लब के सहयोग से 10 मॉरिशन मरीजों का कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हुआ है। ये ऑपरेशन पाकिस्तान से आए स्पेशलिस्ट डॉक्टर वाजिद अली खान द्वारा सुब्रमण्यम भारती आई हॉस्पिटल में किए गए। उनके इस दौरे के तहत लगभग 20 ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। मॉरिशस को चीन की तरफ से 20 मेगावाट की क्षमता और 1 बिलियन रुपये की कीमत वाला बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम दान में मिल रहा है। इस सिलसिले में कल ऊर्जा मंत्री पत्रिका सेवादेन और चीनी राजदूत हुआंग शिफांग ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। जल्द ही इस दो नए भंडारण सिस्टम्स के कार्यरत होने से देश के राष्ट्रीय ऊर्जा नेटवर्क में अतिरिक्त 60 मेगावाट बिजली जुड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में भारत में एंटी पेपर लीक बिल कल राज्यसभा में पारित किया गया। इसके विरोध में विपक्ष ने सभा से वॉकआउट किया। इस कानून का मकसद है किसी भी परीक्षा से जुड़े पेपर लीक के किसी भी मामले के लिए सजा और सख्त करना। हाल ही में नीट की परीक्षाओं के पेपर लीक होने के बाद भारत में बृहद प्रदर्शन हुए, जिसको ध्यान में रखकर सरकार इस नए विधेयक के साथ सामने आई। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। अपर महात्मा गांधी रोड थ्वा बुटीक थ्रियोले में 69 साल के 69 years old श्री प्रदीप सिंह दीना सिंह, श्री प्रदीप सिंह दीना सिंह जो प्रदीप नाम से ज़रा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज शाम 5 बजे इनकी अर्थी

0: या शाम 5 बजे इनकी पत्नी श्रीमती सामंता दीना सिंह के मकान अपर महात्मा गांधी रोड थ्वाबुची थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमिनिस थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 5 PM। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

रेडियो मस्ती। सो वेल फ्रेंड्स, 4:06 हो गए हैं फ्राइडे की ये दोपहर, जहां पर लेकर आए हैं फ्राइडे मैशअप। हंसनी विल बी जॉइनिंग इन सून। तब तक के लिए प्यारे गाने आपके लिए चलते रहेंगे, साथ दे रहे हैं आप। सो एंजॉय योर फ्राइडे एंड एंजॉय द म्यूजिक ऑन रेडियो मस्ती।

And well, 24/7 good music aapke liye, ye hai Radio Masti. Abhi ke liye to lekar aaye hain Friday Mashup, jahan par Friday mood ko set kar rahe hain in gaano ke saath. Finally, dosto, agar aapka kaam khatam ho gaya hai is waqt, driving back home and listening to the music, so bas aisa music jo aapke mood ko set rakhe, aapke jo drive hai use thoda sa aur musical banaye. साथ दे रहे हमारे सभी लिसनर्स आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर. रास्ते की कोई अपडेट्स हम तक पहुंचाना चाहते हैं, इसी नंबर पर रहेगा आपका इंतजार.

0: 424 PM, thank you for listening to Radio Masti. सभी का वेलकम है और यहाँ पर we are here to add some more energy, to add some more masti आज to celebrate Friday. आगे है हंसनी आप लोगों का साथ निभाने के लिए और बेशक यहाँ पर आखिरकार आ ही गया है शुक्रवार. पूरे हफ्ते की मेहनत के बाद अब वक्त है मस्ती, संगीत और एकदम to be in a happy mood. बिल्कुल आज ये जो शो होने वाला है एकदम शानदार गानों के साथ, कुछ आपकी और हमारी मजेदार बातें और आपके मैसेजेस. जी हाँ बिल्कुल, करेंगे आप लोगों का इंतजार 5499 1294 पर. तो बताइए जरा आज का दिन कैसा था. वेली होप कि सब ठीक से गया, अच्छे से दिन आपने बताए होंगे. और अगर नहीं, मैं भी हेक्टिक था काम पर, तो कोई बात नहीं, अभी जो स्ट्रेस का माहौल है उनसे बस दूर हो जाएंगे. एंड विल टेक यू इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक, जहां पर एंटरटेनमेंट होने वाला है, जहां पर थोड़ा सा आराम आप करने वाले हो. दैट विल बी सुकून, दैट विल बी म्यूजिक. और इसी म्यूजिकल जर्नी के साथ विल टेक यू इन अ ब्यूटिफुल सफर जो रहेगा 7 बजे तक. वेदर फ्राइडे मैशअप विद लॉट्स ऑफ ग्रेट एनर्जेटिक गाने, ताकि जो मूड है आपका वो एकदम मस्ती से जबरदस्त हो जाए, राइट. और यहाँ पर इस घंटे के दौरान विल बी हैविंग स्पोर्ट्स न्यूज, जहाँ पर अरविंद आएंगे थोड़ी देर के बाद, और साथ में होंगे गेम्स. आज भी जगहों को होने वाला है. सो लास्ट टाइम अगर आपकी जीत नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर चांसेस तो होंगे आज एक बार फिर से, राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती. सो जहाँ पर भी साथ जारी है, इट्स अ वार्म वेलकम. आई विश यू ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून.
1: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट रेडियो मस्ती.

0: RM2
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
1: Sports News.
0: Radio Masti in the mix.
3: Welcome again on Radio Masti और यहाँ पर बिल्कुल सही टाइम हो चला है टू गेट द लेटेस्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स वर्ल्ड. चलिए यहाँ पर अरविंद इज हियर तो उनका वेलकम तो हम करेंगे टू गेट द लेटेस्ट. हेलो अरविंद, वेलकम टू यू.
4: हेलो हेलो आपको और बहुत जल्दबाजी है क्योंकि खबर ही ऐसी है. आज लगभग 2 बजे वी गॉट द न्यूज और व्हाट ए गुड न्यूज. अब मेडल के रंग बदलने लगे हैं. सो वी हैड वन ब्रॉन्ज मेडल, उसका भी रंग बदल सकता है. लेकिन मेवेक्लेयर का मेडल, उसका रंग बदलने से पहले नोएमी अल्फोंस ने मॉरिशस को अपना पहला सिल्वर मेडल दिलाया. आई रिपीट, पहला सिल्वर मेडल, क्योंकि अभी तक क्लेयर का जो ब्रॉन्ज मेडल है वो अभी तक साफ नहीं हुआ है. सो इट माइट बी ब्रॉन्ज से सिल्वर, सिल्वर से गोल्ड भी आ सकता है. सो ये रेस वो जीत गई और बहुत खुश हैं, क्यों ना हो जीतना इस स्तर पर. और बहुत लोग जानते हैं कि इट वॉज दिवर क्रैश हुआ था तो ऐसे में वो डर गई थी, उसकी उसकी जो फुटेज जो कहते हैं वो टूट गया था. तो अब सब बनाना पड़ा. शी गॉट हेल्प फ्रॉम कैनेडियन टीम, ऑस्ट्रेलियन टीम. उससे बात की वहाँ पर ओलंपिक कमिटी के जो सदस्य हैं उनको हम सुनते हैं आफ्टर द रिएक्शन आशु द नोएमी अल्फोंस.
5: Quelques minutes nous a dit et ouais, nous restons focus pour la suite aussi.

0: give me 9 cats
1: on me. So बहुत खुश हैं सिल्वर मेडल जीतकर और 400 मीटर के का जो फाइनल था वो भी फाइनल आज होने वाला है तो उस पर हम आपको बताएंगे क्या कुछ हो रहा है आउट देयर. हमारा और एक एथलीट क्वालिफाई हो चुका है सो नोएमी अल्फोंस सिल्वर मेडल 1500 मीटर T54 में. तो उधर ब्रांडी पेरिन वो क्वालिफाई हुई है फॉर द फाइनल ऑफ द 400 मीटर्स T54. वो दूसरा स्थान ले पाई अपने सीरीज में. सो वेरी हैप्पी फॉर ब्रांडी पेरिन जो फाइनल में है. व्हाई नॉट अनदर मेडल आज मॉरिशस के लिए. और आज रात को आपको पता ही है वो मैच होने वाला है मैं वेक्लेयर और वो सिल्वर मेडल जो वो ले सकता है. व्हाई नॉट गो फॉर गोल्ड इन द अपकमिंग फाइट. चलिए कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में ही बता दें आपको कि अभी तक ऑस्ट्रेलिया लीडिंग विथ 51, उसको पकड़ना नामुमकिन होगा. इंग्लैंड 15, कनाडा 15, स्कॉटलैंड 9, नाइजीरिया 8. गुड परफॉर्मेंस नाइजीरिया की ओर से. इंडिया 10वीं पोजीशन पे और मॉरिशस की टीम जिसको मेडल मिल गया है उनका नाम आएगा बहुत जल्द इन दी मेडल टेबल क्योंकि अभी तक फाइनल नहीं हुआ है. सो आज काफ़ी कुछ होने वाला है. अभी सुबह सुबह काफ़ी कुछ हुआ. बॉल्स पैरा बॉल्स नेट बॉल फिर एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स ट्रक साइकिलिंग पैरा ट्रक साइकिलिंग बॉक्सिंग 4 सेमीफाइनल हैं. फिर जूडो क्वार्टर फाइनल हैं जिसमें मॉरिशस के काफ़ी प्रतिनिधि होंगे. फिर शाम को रात को बॉक्सिंग के 5 सेमीफाइनल बॉल्स पैरा बॉल्स 5 गोल्ड मेडल मैचेस जूडो में. फिर ट्रक साइकिलिंग और पैरा ट्रक साइकिलिंग में 7 फाइनल होंगे. एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स के 10 फाइनल्स और बॉक्सिंग के 5 सेमीफाइनल ये आज का स्केड्यूल हैं इन द कॉमनवेल्थ गेम्स. एल्स फुटबॉल में भी अब कुछ होने लगा है बहुत कुछ होने लगा है. इन द कंट्रोवर्सी इन्फांटिनो यानी फीफा के प्रेसिडेंट उसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा है और कुछ लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं. जैसे प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर एंडी बर्हाम ने कहा कि ज्ञानी इन्फांटिनो इज द रॉन्ग मैन टू लीड फीफा एज क्रिटिसिज्म ग्रोज ऑफ इन द कंट्रोवर्शियल इन्वेस्टमेंट प्लान. कुछ सपोर्ट कहीं पर उनको क्रिटिसाइज कर रही हैं. बारेजी का नाम सुना होगा आपने. एसी मिलान और इटली का ग्रेट प्लेयर फ्रांको बारेजी आज 66 साल की आयु में उनकी मृत्यु हो गई. ही वॉज द फॉर्मर कैप्टेन एग्जाम्पल और इंटीग्रिटी उसके साथ रहेगा. बारेजी 20 साल प्लेइंग कार्य उसने एसी मिलान के साथ बिताया. 1997 में रिटायर हुआ विनिंग 6 सीरी ए टाइटल और 3 यूरोपियन कप चैंपियंस लीग. सबसे बड़े डिफेंडरों में एक बारेजी मिलान का कप्तान था 15 सीजन मेकिंग 719 अपीयरेंसेस और गोल भी स्कोर करता था 33 गोल्स. इटली के लिए कई बार खेल चुका है. 1982 वर्ल्ड कप में था वो जब इटली ने वर्ल्ड कप जीता था. वो कप्तान था 1994 फाइनल में जिसमें ब्राजील ने इटली को हराया था. 2020 में बारेजी को होनररी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एसी मिलान बनाया गया था. सो उनको श्रद्धांजलि द ग्रेट एसी मिलान एंड इटली प्लेयर फ्रांको बारेजी. कुछ मैच हैं आज और कल. फ्रेंडली मैच स्कॉटलैंड में प्रीमियर लीग शुरू हो रहा है आज डंडी यूनाइटेड रेंजर्स के बीच. फिर यूवेंटुस निस ये क्लब फ्रेंडली. बर्मिंगहम बार्सिलोना के बीच भी फ्रेंडली मैच. आज सुबह लीड्स यूनाइटेड ने सन्डरलैंड को 1-0 से हराया और बाकी मैच भी आज खेले जाएंगे. कल भी फ्रेंडली मैचों का सिलसिला जारी रखा जाएगा. इनमें इंग्लैंड की कुछ टीमें भी हैं जैसे मैनचेस्टर सिटी वर्सेस इंटर मिलान, मैनचेस्टर यूनाइटेड एथलेटिको मैड्रिड. फिर रियल मैड्रिड का मुकाबला फ्लोरेंटिना से कार्डिफ एएस रोमा. टोक्यो बोरुशा डॉर्टमुंड ये कल के मैच हैं और संडे को भी फ्रेंडली मैचेस जारी रखे जाएंगे. और बता दें अभी एमबीसी 11 पर स्पोर्ट्स 11 पर लाइव चल रहा है तो आप लोग देख पाएंगे. और विल बी वेटिंग फॉर द फाइट ऑफ मैं वेक्लेयर और 400 मीटर का फाइनल जो भी है उसका भी हम इंतज़ार करेंगे. जूडो में भी वी हैव सम चांसेस गुड चांसेस. अब मेडल आने लगे हैं तो मेडल बरसने दो व्हाई नॉट. और कल आप सुबह मिलेंगे विकास से. विल बी गिविंग यू मोर इन्फॉर्मेशन ऑन कॉमनवेल्थ गेम्स. और बेशक इस वीकेंड में काफ़ी कुछ होने वाला है. रेंडेवू

0: आपको दे रहे हैं। क्रिकेट फिएस्टा स्टार्टिंग दिस वीक, साथ साथ में होशनोवा फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए दूसरा मैच खेला जाएगा, इस पर और जानकारियां देंगे। ब्लू बे अरेना में भी काफी गेम्स वहां पर ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। रॉयल पोर्ट्रिस अलुमनाई अपने सभी एक्स खिलाड़ियों को, अपने एक्स स्टूडेंट को बुला रहे हैं एक फन डे के लिए, एक स्पोर्ट्स डे के लिए। Plenty of activities in this weekend. Let's hope मौसम अच्छा हो यहाँ पर और ग्लासगो में और मेडल बरसते रहे।
1: Wow, that was so so nice, Arvind. Thank you very very much. यानी कि वीकेंड को मस्त बनाने के लिए all set. So चलिए सभी टीम की तरफ से we do wish you a lovely weekend. Thank you so much for the news updates.
2: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert. Double Delicate.

यहाँ पर अच्छा गया है आफ्टर द स्पोर्ट्स न्यूज एंड रिलेटेड टू स्पोर्ट्स वी हैव गॉट अ शकोंकू यहाँ पे द गेम इज स्पॉन्सर्ड बाय आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा सीजन 4 सो इस वाउचर को जीतने के लिए आप हो तैयार जो आपको दिए जाएंगे सो जस्ट गेट रेडी फॉर द गेम यहाँ पे जो आपका रिलैक्सेशन मोमेंट है वो तो बिल्कुल आ गया है टू रिलैक्स एंड टू फील नाइस सो प्ले विद रेडियो मस्ती एंड विन अ गिफ्ट वाउचर ऑफ 500 रुपीज ऑफर्ड टू यू बाय आयुर योगा इंटरनेशनल सो इसके लिए बस कुछ डिटेल्स हम आपको दे रही हैं यस जो आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा शुरू होने वाला है सीजन 4 दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन जो बिल्कुल वापस

0: आ गया है with lots of excitement for its viewers in partnership with Indian Oil Servo and co-sponsored by MYOP. और ये जो big event है शुरू होने वाला है कल से, आज from 1st of August at SSO National Cricket Ground Mapu, जहाँ पर 6 team participate करने वाले हैं, and that will be Continental Cheetahs, AMG Panthers, Campus Abroad Lions, APP Leopards, One Health Jaguars and Thomas Cook Tigers. तो इनमें से अगर है कोई आपका favorite team, so आपको आना है to visit and support your team. और जो great matches है वो तो खेले जाएंगे on Saturday afternoon and Sunday morning and afternoon. ये थे कुछ details about Island Cricket Extravaganza Season 4. और यहाँ पे जो आपका voucher है of 500 rupees जो दिए जाएंगे by Ayur Yoga International, ये बिल्कुल ready तैयार. So अभी time for the question related to cricket, right? तो यहाँ पर सवाल कुछ इस तरह से आया है आप लोगों के लिए. क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच में जो दो खिलाड़ी इनिंग्स शुरू करने के लिए आते हैं बैटिंग के लिए, उनको क्या कहते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन ना. क्रिकेट मैच में जो दो खिलाड़ी इनिंग्स शुरू करने आते हैं बैटिंग टीम के लिए, उनको क्या कहते हैं? अगर आपके पास सही जवाब आ गया है सो जल्दी से डू ट्राई योर लक ऑन 5499-1294. डोंट फॉरगेट, यहाँ पे पूरा नाम और एड्रेस प्लीज आप लिखे ताकि आप इन हो जाए फॉर द लकी ड्रॉ, क्योंकि यहाँ पे जो आपका वाउचर है वो यहाँ पे पोस्ट द्वारा आपको भेजा जाएगा. सो चलिए हंसनी और पूरी टीम की तरफ से वी डू विश यू गुड लक.
1: RM2
2: Radio Musty.
1: Feel the Musty.

बिल्कुल सही गाना था यहाँ पे, म्यूजिक की लत जो लग गई है राइट ऑन रेडियो मस्ती सेलिब्रेटिंग आवर फ्राइडे टाइम। इट्स आवर फ्राइडे मैशअप और यहाँ पर है आपके साथ आज हंसनी एंड यस वी हैड अ क्वेश्चन यहाँ पे शिक्षकों को जो अभी चल रहा है एंड वी हैड अ क्वेश्चन। क्रिकेट मैच में जो दो खिलाड़ी इनिंग्स शुरू करने के लिए आते हैं ना बैटिंग टीम के लिए, तो उनको क्या कहते हैं, दैट वॉज योर क्वेश्चन। और यहाँ पर वी हैव गॉट कुछ सही कुछ गलत भी मिले, कोई बात नहीं। जो सबसे खास बात होती है वो तो है आपका पार्टिसिपेशन। सो लेट मी गिव यू द राइट आंसर, इट्स ओपनर्स या फिर आप चूज कर सकते थे ओपनिंग बैट्समैन, ये भी सही आएगा। तो यहाँ पे लकी ड्रॉ ने अपना काम तो कर लिया है, लेट्स गो एंड चेक आउट।

0: अभी कंग्रेचुलेशंस टू माधव हीरा और वो तो रहते हैं पिचकाफरी. कंग्रेचुलेशंस टू यू माधव जी, आपकी जीत हो गई है. वाव, दैट्स सो सो ग्रेट फॉर दिस फ्राइडे टाइम राइट. और यू प्लेड विद रेटो मस्ती, तो आपकी जीत हो गई है. ब्रावो टू यू. और आपके पास आया है एक वंडरफुल गिफ्ट वाउचर ऑफ 500 रुपीज बीइंग ऑफर्ड टू यू बाय आयुर योगा इंटरनेशनल. सो जो आपके डिटेल्स है, नाम एड्रेस, ये सब आपने भेजे है, तो बिल्कुल वाउचर विल बी सेंट बाय द पोस्ट. कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन फ्रॉम ऑल द टीम ऑफ रेडियो मस्ती. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस. यहाँ पर मस्ती है, जबरदस्त गाने हैं, कुछ आपकी बातें जो एकदम जबरदस्त आने वाली है ऑन अ 5499-1294. सो और क्या चाहिए टू मेक इट सुपर जबरदस्त फ्राइडे. सो यहाँ पर इशारा है कि कुछ ही पल में विल बी हेडिंग टुवर्ड्स द न्यूज एंड रूपेशना इज ऑलरेडी हियर. हाय रूपेशना, थोड़ी देर के बाद विल बी हैविंग द न्यूज राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती.
1: वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती.
1: नॉर्थ, साउथ,
2: 103.5,
1: ईस्ट, वेस्ट,
2: 96.4,
1: सेंटर,
2: 99.4.
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
0: Good afternoon, everyone. Check your time. It's 5 p.m. And yes, we have the news with Rupeshna. Wish you a very good afternoon and a warm welcome to you.
3: Thank you, Hansini. Good afternoon to you too. Good afternoon to all our listeners. We open on excellent news from the Commonwealth Games in Glasgow. Noemi Alphonse snatched silver in the 1,500 metres T54 final this Friday. She finished behind Scotland's Melanie Woods. Noemi Alphonse goes down in history by becoming the first Mauritian para-athlete to win a medal at the Commonwealth Games. Starting at 7 p.m, boxer Mervyn Clerc will be in the ring for the semi-final in the under-70 kilo category. He will clash against the Welsh Orlando Holy Satomi. Irrespective of the outcome, Mervyn Clerc is already guaranteed a medal for Mauritius. Two more Mauritians will compete in the final tonight. First, Anaïs Angelin in the T38 long jump at 5 minutes past 11 p.m. and about 20 minutes later, Rachel Klopfenstein

शुरुआत कर लेते हैं फॉर द सेकंड आवर ऑफ फ्राइडे मैशअप. इट्स अ वार्म वेलकम टू एवरीवन. और ऐसे गाने हम लेकर आ रही है ताकि जो शुक्रवार है, जो फ्राइडे वाइब्स है, वो बस और भी धमाकेदार हो जाए. मूड को बना लेंगे हमारे गाने आफ्टर 7 PM. स्टे वेल ट्यून्ड. अगर अभी आपने अपना रेडियो सेट ऑन कर लिया है, मे बी इससे पहले कुछ बिजी थे, कोई बात नहीं, चलता है. हम तो यहीं पे हैं, हम सुनिए आपके साथ. विशिंग यू ऑल अ ग्रेट टाइम, अ ग्रेट आफ्टरनून एंड अ सेफ ड्राइव. अगर अभी सफर जारी है, मे बी काम से घर वापस अभी आप जा रहे हो, सो प्लीज बी सेफ. लेकिन आराम से इत्मीनान से गाड़ी चलाएं, क्योंकि आज तो फ्राइडे है. नो स्ट्रेस आज, नो रश, क्योंकि कल लाइक वीकेंड दस्तक तो देने वाले हैं, राइट. सो इसके लिए विल हैव लाइक अ चिल टाइम राइट ऑन रेडियो मस्ती. तो यहाँ पर एक गाना हो जाए, इसके बाद हम लेकर आएंगे लेट्स से और एक चांस. अगर पिछली बार आपकी जीत नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर रेडियो मस्तीज है ना, आपके साथ साथ चलने वाला है आपके साथ. तो और एक गेम इज गेटिंग रेडी फॉर यू ऑल. जीतने के चांसेस यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, इसके लिए स्टे वेल कनेक्टेड.

Alright, back with the show. यहाँ पर इशारा तो था कि यहाँ पर गेम जो होने वाला है, so just get ready for the game. It's powered by Rajasthan Works Limited. So play with MBC and Rajasthan Works. और यहाँ पर जीती exciting prizes. So stand a chance. यहाँ पे

of India Mauritius Shopping Carnival, powered by SBI and LIC, shuru hoga. Special event as from 12 of August 2026 aur chalega 16 August tak at SBI CCPI as from 10 AM to 9 PM. Aur wahan ke jo 5 din hone wale hai, that will be great of shopping, entertainment और family fun भी तो वहाँ पर होने वाला है धूमधाम से. That will include international home shopping, entertainment shows, magic shows, fashion show भी तो होने वाला है. Wow! Live performance by Indian Idol singer Parinay Jain, special appearance by Bollywood choreographer Dharmesh sir, Kanma show, ब्लड डोनेशन कैंप एंड फूड फेस्टिवल. सो ये सब कुछ होने वाला है वहाँ पर. सो अगर आपको जाना है यहाँ पर, इतने सारे एक्साइटमेंट शुरू होने वाले हैं वो शॉपिंग्स, गेम शोज, ये यहाँ पर बिल्कुल सेट होते हैं ताकि आप बने लकी विनर. सो जीतने के चांस. यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने रखा है, रियली होप कि आपके पास से जवाब होंगे. मुझे पता है कि होंगे, यकीन है. बॉलीवुड रिलेटेड एक क्वेश्चन हो जाए. 2004 में चलेंगे, वहाँ पर रिलीज हुई थी एक ऐसी मूवी विच सेलिब्रेटेड इट्स 22 ईयर्स कल. 2004 की एक मूवी जो कल सेलिब्रेट कर गई अपनी 22 इयर्स. डेविड धवन की बनाई हुई मूवी थी और मूवी में नजर आए थे अक्षय कुमार और साथ में थी प्रियंका चोपड़ा. एक छोटा सा क्लू, यस, दे देती हूँ एक छोटा सा क्लू टू मेक इट इजी. उस मूवी में नजर आए थे राजपाल यादव, डुअल रोल में नजर आए थे. सो मूवी का नाम अगर आपको पता चल गया है, सो जल्दी जल्दी ट्राई योर लक ऑन 54991294. यहाँ पर बिल्कुल जीतने के चांसेस ऑन रेडियो मस्ती. तो चलिए, हम सनी और पूरी टीम आए हैं टू विश यू ऑल द बेस्ट.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: पुराने गाने हो या फिर 90s या फिर लेटेस्ट गाने, हम लेकर आते हैं ओनली द बेस्ट आप सबके लिए। यस, दिस इज रेडियो मस्ती जो आपके एकदम करीब है। टू सेलिब्रेट फ्राइडे और दिस इज फ्राइडे मैशअप गोइंग ऑन, था हमारा एक क्वेश्चन, यस सवाल तो था। यहाँ पे एक ऐसी मूवी रिलीज हुई थी इन ईयर 2004, 2004 की एक मूवी जहाँ पर नजर आए थे अक्षय कुमार एंड प्रियंका चोपड़ा, और कल द मूवी सेलिब्रेटेड इट्स 22 ईयर्स। दविद धवन साहब की बनाई हुई मूवी थी और हमने आपको बताया था, एक छोटा सा क्लू हमने आपको दिया, उस मूवी में नजर आए थे राजपाल यादव इन अ ड्यूअल रोल। तो मूवी का नाम दैट वाज सो इजी, दैट वाज मुझसे शादी करोगी, यहाँ पर सही टाइटल तो था। एंड कहेंगे आप सबको थैंक यू हमारे इस गेम शो में पार्टिसिपेट करने के लिए।

शादी करोगे दोस्ती नहीं बल्कि सीधे शादी की बात हुई थी इन द मूवी मुझसे शादी करोगी वाला टाइटल और सही जवाब देकर बन गई है लकी विनर यहाँ पर पूरन जया जो रहती है सेंकवा कंग्रेचुलेशंस टू यू माय डियर आपकी जीत हो गई है एंड यस ऑलरेडी यू वॉन द 4 entry टिकेट्स एंड 1 food coupon फॉर द जेंट्स लिटिल इंडिया शाही थाली एट द उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC शुरू होगा वो स्पेशल इवेंट आज फ्रॉम 12 अगस्त चलेगा 16 अगस्त तक एट SBI CCPI आज फ्रॉम 10 AM टू 9 PM वहां पर होने वाली है लॉट्स ऑफ धमाका लॉट्स ऑफ शॉपिंग एंटरटेनमेंट फैमिली फन मैजिक शोज के साथ फैशन शो एंटरटेनमेंट शोज इंटरनेशनल होम शॉपिंग और साथ में होने वाली है लाइव परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन स्पेशल अपीयरेंस बाय बॉलीवुड धर्मेश सह यहां पर होने वाली है इन मॉरिशस फॉर द बेस्ट ऑफ शोज और साथ में होने वाला है द कानमा शो और ब्लड डोनेशन कैंप so much of happening food festival bhi hone wala hai and all organized by event works limited so congratulations to you jaya ji bilkul hum milenge jald aur yahan par jo aapka gift hai wo aapko bheja jayega right aur agar nahi to aapko aana hai mbc ye jo hamare mbc ke coordinators hai wo aapko zarur contact karenge for all the details congratulations again and thank you for connecting with radio musti for aaj ka friday mashup

0: और आज हम बच्चों के कपड़ों के लिए आसान और स्टाइलिश फैशन टिप्स लेकर आए हैं। तो बच्चों के साथ उनके कपड़े, कभी ऐसा होता है कि मुश्किल होती है कि कैसे सेट करें उनके कपड़ों को, तो एक छोटा सा आसान टिप, बच्चों के कपड़े चुनते समय सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि उनका आराम भी सबसे ज़्यादा मायने रखता है ना। तो कुछ टिप्स जो आपकी ज़िंदगी को और भी आसान बनाने वाले हैं। सबसे पहले यू हैव टू मेक श्योर कि वो कंफर्टेबल है, जो भी कपड़े आप चूज़ करेंगे उनके लिए हमेशा कॉटन जैसे मुलायम लेने के लिए फैब्रिक चुने, ताकि बच्चे पूरे दिन आराम से खेल सके, घूम सके एंड कैन बी वेरी लाइक कंफर्टेबल होल डे। और चमकीले और खुशमिजाज रंग को चुनेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, दैट विल बी वेरी हैप्पी फील अराउंड। बच्चों पर लाल, पीला, नीला, हरा और पेस्टल रंग बहुत ही अच्छे लगते हैं। रंग बिरंगे कपड़े उनके लुक को और भी एकदम अट्रैक्टिंग बनाते हैं। सो डू ट्राई द कलर्स एंड मेक देम मोर एंड मोर कलरफुल। और हाँ, मौसम के अनुसार जो ड्रेसिंग है बस उनके अकॉर्डिंग ही आपको करना है। गर्मियों में हल्के और ढीले कपड़े पहना लीजिए, जबकि सर्दियों में लेयरिंग करें, जैसे कि टी शर्ट, इसके बाद यू कैन ऐड स्वेटर और जैकेट। ये कॉम्बिनेशन एकदम क्लासी एंड स्टाइलिश लगता है। सो डू ट्राई एंड अपने बच्चों को ज़्यादा क्लासी लुक आप दे दीजिए। दैट वॉज अ छोटा सा टिप रेडियो मस्ती टीम की तरफ से।
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हरकोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।

Let's continue the show with the good vibes for आज का Friday mashup with Audrey Hansony and music को बस हम enjoy कर रहे हैं. एंड ये तो है कि संगीत म्यूजिक केवल सुनने की चीज नहीं है ना, बल्कि जीने का एहसास है. जिंदगी के इस भागदौड़ में म्यूजिक एक ऐसा साथी है जो कभी साथ नहीं छोड़ता है. इसीलिए हम बन जाते हैं आपके साथ, कभी हम साथी कभी हम सफर. ये तो है रेडियो मस्ती का कमाल. सो वी आर हियर. लेकर अब कुछ आपके डेडिकेशन मैसेजेस चलते हैं स्टेनली रोजल. वहां पर तो फ्राइडे मशअप को हाई वॉल्यूम पर एंजॉय किया जा रहा है. दैट्स नाइस. हेलो साधना जी, प्रणाम टू यू एंड वेलकम इन द शो. राम तो हर परिवार का भी वेलकम है. वेरी होप यू हैड अ ब्लिसफुल टाइम. और प्रेयर्स अब समाप्त हो गई है और अभी घर पर कुछ आराम. तो चलिए बोन कुराज आपको एंड स्टे वेल ट्यून्ड फॉर यू टू बी म्यूजिकल हमारे साथ. इसके लिए थैंक यू. यहाँ पर गाना है फॉर प्रीतम जी के लिए, सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे आज. लट्स ऑफ गुड विशेज टू यू जी. यहाँ पर हमेशा आप स्वस्थ रहे और विशेज लेकर आए हैं आपकी प्यारी सी वाइफ, नाम है उनका Damini. All right. So wishing you a very happy birthday. God bless you. And thank you for appreciating the collection for Friday Mashup. Next one, we dedicate it for Handsome Beta. Naam hai Shubham Baji aur wo to rehte hain Upper Daguchia, celebrating his birthday aaj. Hey Shubham, happy, happy birthday to you. Prosperity, happiness aapke naam. From Mama Kavita, Dad Raj, Akashweta, Darshini, Shikha, Dada hai Aniket, Prashant, Tishan, Vahini, Disha, okay, Karishma, Nana Devan, Sanjay, Vedanan, Kaku Rupa, we have Babini, Ato Savitri, Mama hai, we have Dayanan, Ato Santa, aur Pure. हीरो परिवार आई है. वाओ, दैट्स कमिंग फ्रॉम ब्रिजेवेजिया. एंड पराश्रम परिवार जो आई है फ्रॉम कटबोन. टू विश यू हैप्पी वाला बर्थडे.

हर धुन में एक कहानी छिपी होती है, बस उसे महसूस करने वाला दिल चाहिए। तेरे बिना, that was in the voice of Himesh Reshamya. All the lovers जो यहाँ पर strongly connected है with the rhythm of the

0: Friday Mashup. 4 to 6 on Radio Musti.
1: RM2, Radio Musti, your number one Bollywood radio station.
2: और यहाँ पर नंबर वन गाने तो बनते हैं ना आप सबके लिए. थैंक यू फॉर बीइंग साथ साथ हम सफर बनने के लिए. और यहाँ पर इशारा है कि कुछ ही पल में हम बढ़ेंगे समाचार बुलेटिन की तरफ और इसके बाद जरूर मिलेंगे हम इन द नेक्स्ट आवर. कुछ और बातें शेयर करेंगे और जो हम सुने विद यू अप टिल 7 PM. कीप एंजॉयिंग विद रेडियो मस्ती. दिस इज आवर फ्राइडे मैशअप.

नमस्कार, सायंकालीन समाचारों में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। कॉमनवेल्थ खेलों में नोएमी अल्फोंस की बदौलत मॉरिशस को एक दूसरा मेडल हासिल हुआ। 1500 T54 की दौड़ में मॉरिशन पारा एथलीट ने बेहतरीन प्रदर्शन देकर सिल्वर मेडल जीता। राष्ट्रीय सभा में आज फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसलेनियस प्रोविजंस बिल पर बहसें जारी रखी जा रही हैं। 12 सांसद इस पर अपने विचार दे रहे हैं। मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को सेशल्स के साथ एक संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मंजूरी दी। इसका मकसद है दोनों देशों के बीच साझा कॉन्टिनेंटल शेल्फ की समुद्री जोन का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में भारत में एंटी पेपर लीक बिल कल राज्यसभा में पारित किया गया। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत। शुरुआत करते हैं मॉरिशस के लिए इस अच्छी खबर के साथ। कॉमनवेल्थ खेलों में नोएमी अल्फोंस की बदौलत

0: मॉरिशस को एक दूसरा मेडल हासिल हुआ है। 1500 T54 की दौड़ में मॉरिशन पारा एथलीट ने बेहतरीन प्रदर्शन देकर सिल्वर मेडल जीता है। उसने 3:32 में दौड़ पूरी की और ये इस सीजन का उसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा। दौड़ की शुरुआत से ही नोएमी अल्फोंस ने दूसरा स्थान बनाए रखा था। गोल्ड मेडल स्कॉटलैंड की मेलानी वुड्स को गया।
1: नोएमी अल्फोंस के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। बुधवार की निराशा अब पीछे छूट चुकी है। आज उनके चेहरे पर अपने प्रदर्शन को लेकर संतोष और गर्व साफ दिखाई दिया।
2: C'est une médaille qui me tient à cœur, même si vous connaissez qui 48 heures de cela, c'était un peu le chaos pour Team Maurice et pour moi-même et mon coach.
1: 1500 मीटर T54 के फाइनल में मॉरिशन नोएमी अल्फोंस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी क्षमता का पूरा परिचय दिया। शुरुआत से ही प्रबल दावेदार स्कॉटलैंड की मेलानी वुड्स के पीछे रहते हुए नोएमी अल्फोंस ने उनकी तेज रफ्तार का मजबूती से सामना किया। पूरी कोशिश के बावजूद वो मेलानी वुड्स को पीछे नहीं छोड़ सकी। वुड्स ने 3:32.20 के साथ स्वर्ण पदक जीता। वहीं नोएमी अल्फोंस ने 3:32.98 में दौड़ पूरी कर रजत पदक अपने नाम किया। ये सीजन का उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा।
3: She's led from the gun. She kicks away off the final bend. Alphonse couldn't find the speed in the last 100. And it's gold for Scotland. 55.83, that final circuit.
2: Après mon crash, tout le monde s'est inquiet, même moi-même. Je suis plus inquiet pour me fauter, puis moi, quand je connais me fauter. Et tu casses, mais mon gars, soutien de toute l'équipe, l'équipe australienne et Canada, il est moins pour...
1: सिल्वर मेडल से बढ़कर ये उपलब्धि ऐतिहासिक भी है। नोएमी अल्फोंस कॉमनवेल्थ खेलों के इतिहास में पदक जीतने वाली मॉरिशस की पहली पारा एथलीट है। ये कॉमनवेल्थ खेलों में मॉरिशन टीम का दूसरा पदक है। इससे पहले मुक्केबाज मेविन क्लेयर ने बॉक्सिंग में देश के लिए पदक सुनिश्चित किया।
0: ग्लासगो में नोएमी अल्फोंस और बांदी पेरिन का सफर जारी है। दोनों 400 मीटर T54 की फाइनल के लिए क्वालिफाई हुए हैं। राष्ट्रसभा में आज फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसलेनियस प्रोविजंस बिल पर बहसें जारी रखी जा रही हैं। 12 सांसद इस पर अपने विचार दे रहे हैं। विपक्ष नेता ने सबसे पहले अपना मत दिया। उन्होंने मुख्य रूप से पेंशन सुधार और बैंकिंग एक्ट में लाए गए सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। जोले जोंगो ने इन विधेयकों में शामिल दो प्रावधानों का स्वागत किया है। साथ ही श्रम मंत्री गजाउतीम और विपक्ष के सांसद अद्रियन जुवाल ने भी अपने विचार दिए। तीनों सांसदों को सुनते हैं।
4: Ces deux textes de loi scelleront de manière irréversible le modèle économique, politique et social de notre pays. Nous nous trouvons de toute évidence cet après-midi un tournant de notre histoire. Madame la Présidente, l'amendement proposé à la section 12-13C traite l'ajustement de la pension au coût de la vie par la formule « as may be prescribed ». Ne nous y trompons pas. Cette formulation lève toute obligation légale pour le gouvernement d'indexer les pensions sur l'inflation. Le pouvoir s'octroie ainsi la liberté discrétionnaire de geler le montant de ses prestations. C'est un amendement que je qualifierais d'une gravité absolue, pour ne pas dire sinistre, Madame la Présidente. And in this country, the social contract has always been clear. You work hard, you contribute, and you retire with dignity at the age of 60.
5: Que ce soit dans le secteur privé, que ce soit parmi les fonctionnaires, les travailleurs ont droit, après un certain nombre d'années, d'aller à la retraite avant.

0: avant l'âge de 65 ans. Et ils touchent un lump sum moins et une mensualité moins. Donc c'est le même principe qu'on est en train d'appliquer aujourd'hui à la pension universelle. Si vous voulez partir à l'âge de 65 ans, vous avez un full pension. Si vous voulez partir avant l'âge de 65 ans, c'est réduit dépendant de quand vous décidez de prendre votre pension. Tous les ans, il y a une compensation salariale pour compenser le la hausse du coût de la vie des travailleurs. Okay? De la même manière, la pension va être réévaluée tous les ans. Et la politique de ce gouvernement, contrairement à ce que a voulu faire croire le leader de l'opposition, la politique de ce gouvernement a toujours été d'augmenter la pension chaque année pour prendre en considération l'augmentation du coût de la vie.
1: La plus grande priorité des Mauriciens, c'est le coût grandissant du coût de la vie de leurs dépenses ménagères. Et on aurait donc espéré que finalement le gouvernement tienne sa parole sur l'importation parallèle. Je l'ai dit, je le redis, sur un marché de 500 milliards annuels de consommation, 2 milliards de roupies, c'est 0,4%, ça ne représente rien. Donc il faut venir avec l'importation parallèle. Madame la Présidente, je vais parler de la clause 3 du Economic Bill, les amendements à section 64 du Banking Act. I have no problem if we contain it to drug trafficking, to terrorism financing. I have no problem with it at all. But I have a problem if we're going to use it for other purposes. I also have a problem that we give so much powers unchecked. And finally, I have a problem, and I'm surprised that the Minister Outim doesn't, on what it does to our financial services sector, the offshore sector.
2: मंत्रिमंडल ने पिछले शुक्रवार को सेशल्स के साथ एक संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मंजूरी दी। इसका मकसद है दोनों देशों के बीच साझा कॉन्टिनेंटल शेल्फ की समुद्री जोन का अध्ययन करना, समंदर की सतह में खोज करने और भूवैज्ञानिक जानकारियां इकट्ठा करने और उसका संचालन करने में विशेषज्ञता रखने वाली वेरिजियन नामक कंपनी ये अध्ययन करने की जिम्मेदारी संभालेगी। मकसद है ये पता लगाना कि क्या समंदर की स्थिति कब हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी के लिए अनुकूल है या नहीं। पेश है रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री दफ्तर का एक प्रतिनिधि मंडल इन दिनों सेशेल्स में है। वो मस्कोविंस में कॉन्टिनेंटल प्लेट के विस्तार पर जॉइंट कमीशन की एक बैठक में भाग ले रहा है। आयोग की इस 35वीं तकनीकी कमेटी में वेरिजिया कंपनी के साथ हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौते के मोडालिटीज को परिभाषित किया जाएगा। कॉन्टिनेंटल प्लेट विभाग के महानिदेशक डॉक्टर रजा बादल कहते हैं, करीब 10 नियम कायम किए गए हैं जो खासकर पर्यावरण और खोज से संबंधित पहलुओं पर आधारित हैं और किस तरह संसाधन का संचालन किया जाए। विजय को इस क्षेत्र की जियोलॉजिकल और जियोफिजिकल जानकारियां प्राप्त होंगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि कुछ प्रशिक्षण ईंधन की मौजूदगी के पक्ष में हो सकते हैं या नहीं। जॉइंट टेक्निकल कमेटी के हिस्सा बॉबे कहते हैं, वैज्ञानिक प्रशिक्षण काफी नहीं है, कई खोज कार्य किए गए हैं, मरीन स्पेशल प्लान शुरू करने के लिए पर्याप्त जानकारियां होनी चाहिए।
4: नो कैपाब जोन समा सा जेम इन टर्म्स ऑफ बन एक्टिविटीज की पोगा फेयर इन एक्टिविटी ओ से की पोगा फेयर।
3: इस अध्ययन से भविष्य में इलाके की सभी गतिविधियों को लेकर संभावित पर्यावरण प्रभावों का मूल्यांकन किया जा सकेगा। पहले ही कई अध्ययन किए जा चुके हैं। इस सहयोग से एक बड़ा खोजी जहाज हमारे इलाके में आ सका है जिसमें दोनों देशों के वैज्ञानिकों ने भाग लिया। हमने एक साथ काम किया, वैज्ञानिक प्रशिक्षण किए और समुद्र में नई किस्म की प्रजातियों का पता लगाया और ये जान सके कि बायोडायवर्सिटी में कौन सी जगह ज्यादा नाजुक है। इस तरह खोज कार्यों के दौरान ज्यादा सावधानियां बरत सकेंगे। संबंधित क्षेत्र करीब 3,96,000 वर्ग किलोमीटर पर फैला है। दोनों देशों ने समुद्र में संसाधनों के संयुक्त संचालन को लेकर 2012 में समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे।
2: विवरण गीता सुनारन का रहा। मॉरिशस में तेजी से बढ़ रहे अचल संपत्ति यानी रियल एस्टेट सेक्टर को बेहतर ढंग से नियमबद्ध करने के लिए रियल एस्टेट एजेंट अथॉरिटी इस क्षेत्र के ऑपरेटरों के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर रही है। पहली अगस्त से शुरू हो रही

0: इस पहल का मकसद पारदर्शिता और पेशेवर प्रक्रियाएं तथा ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाना है, जो रियल एस्टेट एजेंट और डेवलपर्स इस क्षेत्र में गैरकानूनी तरीके से काम करेंगे उन्हें भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। अब्दुल बोला की करुणा लालू।
1: मॉरिशस में रियल एस्टेट मार्केट की कीमत 1 बिलियन रुपए से ज़्यादा है। सेक्टर को बेहतर तरीके से विनियमित करने के लिए भूमि एवं आवास मंत्रालय के तहत आने वाली रियल एस्टेट एजेंट अथॉरिटी ऑपरेटरों के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन शुरू कर रही है। यह अभ्यास 1 अगस्त 2026 से शुरू होकर 6 महीनों तक चलेगा। शुरुआत में 3 वर्ग संबंधित हैं, रियल एस्टेट की बिक्री और खरीद में माहिर रियल एस्टेट एजेंट, लैंड डेवलपर्स और प्रॉपर्टी डेवलपर्स। एबेन में इस प्राधिकरण के हेडक्वार्टर में हमें बताया गया कि मकसद ये पक्का करना है कि घर, अपार्टमेंट या जमीन से जुड़ा हर ट्रांजैक्शन एक पारदर्शी और सुरक्षित परिवेश में हो, ताकि खरीदारों और विक्रेताओं की बेहतर सुरक्षा हो सके।
2: La protection des consommateurs, souvent, il y a un acte qui passe, que ce soit dans l'achat et vente ou dans la location. La personne qui est enregistrée, les tenir à mettre un contrat en place entre lui et le client et garde un record de toutes les transactions qui sont passées avec sa client-là. Par exemple, une offre qui est faite et comme ça, il y a fait une décision informée sur l'offre qui est mise et quel type de clientèle c'est.
1: अपनी तरफ से ऑपरेटरों का मानना है कि सेक्टर को और पेशेवर बनाने का समय आ गया है।
3: De nos jours, vous levez le matin, vous êtes sur TikTok ou sur Facebook, vous trouvez n'importe qui s'en a fait n'importe qui terrain. Donc, nous n'avons plus qu'à continuer, nous n'avons pas vivre dans un pays qui est peinant de réglementation, là, c'est un gros secteur là. Donc, avec l'arrivée de REA, il n'est pas aussi évident qu'il ouvre un agent immobilier. Vous pouvez avoir un critère spécifique relatif au marché, relatif au business, pour être capable être enregistré comme un agent immobilier. Et ça, j'applaudis vivement.
1: Registration EDB के नेशनल इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंसिंग सिस्टम के जरिए ऑनलाइन किया जाएगा। जारी किए गए सर्टिफिकेट को हर साल रिन्यू कराना होगा, जिसकी कीमत 20,000 से 1,00,000 रुपये तक हो सकती है। ऐसा न करने पर 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल जेल की सज़ा हो सकती है।
0: मॉरिशस को चीन की तरफ से 20 मेगावाट की क्षमता और 1 बिलियन रुपए की कीमत वाला बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम दान में मिल रहा है। इस सिलसिले में कल ऊर्जा मंत्री पत्रिका सेवादेन और चीनी राजदूत हुआंग शिफांग ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। जल्द ही 2 नया भंडारण सिस्टम के कार्यरत होने से देश के राष्ट्रीय ऊर्जा नेटवर्क में अतिरिक्त 60 मेगावाट बिजली जुड़ेगी। पेश है रिपोर्ट गीतास नारायण के साथ।
4: बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एक ऐसी तकनीक है जो बिजली को संग्रहित करती है ताकि बाद में आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके। चीन की ओर से मिले इस सहयोग के तहत मॉरिशस को जल्द ही अपनी पहली 20 मेगावाट क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली मिलेगी। ये प्रणाली बिजली ग्रिड की स्थिरता को बेहतर बनाएगी और सीबी को बढ़ती बिजली मांग, खासकर पीक आवर्स के दौरान, ज्यादा प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद करेगी। मंत्री पत्रिका सेवादेन कहते हैं, हमने एक बैटरी खरीदी है जो अगस्त में कार्यरत हो जाएगी। ये 20 मेगावाट की होगी। एक दूसरी बैटरी के लिए ऑर्डर भेजा है जो 20 मेगावाट की ही है और 600 मिलियन रुपए की है। 9 महीनों में ये नेटवर्क में शामिल हो जाएगी। 20 मेगावाट की एक बैटरी के लिए चीनी सरकार की ओर से 1 बिलियन रुपए मिल रहे हैं। बहुत जल्द नेटवर्क में 60 मेगावाट की बैटरी कार्यरत होगी। हर रोज 6 से 9 बजे तक बिजली को लेकर राहत मिलेगी और इससे नेटवर्क में स्थिरता आएगी। समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान चीन की राजदूत हुआंग शिफांग ने इसे मॉरिशस और चीन के बीच द्विपक्षीय सहयोग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। वे कहती हैं, मॉरिशस ने ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कटिबद्धता ली है। चीन ग्रीन एनर्जी को लेकर दुनिया भर में आगे है और हम टेक्नोलॉजी, विशेषज्ञता और अनुभव बांटने के लिए तैयार हैं। ऊर्जा मंत्री पत्रिका सेवादेन के अनुसार ये परियोजना ऊर्जा परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज करने, नई तकनीकों के उपयोग के माध्यम से ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और सरकार की स्वच्छ ऊर्जा संबंधी पहलों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
0: पोर्ट लुइस में रुइसो जिपूस पर स्थित ईआर कंपनी का पार्किंग स्थल तोड़ने के काम का अंतिम चरण कल

0: सुबह पूरा किया गया। पूर्व न्यायाधीश भूषण धूमा द्वारा 2008 में नहरों के ऊपर निर्मित संरचनाओं को हटाने की सिफारिशों के बाद इस पार्किंग स्थल को तोड़ने का काम 2023 में शुरू किया गया था। ये सिफारिशें पोर्टलुई में बाढ़ की स्थिति को लेकर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन के बाद जारी की गई थी।
1: पोर्टलुई भारी बारिश की

0: शुरू हुआ, जिसके तहत नदी नालियों पर बनी अवैध संरचनाओं को हटाया गया। इस परियोजना की कुल लागत 15,04,92,000 रुपए की है। नगर पालिका ने विसोजुपुस नाले पर इया कंपनी द्वारा बनाए गए पार्किंग क्षेत्र को भी ध्वस्त कर दिया है। गोविंदा हसन, नयागन, कहते हैं, बाधाओं को हटाना बहुत ही जरूरी था। नीचे खम्बे हैं। बाढ़ के बाद हमने देखा कि वहाँ कई मलबे हैं, जिससे म्यूशम और पुदरिया गली के इलाकों में पानी भर जाता है। हालांकि ये अभियान आसान नहीं था। सबसे पहले नगर पालिका को विसोजुपुस के किनारे कंपनी गार्डन के पास बैठे फेरी वालों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ी। इसके अलावा मेटको और रॉजर्स कंपनियों के साथ पार्किंग इलाके हटाने को लेकर भी सहमति बनानी पड़ी। पानी भर जाता है क्योंकि लोग बहुत कचरा फेंकते हैं। नाली बनाने में बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है, मेंटेनेंस पर भी खर्च करना चाहिए था। लाबित से लेकर टुनिये के किनारे बनी सभी संरचनाओं को भी हटा दिया गया है। कंपनी गार्डन के सामने स्थित पुराना KFC इमारत अब पूरी तरह हट चुका है। वहीं एयर मॉरिशस के पायोंग इमारत के पार्किंग स्थल को भी नष्ट कर दिया गया है। लॉर्ड मेयर क्रिस्टल पोंडा कहती हैं, सफाई करने में कठिनाई होती थी, अब मलबे नजर आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, नियमित रूप से सफाई की जा सकेगी। ये कार्य बाढ़ के खतरे को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं, लेकिन शहरी विशेषज्ञ डॉक्टर जहीर आलम के अनुसार जलवायु परिवर्तन और आधुनिक शहरीकरण से पैदा होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए ये उपाय अभी काफी नहीं है। पहले की तुलना में पोर्टविस की आबादी अब बहुत ज्यादा है। वर्तमान मूल ढांचे अब उद्देश्यों को पूरा नहीं करते हैं। पुनर्व्यवस्था पर ध्यान देना पड़ेगा। वही नेशनल डेवलपमेंट यूनिट ने नदी नाली व्यवस्था और संवेदनशील इलाकों के पुनर्विकास के लिए योजना तैयार करने के लिए एक सलाहकार की सेवाएं ली हैं, ताकि भविष्य में बाढ़ के खतरों को प्रभावी ढंग से कम किया जा सके।
1: क्यूबिप के लायंस क्लब के सहयोग से 10 मर्शन मरीजों का कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हुआ है। ये ऑपरेशन पाकिस्तान से आए स्पेशलिस्ट डॉक्टर वाजिद अली खान द्वारा सुब्रमण्यम भारती आई हॉस्पिटल में किए गए। उनके इस दौरे के तहत लगभग 20 और ट्रांसप्लांट किए जाएंगे।
0: पिछले एक साल से शीला सूखिया आँखों की गंभीर समस्या से जूझ रही थी। इस वजह से उनका रोजमर्रा का जीवन कठिन हो गया था और उनकी स्वतंत्रता भी काफी सीमित हो गई थी, लेकिन अब उनकी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी सफलतापूर्वक हो गई है। पिछले साल से आंखों में समस्या होने लगी थी। अस्पताल में इलाज करवाने आई, मुझे वेटिंग लिस्ट में रखा गया। विदेशी डॉक्टरों ने मेरा ऑपरेशन किया, अब मेरी समस्या बहुत कम हुई है। उनकी तरह 9 अन्य मरीजों का भी ऑपरेशन लायंस क्लब ऑफ क्यूपिप के सहयोग से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत किया गया। मारियान लानगुला कहती हैं, 2015 में आंखों की समस्या थी, तीसरी बार इस आंख का ऑपरेशन किया है। क्यूपिप के लायंस क्लब के अध्यक्ष नवीन बबीचन कहते हैं, हमारा उद्देश्य है सेवा प्रदान करना, ताकि लोगों को अपनी आंखों से दिखाई दे। ये सभी सर्जरीज पाकिस्तान से आए नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर वाजिद अली खान ने की। इस तरह के चिकित्सा अभियान मरीजों को विशेष उपचार उपलब्ध कराते हैं और उन्हें फिर से सामान्य तथा आत्मनिर्भर जीवन जीने में मदद करते हैं। डॉक्टर वाजिद अली खान कहते हैं, 4 विशेषज्ञ यहाँ आए हैं और हर एक की अपनी अलग अलग विशेषज्ञता है। मैं कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करता हूँ, जबकि मेरे अन्य सहयोगी डायबिटिक रेटिनोपैथी और रेटिनल डिटैचमेंट का इलाज करते हैं। खासकर जिन मरीजों का कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किया गया है, उनके दोबारा दिखने की संभावना बहुत अच्छी है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके मामले में आंख का बाकी हिस्सा सामान्य

0: रूप से काम करता है। केवल कोनिया कमजोर या क्षतिग्रस्त होता है। ट्रांसप्लांट के बाद मरीज अच्छी तरह देख सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मॉरिशस में समय समय पर विदेशी विशेषज्ञ डॉक्टरों को बुलाना बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि मरीजों को उच्च स्तर का विशेष उपचार मिल सके। कई लोग आंखों की रोशनी खो देते हैं। हम भी वेटिंग लिस्ट में मरीजों की संख्या कम करना चाहते हैं। कई वर्षों तक उन्होंने इंतजार किया। विदेश से मिल रहे सहयोग से आने वाले सप्ताहों या महीनों में सभी लोगों का ऑपरेशन हो जाएगा। इस चिकित्सा अभियान के दौरान मॉरिशस में लगभग 20 कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किए जाने की उम्मीद है।
1: अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। भारत में एंटी पेपर लीक बिल कल राज्यसभा में पारित किया गया। इसके विरोध में विपक्ष ने सभा से वॉकआउट किया। इस कानून का मकसद है किसी भी परीक्षा से जुड़े पेपर लीक के किसी भी मामले के लिए सजा और सख्त करना। हाल में नीट की परीक्षाओं के पेपर लीक होने के बाद भारत में वृहद प्रदर्शन हुए, जिसको ध्यान में रखकर सरकार इस नए विधेयक के साथ सामने आई। स्पेन में प्रवासन संकट फिर से गंभीर हो गया है। कुछ ही घंटों में हजारों प्रवासी मोरक्को से स्पेन के सियोटा इलाके में दाखिल हुए, जिससे मानवीय और सुरक्षा संबंधी आपात स्थिति पैदा हुई। इस संकट की वजह से यूरोपीय संघ के अंतर्गत खासकर मैड्रिड और रोम के बीच मतभेद फिर से उभर आया है। आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत पूर्व से आ रहे बादलों का असर हमारे इलाके पर रह रहकर पड़ेगा अगले 24 घंटों के लिए अनुमान। आज रात और कल सुबह बादल घिरे रह सकते हैं और बारिश होती रहेगी। कल दोपहर बाद खासकर पूर्व और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर बारिश जारी रह सकती है। हवा पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2 मीटर तक की लहरें उठेंगी। तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा रहेगा। सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 20 से 22, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:39 पर सूर्योदय, शाम को 5:52 पर सूर्यास्त होगा।

देश विदेश की नई खबरों के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। इसको आप तक पहुंचाने में लीडर फीक हमारे साथ रहे, जुड़े रहिए। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। सेवक लेन सेबास्टोपोल में, सेवक लेन सेबास्टोपोल में 70 साल के 70 इयर्स ओल्ड श्री अनिल कुमार सेवक, श्री अनिल कुमार सेवक जो लेविस नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 3 बजे, इनकी अर्थी कल दिन के 3 बजे इनकी पत्नी श्रीमती गीता सेवक के मकान सेवक लेन सेबास्टोपोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौनवास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 3 PM। रॉयल रोड ब्रह्मस्थान में, रॉयल रोड ब्रह्मस्थान में स्कूल के पास 81 साल के 81 ईयर्स ओल्ड श्री रामानंद देवी, श्री रामानंद देवी जो पियो रामानंद नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे, इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे इनके मकान रॉयल रोड ब्रह्मस्थान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 10 AM। समुंदर लेन पायोत में 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड श्रीमती तारामती शंकर जो तारामती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी और श्रीमती रजनी शंकर की बेटी थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे, इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे माफ़ कीजिए, जो श्रीमती रजनी शंकर की माँ थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे, इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे इनके मकान समुंदर लेन पायोत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधीपाल

0: माँ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमारो एट नून। नंबर 70 मोसल मकाम फल प्लान दीवा पाए में, नंबर 70 मोसल मकाम फल प्लान दीवा पाए में 69 साल के 69 ईयर्स और श्री रामाकृष्णा नारायण रेड्डी, श्रीमती रामाकृष्णा नारायण रेड्डी जो देवेन आया देवेन नाम से ज़रा जानी जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी कल दिन के डेढ़ बजे, इनकी अर्थी कल दिन के डेढ़ बजे इनकी पत्नी श्रीमती पिचाई नारायण रेड्डी की मकान नंबर 70 मोसल मकाम फल प्लेंदी पापाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेंदी पापाई की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 1:30 PM। अलीमोंग पोस्ट डी फ्लैक में, अलीमोंग पोस्ट डी फ्लैक में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड श्री जमनलाल गंगू, श्रीमती जमनलाल गंगू, श्री जमनलाल गंगू जो देवकी सोफिया बिस नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे, इनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे इनके मकान अलीमोंग पोस्ट डी फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पोस्ट डी फ्लैक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। रिश्माओ फ्लैक में, रिश्माओ फ्लैक में 91 साल की 91 ईयर्स ओल्ड श्रीमती इंद्रावती रामजियावन, श्रीमती इंद्रावती रामजियावन पिताश्री नाम फकीरा जो इंद्रावती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह 9 बजे, इनकी अर्थी कल सुबह 9 बजे इनकी बेटी श्रीमती प्रेमिता गजाधर के मकान रिश्माओ फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिश्माओ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो 9 AM। KGW लेन ले ओशे तेरूज में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड श्री मानिको मुताई जो मानिको नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे, इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे इनके मकान KGW लेन ले ओशे तेरूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूले वालिदे पद की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमारो एट 10 AM। नंबर ए 01 डोडो NHDC लातू क्विनिक में, डोडो NHDC लातू क्विनिक में 80 साल की 80 ईयर्स ओल्ड श्रीमती पलम्बल उपया, श्रीमती पलम्बल उपया जो याया तोचिन लाबुचिक नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। की अर्थी कल दिन के 11 बजे, इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनकी बेटी श्रीमती शश्री उपाया के मकान नंबर ए 01 डोडो NHDC लातू क्लिनिक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वालिदे पद की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। एवेनी ड्रेपर बेलरोज में 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड श्रीमती बागिया बुल्का जो बागिया पाबित नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी रविवार 2 अगस्त को दिन के 3 बजे इनके मकान अवेन्यू ड्रेपर बेलरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोडेगौर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन ऑन संडे 2 अगस्त। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: RM2 Radio Musti.
2: Pour le, ce 17e anniversaire, du lait Omega 1 kg, acheté des sachets, gagne un spaghetti en cadeau pour 6, 399 roupies. Saucisse, qu'est-ce qu'une glu, 340 grammes, 37 roupies 95. Tweet, ice cream, 1.8 litres.

for you all, or ये जो style है, maybe आप try करेंगे in the party tonight. आज तो Friday है ना, so this is a reason to celebrate. यहाँ पे to chill out, friends के साथ, परिवार के साथ आप घूमने जाएंगे. This is a time not to be missed. Friday time is a mustiful time. Double dose of music, to radio musti को बस लेकर आ रहा है to entertain you. और जहाँ पर भी आप जाएंगे आज धूम धड़ाका करके जाएंगे, साथ साथ चलेंगे. दिस इज योर शो, इट्स फ्राइडे मशअप. बताओ जो हमसनी और मुलाकात हमारी तो होगी अब टिल सेवन. इसके बाद कुछ और धमाका तो होने वाला है यहाँ पर. दिव्या जो आने वाली है, यस अभी शेयर ऑन द वे. अभी हेलो टू यू दिवी एंड सी यू सोन. कम सेफली, यहाँ पर इंतजार है आपका. तो यहाँ पर ऑल सेट फॉर अ ग्रेट मैजिकल म्यूजिकल जर्नी जो हम सेट कर रहे हैं आपके लिए. फ्राइडे टाइम जो है इट्स अ ब्रेक एक्चुअली. हफ्ते भर के लिए कितना सारा काम होता है, लेकिन काम जो हम खत्म करते हैं फॉर अ फ्राइडे afternoon, it's like an oof ki finally it's like the end of the week. Aur jo aane wala hai that will be weekend full of josh, full of energy, full of family fun. So aur kya chahiye zabardast weekend ko celebrate karne ke liye jo bas aa hi gaya hai. It's like near the corner. Aur yahan par aapne kuch plan kiya hai वीकेंड को कैसे आप सेलिब्रेट करने वाले हो? कहीं घूमने जाएंगे दोस्तों के साथ पार्टी, या फिर बस घर पर कुछ आराम करेंगे? एनी हाउ यहाँ पर कनेक्शन बन जाएगा वो द रेडियो. यहाँ पर रेडियो मस्ती विल बी हियर टू अकंपनी यू, आप लोगों का साथ निभाने के लिए. सो वी हैव गॉट म्यूजिक फॉर एवरीवन जहाँ पर भी साथ जारी है. इट्स अ वार्म वेलकम इन आज का फ्राइडे मशअप.

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
2: It's our Friday mashup and we continue the show with some dedications now. प्यार से जहाँ पर आपने कुछ भेजा है and we're ready to with lots of happiness. यहाँ पर आप लोग आते हो always been very very special for us. Anusha है from our side आपका warm welcome है Anusha जी. Really hope कि सब ठीक है. यहाँ पे एक अच्छा सा गाना of course चल जाएगा आपकी niece Lavisha के लिए. Lavisha वो साई है जो रेनो मोगल से है. आज उनका birthday है. Happy birthday to you Lavisha. Lots of good wishes. Happy wishes coming from your mama Aarti, from papa Rupesh. Bhai hai aapke Lavish aur sabhi usai parivar hai Avonya Mughal. We have Poonam, Chacha Anil, aapke boss Mr. Rishi and pyari beti Pari aur sabhi team ke liye bhi. How nice of you. Thank you. So wishing Lavisha happy birthday with lots of good wishes. Yahan par Vishal ji ka saath from Nouvelle France aur thand ka mausam hai. It's like chilling out lekin just loving the show on Radio Musti. Please mere liye ek gana ho jaye for me and my wife Sadhana. Preparing dinner together and having a great time. Aur thodi der ke baad feast bhi hone wala hai parivar ke saath. So lage raho ji, bon appetit aap sabhi ko. Enjoy your time, enjoy your Friday mood. We have it for Nivedita ke liye celebrating her birthday aaj. Lots of good wishes to you, my dear. And aap to ja rahi ho for a dinner. You are in the car, gaadi mein ho aur sab cousins aapke saath hain. A big shout out to all the cousins. Hi, hello and welcome. Thank you for the message. Wishing your dear Best one, happy birthday, जो आज अपना स्पेशल दिन मना रहे हैं एंड वी आर हियर टू सेलिब्रेट द लास्ट डे ऑफ जुलाई महीना 31st ऑफ जुलाई एंड कल से एक नया महीना शुरू होने वाला है लेकिन विल एंड इट विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लॉट्स ऑफ गुड वाइब्स एंड कीप शेयरिंग योर लव एंड हैप्पीनेस विद योर डियर वंस. चलिए इसी के साथ जाने का टाइम आ गया है. दैट विल बी द एंड ऑफ फ्राइडे मशक लेकिन न्यू बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट शो विद धमाकेदार सॉन्ग्स. आ गई है दिव्या लेकिन कहाँ पर है दिव्या? हाँ लगता है शी इज अराउंड गेटिंग रेडी फॉर द शो और उनके गाने भी एकदम मस्त जबरदस्त है. ऑलरेडी द लिस्ट इज हियर टू एंटरटेन यू. सो हैव फन, हैव अ ब्लास्ट, एंजॉय योर फ्राइडे मूड. कल मिलने वाले हैं हम सब एक बार फिर से फॉर अ न्यू जर्नी फॉर अ न्यू शो. तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैप्पी फ्राइडे टू एवरीवन.

0: फिल्मी जाम रेडियो मस्ती। हाय रे हाय, क्या बात है, क्या बात है। एक बार फिर से हम मिल चुके हैं और एक अलग ही मूड के साथ। 7:05, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और एकदम मूड में हूँ आपको एंटरटेन करने के लिए टिल 9 PM, क्योंकि आज फ्राइडे इवनिंग है। आपके पास मौका है, आपके पास एक वजह है और खुशी की वजह। जब फ्राइडे होता है तो सब लोग इतना मुस्कुराते हैं कि आपके मैसेजेस के जरिए आपकी हंसी हमें दिखे जाती है। सो चलिए, फ्राइडे हो, मंडे हो, जो भी दिन हो, आप ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहिए। एंड टू ऐड सम मोर ब्यूटीफुल एंड गुड वाइब्स, हम खूबसूरत गाने लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। खूबसूरत के साथ साथ कुछ धमाकेदार एनर्जेटिक गाने टू मेक यू वाइब टुगेदर। ऑफ कोर्स डांस तो आपको तो करना ही करना है, क्योंकि आज फ्राइडे इवनिंग है और कुछ लोग थके हारे घर वापस आए हैं और आपको थोड़ा सा एकांत में रहना है, तो बिल्कुल आप रिलैक्स करिए एंड बस हमारे गीतों को एंजॉय करते रहिए ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहां पर दिव्या का साथ होने वाला है। न्यू फिल्मी जैम टिल 9 PM।
1: Filmy Jam. RM2 Radio Musti.

0: 17 मिनट हो चुके हैं इस वक्त. अगर आप लोग अपना डिनर ले रहे हैं या फिर कुछ लोग लेट से डिनर लेते हैं क्योंकि आज पार्टी शार्टी करने की मूड में हैं, तो चलिए जी ये भी अच्छी बात है. और बढ़ते हैं आपके कुछ मैसेजेस की ओर. हेलो आरजी का नाम है दिव्या, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. एंड यहाँ पर आपने कहा यू कैन डेडिकेट अ सॉन्ग फॉर माई बॉस मिस्टर अरविंद एंड मिसेज अनुषा फ्रॉम पृथ्वी रूपा एंड उर्मिला, थैंक यू सो मच. और आपका एक्सपा टीम भी है, थैंक यू साथ देने के लिए. एंड यहाँ पर अगला गाना गोज आउट किन के लिए, टू ऑल एमबीसी स्टाफ एंड एज यूजुअल आपके दोस्तों के नाम किशन है, अश्विन, विराज, विकी, सान, नीलेश, नायको और सभी आपके पैसेंजर्स के लिए, मानती, रंजीता, प्रियंका, और उनके लिए गाना हम जरूर चलाएंगे. थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. एंड एज यूजुअल वी हैव नीतू ऑफ पालमा का ट्रिबोन आपके लिए एक खास पैगाम, वेरी हैप्पी बर्थडे भाई. उनका बर्थडे आके चला भी गया, इट वॉज ऑन 21 जुलाई, और आपके मैसेजेस तो अभी तक आ ही रहे हैं. राजीव थैंक यू सो मच, आप हैं सैफिया से. एंड चलिए इसी तरीके से आप लोग अपने मैसेजेस हम तक जरूर पहुंचाएं उन 5 9 9 12 9 4. एंड बाहर का हाल, बाहर का जो माहौल है हम जरूर जानना चाहते हैं. व्हाट्स हैपनिंग ऑन योर साइड ऑन दिस फ्राइडे इवनिंग ऑन 5 4 9 9 12 9 4.
1: फिल्मी जान
2: RM2 रेडियो मस्ती.

0: फिल्मी जैम
1: OMG रेडियो मस्ती।
0: चलिए यहाँ पर वी हैव अनुषा फॉर अ साइड एंड आपने एक मैसेज भेजा है, थैंक यू सो मच। कहती है प्लीज प्ले अ नाइस सॉन्ग फॉर भतीजी लवीशा हुसाई फ्रॉम न्यू मोहल, आज उनका बर्थडे है, बेस्ट विशेस फ्रॉम मामा आरती, पापा रूपेश, भाई लवीश, सभी हुसाई फैमिली ऑफ न्यू मोहल, और साथ में आपके दोस्त हैं पूनम, चाचा अनिल, बॉस ऋषि वर्किंग एट सुपर मार्केट, आपकी प्यारी बेटी है परी एंड हमारी पूरी टीम के लिए भी आपने गाना मांगा है, थैंक यू सो मच। एंड चलिए यहाँ पर जितने भी सारे लोग इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ रेडियो मस्ती टीम, प्लीज प्ले नेक्स्ट सॉन्ग फॉर अब्दुल एंड सैरा बानू। एंड चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर। एंड यहाँ पर एक इनकम्प्लीट मैसेज आया है, आज अवनीश ऑफ लाल माची का बर्थडे है, विश इज कमिंग फ्रॉम मॉम, मॉम का नाम इनकम्प्लीट आया है, आई गेस बाकी आपके मैसेजेस भी इनकम्प्लीट हैं, तो अगर आप एक बार फिर से अपना मैसेज भेजना चाहते हैं तो डू सेंड योर मैसेजेस ऑन 5499 1294, व्हाट्सएप पर आप जरूर हमें याद कर सकते हैं, नंबर वही है।
2: Filmy Jan.
1: OMG Radio Musti.

इवनिंग है तो नो रोना धोना नो कंप्लेन नो इव्स एंड बट्स, ये तो बिल्कुल हम नहीं सुनना चाहते हैं अगर मगर। और वैसे कहते हैं ना कि फ्राइडे इवनिंग होते ही है इतने खूबसूरत कि इसको और भी खूबसूरत बनाने के लिए ऑल वी नीड इज सम लव और कुछ मोमेंट ऑफ रिलैक्सेशन। कुछ लोग पार्टी करके रिलैक्स करते हैं तो कुछ लोग घर वापस आकर कहते हैं कि भाई अभी बाहर नहीं जाना है। चाहे आप जहाँ भी हैं और जो भी कर रहे हैं साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। कीप ऑन सेंडिंग योर मैसेजेस ऑन 5499 1294।

0: फिल्मी जैम
1: OMG रेडियो मस्ती।
2: हे यू, आपसे यही कहना था कि हमारा दिल भी आप पे आ गया है। एंड थैंक यू

0: सो मच कि आप लोग इतने प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं. वी ऑल्सो हैव द नेक्स्ट ट्रक गोज आउट फॉर पृथ्वी, रूपा एंड उर्मिला. वैसे आपका मैसेज तो ऑलरेडी आ चुका था, लेकिन एक बार फिर से आपका ये मैसेज हम पढ़ेंगे, क्योंकि मे भी आपने सुना नहीं था. यू वुड लाइक टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना फॉर योर बॉस मिस्टर अरविंद, मिसेज अनुषा फ्रॉम पृथ्वी, रूपा एंड उर्मिला, एंड आपके स्पा टीम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत सारा प्यार. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज लिसनिंग टू अस, एंड ऐसे ही साथ देते रहिएगा. वेल, इट्स ऑलरेडी 8:08, एंड इस खूबसूरत टाइम पर हम यही विश करते हैं कि आपकी लाइफ में हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें ही हो. एंड फ्राइडे इवनिंग में बहुत सारे लोग निकल पड़ते हैं रास्ते पर, तो शायद कुछ कुछ जगहों पर इट्स नॉट अ ट्रैफिक जाम, लेकिन बहुत सारी गाड़ियाँ जब निकल जाती है ना, तो धीरे धीरे से ही आप लोग आगे बढ़ते हैं. बट आई जस्ट होप कि आप लोग आराम से गाड़ी चलाएंगे. एंड कुछ लोग लॉन्ग ड्राइव पे भी निकल जाते हैं, और उनके लिए रुक रुक कर गाड़ियाँ चलना, मतलब उनको थोड़ा सा और मौका मिलना टू have some more communication, some beautiful conversation. Yes, रिश्ते में this is more important कि आप एक अच्छा communication रखें और एक good conversation रखें अपनों के साथ. तो चलिए, I just hope that you're making the most of this Friday evening. चाहे आप cinema theater में पहुँच चुके हैं movie देखने के लिए, या फिर आप restaurant में खाना खा रहे हैं, और maybe आप party करने के लिए निकल चुके हैं, तो please be very careful on the road. And हम यही request करेंगे, अगर आपको party करनी है तो please do not drink and drive.
1: Filmy Jam. RM2 Radio Musti.

0: फिल्मी जाम
1: OMG रेडियो मस्ती
2: जिसको दे विच भंगड़ा पा और भंगड़ा तो आपको पाना ही है क्योंकि देखिए इतने अच्छे अच्छे गाने हम चला रहे हैं. डोंट टेल मी कि आपका मूड नहीं बन रहा है डांस करने के लिए. और अगर आप हमें कहेंगे कि ना ना ना तो हम आपसे कहेंगे हाँ हाँ हाँ क्योंकि आज के लिए हम ना बिल्कुल नहीं सुनना चाहते हैं. सो बस आप डांस फ्लो को रॉक कीजिए, हम यही चाहते हैं. भले ही आप घर पर हैं कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज तो बनता ही है. जब आपका खाना हो जाता है तो आप खुद के कंपनी को एंजॉय कीजिए और फैमिली के साथ आप हमारे गीतों भी एंजॉय कीजिए. चलिए बढ़ते हैं आपके कुछ मैसेजेस की ओर. श्वेता हुकुम आप है बनाकर से वांट टू डेडिकेट द नेक्स्ट ब्यूटीफुल गाना फॉर हबी रोशन फ्रॉम वाइफ रानी. वांट टू टेल हिम लव यू सो मच हस्बैंड जी. एंड चलिए आशीष आपने कहा आपने अपना नाम लिखना भूल चुके थे. कोई बात नहीं आशीष, आपका मैसेज आया तो हमें पता चल गया कि आप ही हैं. हमारे लिसनर्स के मैसेज भेजने के अंदाज हमें पता होता है. तो आशीष थैंक यू सो मच, ओपन यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है हमारे साथ. वी ऑल्सो हैव प्यारी सी टीना जी, थैंक यू सो मच. ये आपके मैसेजेस जब भी आते हैं तो बाद में आप डिलीट क्यों कर देते हैं ये मुझे समझ में नहीं आता है. सो चलिए टीना जी साथ देने के लिए थैंक यू सो मच. बिग किसेस टू लिटिल प्रिंस, थैंक यू सो मच. एंड नेक्स्ट गाना गोज आउट टू ऑल योर फैमिली. हर हर महादेव आपको भी एंड जय सिया राम, गॉड ब्लेस यू टू. एंड उम्मीद करते हैं कि यू हैविंग अ ग्रेट ग्रेट टाइम लिसनिंग टू अस. एंड ऐसे ही आप झूमिए नाचिए और बस खुशियां मनाइए क्योंकि आज है फ्राइडे evening. यहां पर आप कहते हैं हाई वॉन्ट टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना फॉर चाची शालिनी हु सेलिब्रेटिंग हर 60th बर्थडे टुडे. बेस्ट विशेस फ्रॉम पति सुनील. उनके बच्चे हैं रूमिला और शिल्मा की तरफ से. आई एम नॉट श्योर अगर सुनील जी थ्योरे वाले हैं कि नहीं, और अगर हैं भी तो चलिए शालिनी जी आपसे मिलकर बहुत बातें करनी है और ये भी बताना है कि सुनील जी के कितने सारे मैसेजेस आते हैं यहाँ पर. सो थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. एंड चलिए हमारा साथ देते रहिए एंड उम्मीद करते हैं दैट यू विल बी सेलिब्रेटिंग योर स्पेशल ओकेजन विद योर फैमिली एंड विद योर नियर एंड डियर वंस.
0: फिल्मी जाम
1: OMG रेडियो मस्ती.

0: फिल्मी जैम
1: OMG रेडियो मस्ती।
2: चलिए बढ़ते हैं कुछ और आपके मैसेजेस की और यहाँ पर एक मैसेज आया है। हेलो, कैन यू प्लीज डेडिकेट अ ब्यूटीफुल गाना फॉर माय हैंडसम बेटा शुभम बाजी ऑफ पदागुचिया जो आज सेलिब्रेट कर रहा है अपना बर्थडे। बेस्ट विशेस टू शुभम एंड विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे विद गुड हेल्थ प्रोस्पेरिटी हैप्पीनेस फ्रॉम ममा कविता पापा राज आकाश्वेता दर्शिनी शिखा दादा अनिकेत प्रशांत तिशान वाहिनी दिशा करिश्मा नाना देवन संजय वेदानंद काकू रूपा बाबिनी आतु सावित्री ममा दयानंद आतु सांता सभी हिरु फैमिली ऑफ जिवेजे एंड परसराम फैमिली ऑफ काटुबोन की तरफ से उनको बहुत बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच कि आप इतने प्यार से हमें सुन रहे हैं और आपने अपना मैसेज भी हम तक पहुँचाया। तो आपके हैंडसम बेटे शुभम बाजी को अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड चलिए उम्मीद करते हैं कि शुभम इज गोइंग टू एन्जॉय each and every moment of his special occasion and इसको और भी खास बनाने के लिए ऑफ कोर्स हम यहाँ पर एक छोटा सा नजराना उनके लिए लेकर आए हैं। टू ऑल दोज जो आज सेलिब्रेट कर रही हैं अपना स्पेशल

0: फिल्मी जाम
1: RM2 रेडियो मस्ती
0: Well, friends, already 8:56 and चलिए इसी के साथ it's a time for me to say goodbye to all of you. हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल for your Saturday afternoon, शाम के 4 बजे से लेकर 7 बजे तक. तब तक के लिए take care, keep smiling, शुभ रात्रि, शब्बा खैर.

नमस्कार, हेलो हेलो हेलो, कैसे हो मेरे दोस्त। हैप्पी फ्राइडे भाई। वीकेंड का मूड तो ऑन हो चुका है और आप सुन रहे हैं लेट नाइट ग्रूव वेदिता के साथ, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने रेडियो मस्ती पर। मैं वेदिता साथ देने के लिए आई हूँ और यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड के पैपी रिमिक्सेस। फ्राइडे को बना देंगे एकदम धमाकेदार, तो वॉल्यूम को थोड़ा और बढ़ाइए, ट्रस्ट को बोलिए ठाठा बाय बाय, फिर मत मिलना, और हम यहाँ मिलेंगे आपके साथ आपके अपने रेडियो मस्ती पर।

भाई वाइब का हम क्या बताएं, यहाँ पर मूड थोड़ा चेंज हो गया है। अगर आप ऑफिस से घर जा रहे हैं या फ्रेंड्स के साथ चिल कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि रेडियो मस्ती बिल्कुल यहाँ पर मत भूलिएगा कि हम आपके साथ हैं आपके फ्राइडे को एकदम जबरदस्त बनाने के लिए। रिलैक्स करने का मन है ऐसा मत बोलो, देखो मैं कितने प्यार से ये गाने ढूंढ के लाई हूँ। डांस फील करो ना अपने अंदर का मिठन, अपने अंदर का माइकल जैक्सन और फिर शुरू हो जाओ।

तो दोस्तों फुल ऑन एनर्जी के साथ ये सारे रेमिक्सेस हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑन रेडियो मस्ती। वेल, यहाँ पर तो वीकेंड ऑफिशियली यहाँ शुरू हो गया है। आपको पता है ना, फ्राइडे इवनिंग जैसे आती है लोगों को पता चल जाता है कि अभी हमारा वीकेंड का वाइब ऑन है। चलिए, लेट नाइट ग्रुप्स में मैं हूँ विदिता और आपका वीकेंड सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, लेकिन

जिसने जिसने साथ दे रहे हैं हमारी अभी हाई फाइव टू यू रेडियो मस्ती लवर्स. मैं हूँ विदिता. बताइए फ्राइडे नाइट में आपके क्या क्या प्लान्स हैं? कोई सोचता है कि भाई चिल मारते हैं घर पे, कोई कहता है चलो डिनर पे चलते हैं, कोई कहता है चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं. हाँ वैसे चिल करने के लिए डिनर के बाद आप लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं. तीनों काम एक साथ हो जाए, चलो तीनों काम तो तीनों काम एक साथ हो जाएगा. जो भी हो हमारा क्या, हम तो आपके साथ हैं. हम आपके साथ आपके रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं, मैं आपके घर में भी हो सकती हूँ, मैं ड्राइव में गाड़ी में भी हो सकती हूँ.

देखो दोस्तों, अभी सोने का टाइम नहीं है, अपनी नींद को बोल दो ये टाइम नहीं है भैया, अभी आपको थोड़ा सा हमारे साथ पार्टी तो करनी पड़ेगी, क्यों हमारी पार्टी बाकी है यार। ये है लेट नाइट ग्रूव्स विदिता के साथ, जहां पर हम आपका मूड करते हैं अपग्रेड। और यहां पे जो हमारे गाने हैं, कमाल के गाने चुन लाए हैं। आहा, बीते दिनों को भी तो याद करना है, क्यों क्या ख्याल है आपका?

जितने भी लोग काम से निकल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आप अगर स्टीयरिंग व्हील के पीछे हैं तो गाड़ी जरा संभाल के चलाना। हाँ, पैसेंजर वाले सीट में जो बैठे हैं ना, आपको कोई रोक नहीं सकता ग्रूव करने के लिए। और ये जो बाबूजी गाड़ी चला रहे हैं, इनका भी कोई क्या कहूँ, रोक टोक नहीं है। अब मुंडी तो हिला सकते हैं वैसे ऐसे ऐसे। चलो, रेडियो मस्ती के साथ जुड़े रहना और मस्त रहना।

लाइफ में ब्रेक लेना जरूरी होता है ठीक है और यहाँ पर हम यही चाहते हैं कि आप लोग ब्रेक तो लो पूरे हफ्ते की भागा दौड़ी काम ये वो अरे भाई एक टाइम तो ऐसा निकालो जहाँ पर आप अपने लाइफ में ब्रेक लो चाहे वो ब्रेक डांस का क्यों ना हो तो स्माइल करो डांस करो और नहीं ज्यादा कुछ तोड़ने फोड़ने की जरूरत नहीं है बस जगह बना लो और शुरू हो जाओ

मैजिक तो शुरू हो गया है यहाँ पे हमारे म्यूजिक का। और म्यूजिक की बात करें तो कैसा लगा हमारा गाना, गाना कैसा लगा आपको, मजा आया ना? ऐसे ही आपको झूमना है हमारे साथ, हमारे गीतों के साथ, राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती।

चलो जी, आपकी शाम को रंगीन बना रहे हैं हम बॉलीवुड रिमिक्सेस के साथ। और क्या चाहिए आपको, घर पे रहो, आराम करो, आराम के साथ साथ थोड़ा अगर काम भी कर रहे हो ना तो बैकग्राउंड में जब म्यूजिक चलता है तो मज़ा ही आ जाता है। आपको काम करना है क्योंकि आपको लेट नाइट तक काम करना है। बाकी जो लोग घर पे है क्या कर रहे हो, नहीं कर क्या रहे हो, ये किसने बोला कि कंबल ओढ़ के बैठना चाहिए विंटर में? अरे भाई डांस करो, गर्मी अपने आप आ जाएगी।

0: not happening.
1: ये वक्त तो जैसे भाग रहा हो. चलिए अगर आज आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम अपनी पूरे रेडियो मस्ती फैमिली की तरफ से आपको कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू. चलो एक बात बताऊं, मेरा डांस करने का मन कर रहा है बड़ा. आप अगर साथ दो

नहीं जी, हम फिर आएंगे कल शाम को, कल रात को आपका साथ देने के लिए आपके अपने लेट नाइट ग्रूव में, जहां विदित आएगी, कभी हम महबूबा महबूबा करते हुए हेलन का डांस करेंगे, और कभी हम हेलनी तो थी ना जो बहुत ज़्यादा डांस करती थी। चलो कोई नहीं जी, हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, साथ में करेंगे। फिलहाल अभी मस्ती करते हैं। टाइम फॉर मी टू से बाय बाय, सी यू टुमारो।

Be my lover, bubbly. Hey, bubbly, oh yeah, bubbly, be my

0: Welcome to
1: Radio Musty.
0: Feel the Musty.
2: That's right. Pump it up.

RM2 Radio Musti.

दूर होते होते वो आवाज़ डूब गई, सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं। चंदन चला गया और इतनी दूर चला गया कि आरती के लिए वो फासले तय करना नामुमकिन हो गया। मुड़ के जब भी देखा चंदन का चेहरा नज़र नहीं आया। गूंजते हुए माजी से सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है।